अपमान। हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद, नानक सिमरत हर हर भगवान। सावरी महला चौथा, माई मोरो प्रीतम राम बताव होरी माई। हौ हर बिन खिन पल रह ना सकूं, जैसे कर हर बेल रिझाई रहाउ। हमरा मन बैराग बिरकत भयो, हर दर्शन मीत कै ताई। जैसे अल कमला बिन रह ना सकै, तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई। राख शरण जगदीश्वर प्यारी, मोहे शरदा पूर हर गुसाई। जन नानक कै मन आनंद होत है, हर दर्शन निमक दिखाई।

कोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस भौ बहुत दिखाया। भाई मीत कुटुंब देख बिबादी, हम आई वसगत गुर प्रसादी। ऐसा देख बमोहित हुए, साधक सिद्ध सुरदेव मनुखा। बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे रहा, एक फिर है उदासी तिन काम व्यापै। एक संचह गिरी तिन हुए ना आपै, एक सती कहावे है तिन बहुत कल पावे। हम हर राखे लग सतगुरु पावे, तप करते तपसी पुलाय। पंडित मोहे लोभ सवाय, त्रै गुण मोहे मोहया आकाश। हम सतगुरु राखे दे।

समानी तुरिया गुण मिल साध पछानी सहज गुफा में आसन बांधिया जोत स्वरूप अनाहद वाजिया महा आनंद गुर शब्द विचार प्रिय सो राती धन सुहागण नार जन नानक बोले ब्रह्म विचार जो सुने कमावे सो उतरे पार जन्म ना मरे ना आवे ना जाई हर सेती ओहो रह समाई आसा महला पंजवां निज भगती सी।

कंत हमारो की लोक समाना, कर मस्तक धार राखियो कर अपना, क्या जाने एहो लोग अजाना रहाओ, सुहाग हमारो अब हुन सोहयो, कंत मिलियो मेरो सब दुख जोहयो, आंगन मेरा सोभा चंद, निसबासर प्रिय संग आनंद, वस्त्र हमारे रंग चलूल, सगल आभरण शोभा कंठ फूल, प्रिय पेखी दृष्ट पाए सगल निदान, दुष्ट दूत की चूकी कान, सद कुचियां सदा रंग माने, नौ निद नाम ग्रह मह त्रिपताने, कहो नानक जोह पिरह शिंगारी, थिर सोहागन संग पतारी, आसा महला पंजवा, दान दे कर पूजा करना, लैत देत उनमू कर परना,

तनते मन निर्मल हर हर गुण गाय पये आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाय तपत बुझी गुर शब्दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर शीतल मिलियो सहज सुपाय रहाओ धावत रहे एक एक बूझिया आए बसे अब निश्चल थाए जगत उदाहरण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दुख परे मेरे पाछे अब पकड़े।

परमेश्वर बिसरिया अपना कीता पावे निंदक रहाव। जे कोई उसका संगी होवे नाले लए सदावे अनहुंदा अजगर भार उठाए।

मरना, मुआ हुए तिस निश्चल रहना, जीवत मुए मुए से जीवे, हर हर नाम अवखद मुख पाया, गुर शब्दी रस अमृत पीवे रहाओ, काची मटकी बिनस बनासा, जिस छूटे त्रिकुटी किस निज घर वासा, ऊंचा चढ़े सो पवे पयाला, तरन पड़े तिस लगे ना काला, प्रमत फिरे तिन किछु ना पाया, से अस्तर जिन गुर शब्द कमाया, जियो पिंड सब हर का माल, नानक गुरमिल भए निहाल, आसा महला पंजवां, पुत्री तेरी बिद कर थाटी, जान सत कर हो।

के चौपदे एक घड़ी दिन समो को बहुत दिहारी मन ना रह कैसे मिलो प्यारी एक पल दिन समो को कब हो ना बिहावे।

चहो जुगह समानी, रैण पई तब अंत ना जानी। पंच दूत मिल पिरो बिछोड़ी, ब्रह्म भ्रम रोवै हाथ पछोड़ी।

सुख निदान अमृत सार सद ही परपूरा रहाओ। चरण कमल हृदय अंतर तारे प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय सुख रैन विहानी सहज सुपाई। आसा महला पंजवां कर कृपा हर प्रगटी आया मिल सतगुर धन पूरा पाया। ऐसा हर धन संची है भाई पाए न जल जल नहीं डूबे। संग छोड़ कर कतहु न जाई रहाओ तोट न आवे नखुट न जाई। खाए खर्च मन रहया अगाए सो सच साह जिस घर हर धन संचाना। इस धन ते सब जग वरसाना इन हर धन पाया जिस पुरब लिखे का लहना। जन नानक अंतवार नाम गहना। आसा महला पंजवां जैसे किरसान बोवे किरसानी काची पाकी बाड परानी। जो जन्मे सो जानहु मुआ गोविंद भगत अस्थर है किया रहाउ। दिन ते सर पर पौसी रात रैन गई फिर हुए प्रभात। माया मोहे सोए रहे अभागे गुर प्रसाद को विरला जागे। कहो नानक गुण गाई है नीत मुख उजल हुए निर्मल चीत। आसा महला पंजवां नौ निद तेरे।

त्यों कर प्रत पाला आसा महला पंजवा जी प्राण धन हर को नाम ईहा ऊहा उन संग काम बिन हर नाम अवर सब थोरा तृप्त अगावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत भंडार गुरबाणी लाल गावत सुनत कमावत निहाल।

प्रभ अवनासी घट घट चीन आसा महला पंजवा आनंद बनोद परे पुर तारिया अपना कारज आप सुआरिया पूर समगरी पूरे ठाकुर की।

रहाउ। त्रिपत अगावन साक्य नाय, अठसठ मज्जन संत तुराय। सब मैं जानू करता एक, साध संगत मिल बुद्ध विवेक। दास सगल का छोड़ अभमान, नानक को गुर दीनो दान। आसा महला पंजवा, बुद्ध परगास भई मत पूरी। तांते बिनसी दुरमत दूरी, ऐसी गुरमत पाई अले। बूढ़त कोर अंधकूप में,

बाद एक ऊत कत छोड़ ना जाए, नानक गीता हर रस माहे। आसा महला पंजवा, काम क्रोध लोभ मोह मिटावे, छुटकै दुर्मते अपनी धारी, होए नमाणी सेव कमावे है, ता प्रीतम होवे है मन प्यारी। सुन सुंदर साधु बचन उधारी।

ब्योहारा भाग्या मान भगत हुए तुम्हारी जो यह मंत्र कमावे नानक सो पौ जल पार उतारी आसा महला पंजवा धोपदे पई प्राप्त मानुख देहरिया गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भवजल तरण कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाउ जप तप संयम धर्म ना कमाया।

आप सहाये गुण निदान नित गावे नानक सहसा दुख मिटाई आसा महला पंजवां औखद खायो हर को नाऊ सुख पाए दुख बिन सिया थाऊ ताप गया बचन गुरपूरे आनंद पया सब मिटे वसूरे रहाऊ जी जंत सगल सुख पाया पार ब्रह्म नानक मन त्याया आसा महला पंजवां पांचत नाही सो बेला आई बिन हुक्मै क्यों।

सदा सदा आत्म परगास, साध संगत हर चरण निवास, राम नाम नित जप मन मेरे, शीतल शांत सदा सुख पाव है, किलख जाही सबे मन तेरे रहाओ। कहो नानक जाके पूरन कर्म, सतगुर भेटे।

संग मेली सुख सहज आनंद सोहेली साध संग गुण गाए अतोली हर सिमरत नानक पई अमोली। खासा महला पंजवा काम क्रोध माया मद मत सर ए खेलत सब जुए हारे सत संतोख दया धर्म सच एह अपने ग्रह भीतर वारी जन्म मरण चूके सब भारे मिलत संग भयो मन निर्मल।

पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, अपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने, नांगा आया नांगो जासी।

0: कर डूबे खप खप मोए गवारा।
1: गुरमिल नानक नाम त्याया साच नाम निसतारा।
2: राग आसा घर पंजवां महला पंजवां

जन्म जन्म की मलत होवै पराई, अपना कीता पावै इहां सुख नहीं दरगाह ढोई। जमपुर जाए पचावै, निंदक अहला जन्म गवाया,

गोविंद भजन की मत है होरा, बरमी मारी साफ ना मरी, नाम ना सुनी डोरा रहाउ, माया की किरत छोड़ गवाई, भगती सार ना जाने, वेद शास्त्र

पाया। कूड़ कपट बंच निम नियादा बिनस गया तत्काली। सत सत सत नानक कहया अपने हिरदय देख संभाली। आसा महला पंजवां उदम करत हो ऐ मन निर्मल नाचै आप निवारी। पंच जना ले

सुनावे कर संग साधु चरण पखारे संत धूर तन लावे मन तन अर्प धरे गुरे आगे सत पदार्थ पावे जो जो सुने पेखे लाए श्रद्धा तड़का जन्म मरण दुख भागे।

ब्राह्मणी सुदीते श्रेष्ठाई रे पाताली आकाशी सखनी लहबर बूजी खाई रे घर की बिलाई अवर सखाई।

मन की होर किस पै आख सुनाइए, बिन नावे सब जग बोराया, नाम मिले सुख पाइए।

तू राख है जिस जानी ऊपर तेरी कृपा, तिसको बेपना को पाख है ओहो सुख ओहा वड्याई। जो प्रभ जी मन पानी तू दाना, तू सद मेहरवाना, नाम मिले रंग माणी।

बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी ऐसो समरथ वर्णना साको ताकि उपमा जात ना कहे ओरी काजर कोठ मह पई ना कारी निर्मल वर्ण बनियोरी महामंत्र गुर हृदय बसियो अचर्ज नाम सुनियोरी कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक सुख पाया।

पंजवा दुख कनो जब होते दूर, अब मसलत मोहे मिली हदूर। चुका ने हो रहा सखी सहेरी, परम गया गुर पिर संग मेरी रहाव। निकट आन प्रिय सेज धरी, कान कड़न ते छूट परी। मंदर मेरा शब्द उजारा, आनंद बनोदी खसम हमारा। मस्तक भाग मैं फिर घर आया,

दीस आवत है बहुत भी हाला, सगल चरण की इहो मन राला, नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया, आसा महला पंजवा, पावत रलिया जोबन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर उडलिया, सेज सुखलिया मन गर्बलिया, रहाव तलै कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर भगत बिना ले धरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनक इस्तरिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया छलिया विकार बिखलिया, शरण नानक प्रभु पुरख दयालिया, आसा महला पंजवां, एक बगीचा पेड़ घन करिया, अमृत नाम तहां मह फलिया, ऐसा करहू बीचार ज्ञानी, जाते पाईए पद निर्बानी, आस पास बिखुआ के कुंता, बीच अमृत है पाई रे रहाव, सिंचन हारे एक माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पतियां जनाई, सगली फूली निफल ना काई, अमृत फल ना

तेरा ओले भ्रम के पर्दे सतगुरु खोले रहाउ हुक्म बूझ रंग रस माणी सतगुर सेवा महानिर्वाणी जिन तू जाता सो गिरस्त उदासी।

शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार, नरक सुर्ग फिर अवतार, गृहस्थ मह चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी कौ जंजार, प्रभ कृपा ते मन वासे आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया, साध संग हर की

जा तू चित आवे सो नाम जपै जो जन तुद पावे रहाउ। तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत टह दुख डेरा। हुक्म बूझै सोई परवान साच शब्द जाका निशान। गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया भणत नानक मेरा मन सुख पाया। आसा महला पंजवां जहां पठाव हो तह तह जाई।

बाट काट जपीजै, गुर प्रसाद हर अमृत पीजै, दिन सरैन हर कीर्तन गाइयै, सो जन जम की वाट ना पाइयै, आठ पहर जिस विसरह नाही, गत होए नानक तिस लग पा।

सतगुरु अपना सद सदा मनावहु रहाउ। सतगुर का सच शब्द कमावहु, थिर कर बैठे प्रभ अपना पावहु। पर का बुरा

प्यारे, तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे। रहाउ जाके निकट ना आवे कोई, सगल श्रेष्ठ ओआ के चरण मल धोई। जो प्राणी काहू ना आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम। साध संग मन

पंजवा कोट जन्म के रहे पवारे दलब देह जीती नहीं हारे किल बिख बनासे दुख दर्द दूर पये पनीत संतन की धूर रहाव प्रभ के संत उदाहरण जोग तिस भेटे।

हे मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाव। बिनस्यो मन का मूर्ख ठीठा, प्रभु का पाना लागा मीठा। गुरपुरे के चरण गहे, कोट जन्म के पाप लहे। रतन जन्म एहो सफल पया, कहो नानक प्रभ करी मया। आसा महला पंजवां, सतगुर अपना सद सदा संहारे। गुर के चरण केस संग चारे, जागरे मन जागन हारे। बिन हार

पंजवा हर हर अखर दुए एह माला जपत जपत भय दीन दयाला करो बेनती सतगुर अपनी कर कृपा राख।

पंजवां जिसका सब किस तिसका होए तिस जन लेप ना व्यापै कोए हर का सेवक सद ही मुक्ता जो किछ करै सोई भल।

कहो नानक गुर पूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया। आसा महला पंजवा, जो सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा, ता दुख परम।

रोवन हार झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ काके घर गावन, को रोवे को हस हस पावन रहाव, बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुंचना मुका फिर पछताना, त्रिहो गुण में वरतै संसारा, नरक सुर्ग फिर अवतारा, कहो ना

ना जानी भोर भया बहोर पछतानी प्रिय प्रेम सहज मन आनंद तरहुरी प्रभ मिलबे की लालसा ताते आलस कहां करों री रहाओ कर्म है अमृत आनन सारेउ खिसर गयो भूम पर डारेउ साध मोहे लादी अहंकारे दोष नाही प्रभ करने हारे साध संग मिटे परम अंधारे

प्रभ अपना होया कृपाल संत प्रसाद भली बनी जाके ग्रह सब किस है पूरन सो भेटिया निर्भय धनी रहा नाम जरड़ाया साध कृपाल मिट गई भूख महा बिकराल ठाक।

आनंदिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप मह खाए मठाई, सोचत साचत रहन बयानी, अनकरंग माया के चितवत, कबहू ना सिमरै सारंग पानी रहाव, द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधिया, काल कै फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया, सो थान मूड निश्चल कर पाया।

उनकै संग हम तुम संग मेल, उनकै संग तुम सब को लोरै, ओस बिना को मुख नहीं जोरै, ते बैरागी कहां समाए, तिस बिन तुही दोहेरी री रहाओ, उनकै संग तू ग्रह महिमा हर, उनकै संग तू होई है जाहर, उनकै संग तू रखी पपोल, ओस बिना तू छुटकी रोल, उनकै संग तेरा मान महत,

ना उस बंधन ना हम बांधे, ना उस धंधा ना हम तांधे, ना उस मैल ना हम कौ मैला, उस आनंद ता हम सद केला, ना उस सोच ना

गर्भ मोह तज हूं रेन, उनके संग देखो प्रभ नैन, निमख निमख एही आराधो दिन सरहन ए सेवा साधो, भये कृपाल गोपाल गोबिंद, साध संग नानक बख्शिंद, आसा महला पंजवा, प्रभ की प्रीत सदा सुख होए, प्रभ की प्रीत दुख लगे ना।

सगल उधार है, प्रभु की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस सार संग भूले।

कर कर अनर्थ विहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उस्ते डार अवर को दीनी, काच गगरिया अंब मझरिया,

जिस खसम दयाल आसा मोहल्ला पंजवा इन स्यों प्रीत करी कान्हेरी जो मिलिय तो वदै वधेरी गल चमड़ी जो छोड़ै नाही लाग छुट्टो सतगुर की पाई जग मोहनी हम त्याग गुआई निर्गुण मिलियो बजी वधाई रहाओ ऐसी सुंदर मन को मोह है बाट घाट ग्रह बन बन जो है मन तन लागे होए कै मीठी गुर प्रसाद में खोटी दीठी अगरक उसके वडे ठगाऊ छोडह नाही बाप ना माऊ मेली अपने उनले बांधे गुर कृपा ते मैं सगले साधे अब मोरे मन भया आनंद पौ चूका टूटे सब फंद कहो नानक जा सतगुर पाया कर सगला मैं सुखी बसाया आसा मोहल्ला पंजवा आठ पहर निकट कर जाने।

तेरे भाई वाकी महिमा कथन ना जाई रहाओ वर्तन जाके केवल नाम आनंद रूप कीर्तन विश्राम मित्र सत्र जाके एक समान प्रभ अपने बिन अवर ना जाने कोट कोट अग काटना।

सगल धर्म हर के गुण गाम, महा पवित्र साधका संग, जिस भेट तलागे प्रभ रंग, गुर प्रसाद होए आनंद पावे, जिस सिमरत मन होए परगासा, ताकी गात मित कह

के लेखा, भगत जना कहो दृष्ट ना पेखा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, वाजे ता कै अनहद तूरा, आसा महला पंजवा दुपदा एक, साधु संग सखायो नाम, सर्ब मनोरथ पूर्ण काम, बुझ गई तृष्णा हर जसै अगानी, जप जप जीवा सारग पानी, करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाउ, लाल जिवे हर भरे भंडार, तोट न आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै

सूख सहज मेरा धन सुहागा, कहो नानक मोरी पूरन आसा, सतगुर मेली प्रभ गुणतासा, आसा महला पंजवां, माथे त्रिकुटी दृष्ट क्रूर, बोले कौड़ा जिहवा की फूड, सदा भूखी पिर जाने दूर, ऐसी स्त्री एक राम अपाई, उन सब जग खाया, हम गुर राखे मेरे पाई रहाओ, पाए ठगौली सब जग जोहया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया, गुरमुख नाम लगे से सोहया, वर्त नेम कर थाके पुनः चरना, तट तीरथ भवे सब तरना, से उबरे जे

वहां पकर हम राखा आसा मोहल्ला पंजवा सर्ब दुख जब बिसरह स्वामी इहा उहा कामना प्राणी संत तृपता से हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रव तुमरी रजाए रहाओ संग होवत को जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब किस दिया तिस चितवत ना।

नाम जपत मन तन सब हरिया, कलमल दुख सगल पर हरिया, सोई दिवस भला मेरे भाई, हर गुण गाए परम गत पाई। रहाउ साध जना के पूजे पैर, मिटे अपद्रह मन ते बैर, गुरपूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वस गत आया, जिस मन वसया हर का नाम, नानक तिसी ऊपर कुर्बान, आसा महला पंजवा, गावले हे तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जां की सेवा सर्व सुख पाव है, अवर काहू पह बहुड़ ना जाव है, सदा आनंद आनंदी साहिब, गुण निधान नित नित जापी है, बलिहारी तिस संत प्यारी, जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है। रहाउ जां का दान नुखूटे नाही, पली भांत सब सहज समाही, जां की बख्श न मेटे कोई, मन वासाइय साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जां कै पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन, ओट गही निरभउ पद पाइय, सास सास सो गुण निद गाइय, दूर ना होई कतहू जाइय, नदर करे ता हर हर पाइय, अरदास करी पूरे गुर पास, नानक मंगै हर धन रास। आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सगल को हुआ सुख, कर कृपा गुर दीनो नाओ, बल बल तिस सतगुर को जाओ, गुर पूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख बनासे, सतगुर की शरणाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अगन बुझी

पंजवा लाख भगत आराध्य है जपते पियो पियो कमन जुगत मलावो निर्गुण बिखे जियो तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ तू सबना के नाथ तेरी श्रेष्ठ सब रहाओ सदा सहाई संत पेख है सदा हजूर नाम बिहु नड़िया से मरन वसूर वसूर दास दास तन पाए मिटिया तिना गौण विसरिया जिन्ना नाम तनाड़ा हाल कौन जैसे पास हरियाऊ

संग भेटिया सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिनखे

जिन हर त्याया जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई आसा महला पंजवा आव हो मीत इकत्तर होए रस कास सब पुंच है अमृत नाम हर हर जप है।

ठाकर तू ही प्रभ ता केवड भागा ओहो सहेला सद सुखी सब भ्रम पौ भागा हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा करन करावन सगल बिद सो सतगुरु हमारा रहाओ दूजा नाही और को तांका पहो करिए गुर सेवा महल पाईए जग दुत्तर तरिए दृष्ट तेरी सुख पाईए मन माहे निदाना जाको तुम कृपाल भये सेवक से परवाना अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे बजहो नानक मिले एक नाम रिद जप जप जीवे आसा महला पंजवा जा प्रभ की हो चेरुली सो सब ते ऊंचा सब किस तां का कांडी है थोरा अर मूचा जी प्राण मेरा तनो साहिब की मनिया नाम जिसे कै उजली तिस दासी गनिया रहाओ वे परवाहो आनंद में।

हर नाम मजीठै रंगरी त्याग सियाणप चातुरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ परता कह सुमानिया एहो शिंगार बनाए री दूजा भाव वसारी है एहो तंबोला खाए री गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बछाए री आठ पहर कर जोड़ रहो तौ भेटै हर राय री तिस ही चज शिंगार सब साई रूप अपार री।

संतां की होए दासरी एहो अचारा सिखरी सगल गुणा गुणी उत्तमो भरता दूर ना पेखरी एहो मन सुंदर।

सर्व सुख पावों आज्ञा पावों के ना पावों। एक दतार सगल है जाचक दूसर कै पह जावो हों मांगो आनल जावो। सगल शत्रपत एको ठाकुर कौन समसर लावो रहाओ। उठो बैसो रह पीना साको दर्शन खोज खजावो। ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार तिनको महल दुलपावो। अगम अगम अगाध बोध कीमत परे ना पावो। ताकि शरण सत पुरख की सत गुर पुरख त्यावो। भयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर काट्यो बंद गरावो। कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म ना आ।

मार्ग पंथ सुमारी नाम दृढ़ गुरमन मह दिया मोरी तिसा बुझारी दिन पी गावो रहनी गावो गावो सास सास रसनारी सत संगत में बसास हुए हर जीवत मर्द संगारी जन नानक को एहो दान देहो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवनी कथा नैन दर्श पेखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर दसवां महला पंजवां जिसनो तू अस्थर कर मन है ते पाहुन दो दाहा पुत्र कलत्तर ग्रह सगल समग्री सब मिथ्या असनाहा रे मन क्या करह है हाहा दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन लै लाहा रहाओ जैसे बस्तर देह ओढ़ाने दिन दोए चार पुराहा पीत ऊपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा जैसे अंब कुंड कर राखियो परत सिंध गल जाहा आव गया गया पार ब्रह्म की

गंदन वहन सुन है उर जावे है, नाम लैत अलकाया, निंद चिंद को बहुत अमाहयो, बूजी उल्टाया, पारतान पारतान पारती निंदा, अखाद खाहे हरकाया, साच तर्म स्यो रुच नहीं आवे, सत सुनत शोहाया, दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, भगत टेक हर नाया, नानक आहे सरन प्रभ आयो, राख लाज अपनाया, आसा महला पंजवा, मिथ्या संग संग लपटाई, मोह माया कर बांधे, जह जानो सो चीत ना आवे, अहम बुद्ध भय आंदे, मन बैरागी क्यों ना अरादे, काच कोठरी माहे तू बसता, संग सगल बिखै की ब्यादे रहाओ, मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे, पलखिन सीजै अर जादे, जैसे मीठै साध लुभाए, झूठ धंध दुर्गम दे, काम क्रोध अर लोभ मोह, एह इंद्री रस लपटा दे, दीप वारी पुरख बधाटै, बहुर बहुर जन्माते, जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन, तो गुरमेल सब सुख लादे, कहो नानक दिन रैन त्यावो, मार काढ़ी सगले अपादे, इउं जपियो भाई पुरख बधाते, भयो कृपाल दीन दुख भंजन।

कारण कोट दिन से दुख पावे है, करी मोह तरंग मान है, फिर बहुर बहुर पछतावे है। अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया रहाओ। पलक दृष्ट देख भूलो, आक नीम को तू मर। जैसा संग बिसियर स्यो है रे, तैसो ही एहो परग्रहो। बैरी कारण पाप करता, बस्त रही अमाना। छोड़ जाहे तिन्ही स्यो संगी, साजन स्यो बैराना। सगल संसार एह बिद व्याप्यो, सो उबरेओ जिस गुर पूरा। कहो नानक पाव सागर तरेओ, पये पनीत शरीरा। आसा महला पंजवा दोपदे, लूक कमानो सोई तुम पेखेओ। मूड मुग्ध मुकरानी, आप कमाने कौले बांदे। फिर पाछे पछतानी, प्रभ मेरे सब विद आगे जानी। भ्रम के मूसे तू राखत परदा, पाछे जी की मानी रहाओ। जित जित लाए तित तित लागे।

रहाउ। तिस सेवक कै हौ बलिहारी, जो अपने प्रभ भावै तिसकी सोए सुनी मन हरिया। तिस नानक परसन आवै, आसा घर ग्यारवां महला पंजवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नटुआ भेख दिखावै बहु बिद। जैसा है ओहो तैसारी, अनक जोन भ्रम्यो भ्रम भीतर। सुखै नाही परवेसारी, साजन संत हमारे मीता। बिन हर हर अनीतारी, साध संग मिल हर गुण गाए। एहो जन्म पदार

बारी आसा महला पंजवा धूप दे गुर प्रसाद मेरे मन वसिया जो मांगो सो पावो रे नाम रंग एह मन त्रिपताना बहुर न कतहु तामो रे हमरा ठाकुर सब ते उच्चा रहण।

के मर्दन खट दर्शन कर तलीरे सुंदर सुगर स्वरूप सियाने पंच हो ही मोहे शलीरे जिन मिल मारे पंच सूर वीर ऐसो कौन बलीरे।

तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चलीरे आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ बहु गुण धुन मुन जन खट बेते अवर ना कि

मोहल्ला पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमख न मन ते तारी रे रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे हिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे।

चालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवा घर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्याग

भौजन लंघी है सदा हर गुण गाओ जन्म मरण निवारी है दुख ना जम पुर होए नाम निदान सोई पाए कृपा करे प्रभ सोए एक टेक आधार एको एक का मन जोर नानक जपिए मिल साध संगत हर बिन अवर ना होर आसा महला पंजवा जियो मन तन प्राण प्रभ के दिए सब रस भोग।

डोल डोल महा दुख पाया, बिना साधु संग खाट लाभ गोविंद हर रस, पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिय नीत, सास सास त्या

किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन धन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किश नाही। ज्यो ज्यो राख है त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काट मजन हर जन तूर पाए भगत परम पौ नासै हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवां अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग आप किरपाल किरपा प्रभ धारी सतगुर बख्शिया हर नाम कल युग उधारिया।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सतगुर बचन तुम्हारे, निर्गुण निस्तारे, रहाओ महाबिखादी दुष्ट अपवादी, ते पनीत संगारे, जन्म पवंते नरक पड़ंते, तिनके कुल उधारे, कोई ना जाने कोई ना माने, से परगट हर द्वारे, कमन उपमा देओ कमन वडाई, नानक खिन खिन वारे, आसा महला पंजवा, बावर सोए रहे, रहाओ मोह कटांब बिखै रस माते, मिथ्या गहन गहे, मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास, मन मुख सत कहे, अमृत नाम पदार्थ संगे, तिल मर्म ना लहे।

गज मोतियन लालन नह नाहा नहीं राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किस किस ना चाही चरणन सरनन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तपत हरी।

संयम कर थाके नानक साध सरन प्रभ संग वसै आसा महला पंजवां घर पंद्रवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद बेकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे पकर केस जम उठारियो तद ही घर जावे लोभ बिखिया बिखे लागे हर वित चित दुखाही

निपट बाजी हार मूका पछतायो मन पूरा दान सगल गैर वजह भरिया दीवान लिखे ना परिया जेहे कार्ज रह ओला सोए काम ना करिया।

सहजाए दरसाए अब रातिया गोविंद सिंह संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन मैदान पाए सब

प्रभ त्यावो भ्रम पीत जीत मटावो निद नाम नानक मोरै आसा महला पंजवां काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल।

अंदेसिया हां संत उपदेसिया मेरे मना जिस जन नाम सुख हां तिस निकट ना कदे दुख हां जो हर हर जस सुने हां सब को तिस मन्ने हां सफल सो आया हां नानक प्रभ पाया मेरे मना सावरी।

पहला लेख असंख लेख लेख मान मन माने सत सुरत बखान कथनी बदनी पढ़ पढ़ पार लेख असंख अलेख या पार।

जग ज्ञानी विरला आचारी जग पंडित विरला विचारी बिन सतगुर भेटे सब फिरे अहंकारी जग दुखिया सुखिया जन को।

कौरो वै दुख कोए, सोरो वै जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सो होए, जीवत मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना, हौ बलिहारी सतगुर चरना, गुर बोहित शब्द पै तरना, निरपहु आप

भ्रांत सूतक अगन पखै जग खाए सूतक जल थल सब ही थाए नानक सूतक जन्म मरीजै गुर प्रसादी हर रस पीजै राग आसा महला पहला आप विचारै सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुरपुरा गुरमान मन

नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख महली महल पछान गुरमुख सुर

सोग अमृत ज्ञान महारास भोग पंच समाई सुखी सब लोग सगली जोत तेरा सब कोई आपे जोड़ बछोड़े सोई आपे करता करे सो होई ताहे उसारे हुक्म सुमावे हुक्मों वरतै जो तिस भावै।

लह संधान जिस कायन तन सहज ना जाना परम भुलाना फिर पछताना गल पाही बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर भागे सतगुर राखे से वड भागे।

राग सुनाए कहावह बीते, भिन नावै मन झूठ अनीते, कहां चलो हो मन रहो हो करे, गुरमुख राम नाम तृप्तासे, खोजत पाव हो सहज हरे रहाओ, काम क्रोध मन मोह शरीरा, लभ लोभ अहंकार सो पीरा, राम नाम बिन क्यों मन तीरा, अंतर नामन साच पछाणे, अंतर की गात गुरमुख जाने, साच शब्द बिन महल ना पछाणे, निरंकार मह आकार समावे, अकल कला सच साच टिकावे, सो नर गर्भ जोन नहीं आवे, जहां नाम मिले तह जाऊं, गुर प्रसादी कर्म कमाऊं, नामे राता हर गुण गाऊं, गुर सेवा ते आप पछाता, अमृत नाम वस्या सुखदाता।

ग्रास इकत थाए किए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख इहो मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन भय निरंकारी इहो मन निर्मल दर घर सोई गुरमुख भगत भाओ धुन होई अहनस हर जस गुर प्रसाद घट घट सो कब आद जुगाद राम रसायन इहो मन माता सर्ब रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के।

दुख तिस लागै, जो जन राम नाम लिव जागै, भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त भए हर रंग, आसा महला पहला एक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जानै, दुख मिटै सच शब्द पछानै।

गवाइयां रंग तमाशे चाहे बाबर वाणी फिर गई कोयर ना रोटी खाए एक ना वक्त खोआई है एक ना पूजा चाहे क्योंकि बिन हिंदवाणिया क्यों टिक्के कढ़ है ना आए राम ना कबहू चेतेउ हुण कहण ना मिले खुदाए एक घर आवे अपने एक मिल मिल पुछ है सो।

घर दर मंडप महला, कहां सो बंक सराई, कहां सो सेज सुखाली कामन, जिस वेख नींद ना पाई, कहां सो पान तंबोली हरमा, हो या शाई माई, इस जर कारण कणी विगुत्ती, इन जर कणी खोआई, पापा बाजो हो।

किसनों आख सुनाइए दुख सुख तेरे पाणे होवे किस थे जाए रुआइए हुक्मी हुक्म चलाए बिगसे नानक लिखिया पाईए एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा काफी महला पहला कर अठवां अष्टपदियां।

एक गिरी सेवक साधका गुरमति लागे नाम दान इशनान दृढ़ हर भगत सो जागे गुर ते दर घर जानी है सो जाए सियाने नानक नाम ना विसरे साचे मन माने आसा महला पहला मनसा मन समाए ले भवजल सच तरना आद जुगाद दयाल तू ठाकुर तेरी सरना तू दातो हम जाचिका हर दर्शन दीजे गुरमुख नाम त्याई है मन मंदर भीजे रहाओ कूड़ा लालच छोड़ी है तो साच पछाण गुर कै शब्द समाई है परमारथ जाने इहो मन राजा लोभिया लुभ तहो लोभाई गुरमुख।

लालच दुख भारी साचो साहिब मन वसे हों मैं बिख मारी दुबदा छोड़ कवाटड़ी मूस हो गए भाई अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई मनमुख पत्थर सैल है त्रिग जीवन फीका जन्म है के तारा की है

हूँ। हुक्मी वजह लिखाए आया जानिए लाहा पल्ले पाए हुक्म सियाणी है। हुक्मी पैंदा जाए दरगाह पानी है।

दिया मन मुख पत खोई रहाउ जिन्नी ए को सेवया पूरी मत पाई आद जगाद निरंजना जन हर सरनाई साहिब मेरा एक है अवर नहीं पाई।

ठानै, नित नित खरा संभाली है, सच सौदा पाई है, खोटे नदर ना आमनी, ले अगन जलाई है, जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई, एको अमृत बिरख है, फल अमृत होई, अमृत फल जिन्नी चाखिया, सच रहे अगाई, तिन्ना परम ना भेद है, हर रसन रसाई।

अधारा अंत सखाई पाया जन मुक्त द्वारा जन्म मरण दुख मेटिया जप नाम वरारी नानक नाम ना विसरै पूरा गुर तारी आसा महला तीजा अष्टपदिया घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सात वेद सिमरत सर तेरा सुरसरी चरण समाणी साखा तीन मूल मत रावे तू ता सर्ब वडाणी ता के चरण जपै जन नानक बोले अमृत बाणी रहाओ ते तीस करोड़ी दास तुम्हारे रिद सिद्ध प्राण आधारी ता के रूप ना जाही लखणी।

आस्था महला तीजा सतगुरु हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन मन वसाया शब्द कीन सदा सुख पाया सुन मन मेरे तत ज्ञान देवन वाला सब बिद जाने गुरमुख पाईया नाम निदान रहाउ सतगुरु भेटे की वडियाई जिन ममता अग्न तृष्णा बुझाई सहजे माता हर गुण गाई।

सुन मन मन वसाए तू आपे आए मिलै मेरे भाई अन दिन सच्ची भगत कर सच्चै चित लाई एको नाम त्याए तू सुख पाव है मेरे भाई हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाउ इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे बिन सतगुर पाई ना जाए पंडित पढ़ दे जोत की तिन बूझ ना पाए आपै थै सब रखियोन किस कहन ना जाई आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई जी जंत सब तिस दे सब ना का सोई मंदा किसनो आखी है जे दूजा होई इको हुक्म वर्तदा एका सिर कारा आप पवाली दितियन अंतर लोभ वकारा एक आपे गुरमुख कीतियन बूझन विचारा भगत पियो नानो बख्शियन अंतर भंडारा ज्ञानिया नो सब सच है सच सोझी होई कोई भलाए किसे दे ना भुलनी सच जानन सोई कर्म है पंच वर्त दे पंचे विचारी नानक बिन सतगुर वस ना आवनी नाम हों मैं मारी आसा महला तीजा करे अंदर सब वत है बाहर किश नाही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाई सतगुर ते हर पाई है पाई अंतर नाम निदान है पूरा सतगुर दिया दिखाई रहाउ हर का गाहक होए सो लए पाए रतन विचारा अंदर खोले दिब दिष्ट देखै मुक्त भंडारा अंदर महल अनेक है जियो करे बसेरा मन चिंदिया पल पाए से फिर होए ना फेरा पारखियां वत संभाल लई गुर सोझी होई नाम पदार्थ मुल सा गुरमुख पावै कोई बाहर भाले सो क्या लहै वत करै अंदर पाई भरमे भूला सब जग फिरै मनमुख पत गवाई घर दर छोड़ै अपना पर कर झूठा जाई चोरै वांगू पकड़ियै बिन नावै चोटा खाई जिन्नी घर जाता अपना से सुखिए पाई अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वडियाई आपे दान करे किस आखी है आपे दे बुझाई नानक।

नामे ही सुख उपजै, नामे सरनाई, बिन नामे कोई ना मनिए, मनमुख पथ गुआई, जमपुर बद्दे मारिय है, बिरता जन्म गुआई, नामे की सब सेवा करे, गुरमुख नाम बुझाई, नाम हो ही नाम मनिए, नामे वडियाई, जिसनो देवै तिस मिले, गुरमती नाम बुझाई, नानक सा

नानिवह दूजा भाऊ सुआव इहो मनुआ क्यों कर वस आवे गुर प्रसादी ठाकिया ज्ञान मती घर आवे रहाउ सुहागनी आप सवारियों लाए प्रेम प्यार सतगुर कै भाणे चल दिया नामे सहज सिंगार सदा रावे है फिर अपना सच्ची सेज सुपाय फिर कै प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाय ज्ञान अपार सिंगार है सुभावंती नार सा सब राई सुंदरी फिर कै हित प्यार सुहागनी विच रंग रखियों सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे भाई प्यार सुहागनी सिंगार बनाया गुण का गलहार प्रेम फिरमल तन लावना अंतर रतन विचार भगत रते से उत्मा जात पथ शब्दे होए बिन नावे सब नीच जात है बिष्टा का कीड़ा होए हौ हौ कर दी सब फिरे बिन शब्द हौ ना जाय नानक नाम रते तिन हौ मैं गए।

आप दे आगे जुग जुग प्रगट होए ए मन रूढ़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ाए रूढ़ी बाणी जे रपे ना एहो रंग लह ना जाए रहाओ हम नीच मैले अत अभमानी दूजे पाए विकार गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल ज्योत अपार बिन गुर कोए ना रंगी है गुर मिले रंग चढ़ाओ गुर कह पै पाए जो रते सिफती सच समाओ पै बिन लाग ना लगई ना मन निर्मल होए बिन पै कर्म कमावनी झूठे ठाओ ना कोई जिसनो आपे रंगे सो रपसी सत संगत मिलाए पूरे गुरते सत संगत उपजे सहजे सच सुभाए बिन संगती सब ऐसे रह जैसे पास ढोर जिन कीते तिसे ना जाननी बिन नावे सब चोर एक गुण विहाज है औगण विकण है गुर कै सहज सुभाए।

बहुविध श्रिष्ट उपाई हुक्मे कार कराएंदा दूजा किस कही है भाई बुझना अबुझना तुद किया ए तेरी सिर कार इक ना बख्शे मेल लह एक दरगाह मार कड़े कूड़ियार एक धुर पवित पावन है तुद ना मेलाए गुर सेवा ते सुख उपजे सच्चे शब्द बुझाए एक कुचल कुचील विखली पते नाम हो आप खुआए ना उन सिद्ध ना बुद्ध है ना संजमी फिर है उतवताए नदर करे जिस आपनी तिस नो भावनी लाए सत संतोख एह संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए लेखा पढ़ ना पहुंची है कत कहने अंत ना पाई गुर ते कीमत पाई है सच शब्द सोजी पाए इहो मन देही सोध तू गुर शब्द वीच

कर गए पल्ले किशना पाए महल नाही दोहागनी अंत गई पछताए सो पिर मेरा एक है एक सस्यो लिवलाए नानक जे सुख लोड़ है कामनी हर का नाम मन वसाए आस्ता महला तीजा अमृत जिना चखायुन रस आया सहज सुभाए सच्चा वी प्रवाहो है तिसनो तिल ना तमाई अमृत सच्चा वरसदा गुरमुखा मुख पाई मन सदा हरियावला सहजे हर गुण गाए रहाउ मन मुख सदा दुहागनी दर खड़िया बिल लाहे जिन्ना पिर का स्वाद ना आयु जो तुर लिखिया सो कमाहे गुरमुख बीजे सच जम्मे सच नाम वापार जो इत लाहे लायन भगती दे भंडार गुरमुख सदा सुहागनी भै भगत शिंगार अन दिन रावे फिर अपना सच रखे पुरतार जिन्ना फिर रावया अपना तिन्ना विटो बल जाओ सदा फिर कै संग रह विचो आप गवाई तन मन शीतल मुख उजले फिर कै भाई प्यार सेज सुखाली पिर रवे हो मैं तृष्णा मार कर कृपा घर आया गुर कै हित अपार वर पाया सुहागनी केवल एक मरार सबे गुना बख्शाए लयन मेले मेलन हार नानक आखण आखी जे सुन धरे प्यार आसा महला तीजा सतगुर ते गुण उपजे जा प्रभ मेले सोए सहजे नाम त्याई है ज्ञान प्रगट होए।

शब्द रहे आपरपूर रहाउ गुरमुख आप पछाणिया तिन्नी एक मन त्याया सदा रवह पेरे अपना सच्चा नाम सुख पाया ए मन तेरा को नहीं कर वेख शब्द विचार हर सरनाई भज पओ पाए मोख द्वार शब्द सुनिए शब्द बुझिए सच रह लिवलाए शब्द हमें मारिए सच्चे महल सुख पाए इस जुग में शोभा नाम की।

सहज सुख के सब हाट साहा वपारी एकै थाट जे जिया दन को लय ना जगात सतगुर कर दीनी तुर की छाप वखर नाम लद खेप चलावो लै लाहा गुरमुख घर आवो सतगुर साहु सिख बणजारी पूंजी नाम लेखा साच संवारे सो वसै इत कर जिस गुर पूरा सेव अब चल नगरी नानक देव असावरी महला पंजवां घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन हर स्यों लागी प्रीत साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत रहाउ दर्शन की प्यास घणी चितवत अनक प्रकार करो अनग्रह पार ब्रह्म हर कृपा धार मुरार मन परदेसी आया मिलियो साध कै संग जिस वखर कौ चाहता सो पायो नामह रंग जेते माया रंग रस बिनस जाही खिन माहे भगत रते तेरे नाम स्यों सुख पुंच है सब ठाए सब जग चल तो पेखी है निश्चल हर को नाम कर मित्राई साध स्यों निश्चल पावह ठाव मीत साजन सुख।

साथ चरण कमल बोहित भय लग सागर तरियो ते पेट्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ स्यो नेह साध तेरे की जाचना विसरना सास ग्रास जो तुद भावे सो भला तेरे पाणे कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पीते परमानंद हासा।

सुख दुख तेरी आज्ञा प्यारी दूजी नाहीं जाई। जो तू कराव है सो करी प्यारे अवर किछ करन ना जाई। दिन रैन सब सुहावने प्यारी जित जपिए हर नाम साई कार कमावनी प्यारी तुर मस्तक लेख लखाई। एको आप वर्तदा प्यारी घट घट रहिया समाई। संसार कूप ते उधर लह प्यारे नानक हर सरनाई। राग आसा महला पहला पट्टी लिखी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सस्य सोए श्रिष्ट जिन साजी सबना साहिब एक भया। सेवत रहे चित जिन का लागा आया तिनका सफल भया।

जन्म गया अणहोंदा ना उतरायो पांदा अवरा का भार तुद लया जज्जै जोत हिर लई तेरी मूड़े अंत गया पछतावहगा एक शब्द तू चीनह नाही फिर जूनी आवहगा तुद सिर लिखिया सो पढ़ पंडित अवरा नो ना सखाल बिखिया पहला फाहा पया पांदी पिछों दे गल चाटड़िया सस्सै संयम गयो मूड़ी एक दान तुद कथाई लया साई पुत्री जजमान की सा तेरी एत धान खादै तेरा जन्म गया मम्मै मात हिर लई तेरी मूड़े हों मैं वड्डा रूप पया अंतर आत्मै ब्रह्म ना चीनिया माया का मोहताज पया ककै काम क्रोध भरम्यो हों मूड़े ममता लागे तुद हर विसरिया पढ़ है गुण है तू बहुत पुकार है विण बूझे तू डूब मुआ तत्तै तामस जलियो हो मूड़े थत्तै थान पृष्ट हुआ कग्गै घर घर फिर है तू मूड़े दद्दै दान ना तुद लया पप्पै पार ना पवही मूड़े परपंच तू पलच रहया सच्चै आप खुआयो हो मूड़े एहो सिर तेरे लेख पया पब्बै भवजल डुबो हो मूड़े माया विच गलतान पया गुर प्रसादी एको जाने एक घड़ी मैं पार पया वावे वारी आईया मूड़े वास देव तुद भी सरिया ए वेला ना लह सह मूड़े फिर तू जम कै वस पया झज्जै कदे ना झूरह मूड़े सतगुर काप देस सुन तू विखा सतगुर बाजो गुर नहीं कोई न गुरे का है नाउ बुरा तद्दै धावत वर्ज रख मूड़े अंतर तेरे निदान पया गुरमुख हो वह ता हर रस पी वह जुगा जुगंतर खाही पया गगै गोविंद चित कर मूड़े गली किने ना पाया गुर के चरण हृदय वसाए मूड़े पिछले गुनहा सब बख्श लया हा है हर कथा बूझ तू मूड़े ता सदा सुख होई मनमुख पढ़ै तीता दुख लागै बिन सतगुरु मुक्त ना हुई हरारे राम चित कर मूड़े हृदय जिनकै रव रहया गुर प्रसादी जिन्नी राम पछाता निर्गुण राम तिन्नी बूझ लहया तेरा अंत ना जाई लखिया अकथ ना जाई हर कथिया नानक जिनको सतगुर मिलिया तिनका लेखा निबड़िया।

वाद पुरुष अपरम्परु तारे नाम अगमय गोचर अपरय पारा पार ब्रह्म परदानो आदि जुगादि है पी होसी अवर झूठा सब मानो कर्म धर्म की सार ना जाने सुरत मुक्त क्यों पाई है नानक गुरमुख शब्द पछाने अहनस नाम त्याई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हूं मैं ममता माया संग ना जाई राम मात पित भाई सुत चतुराई।

साचा सिरजनहार जीउ सबना का दाता कर्म विधाता दुख बसारनहार जीउ दुख बसारनहार स्वामी कीता जा का होवै कोट कुटंतर पापा केरे एक घड़ी मह खोवै हंस से हंसा बग से बग्गा घट घट करे बिचार जीओ तू सबनी ताई जितै हौ जाई साचा सिरजनहार जीओ जिन एक मन प्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जीओ तिन जम नेड़ ना आवै गुर शब्द कमावै कबहू ना आवै हार जीओ ते कबहू ना हार है हर हर गुण सार है तिन जम नेड़ ना आवै जमन मरन तिना का चूका जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर तार जीओ जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जीओ जिन जगत अपाया तंदै लाया तिसै विटोहो कुर्बान जीओ ताकी सेव करीजै लाहा लीजै हर दरगाह पाईए मान जीओ हर दरगाह मान सोई जन पावै जो नर एक पछाणै ओह नव निध पावै गुरमत हर त्यावै नित हर गुण आख बखाणै अहनस नाम तिसै काली जै हर उत्तम पुरख प्रधान जीओ जिन जगत अपाया तंदै लाया हौ तिसै विटोहो कुर्बान जीओ नाम लैन से सो है तिन सुख फल होवै मन है से जिन जाहि जीओ तिन फल तोट ना आवै जां तिस पावै जे जुग केते जाहि जीओ जे जुग केते जाहि स्वामी तिन फल तोट ना आवै तिन जरा ना मरना नरक ना परना जो हर नाम त्यावै हर हर करह से सुकह नाही नानक पीड़ ना खाहे जियो नाम लैन से सोह तिन सुख फल होवै मन है से जिन जाहे जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला पहला शंत कर तीजा तू सुन हरना कालिया की वाड़ी है राता राम

साधु आसा महला तीजा संत घर पहला हम करे साचा सुहिला साचा शब्द सुहाया राम धन फिर मेल भया प्रभ आप मलाया राम प्रभ आप मलाया सच मन वसाया कामन सहजे माती गुर शब्द सिंगारी सच सुवारी सदा रावी रंग राती आप गवाए हर वर पाए ता हर रस मन वसाया कहो नानक गुर शब्द सवारी सफलियो जन्म सवाया दूजड़ै कामण भरम भुली हर वर ना पाए राम कामण गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम बिरथा जन्म गवाए मनमुख इयाणी औगुणवंती झूरे अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलिया हदूरे देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चा शब्द सुपाए नानक बिन नावै कामण परम पलानी मिल प्रीतम सुख पाए फिर संग कामण जानिया गुरमेल मलाई राम अंतर शब्द मिली सहजे तपत बुझाई राम शब्द तपत बुझाई अंतर शांति आई सहजे हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माणी सच्चै शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके भेखी मुक्त ना पाई नानक बिन भगती जग बौराना सच्चै शब्द मलाई सा तन मन आनंद भया हर जियो मेल प्यारे राम सा तन हर कै रस रसी गुर कै शब्द अपारे राम शब्द अपारे मिले प्यारे सदा गुण सारे मन वसी सेज सुहावी जा फिर रावी मिल प्रीतम अवगण नसी जित कर नाम हर सदा ते आईऐ सोहे लड़ा जुग चारी नानक नाम रते सदा आनंद है हर मिलिया कार्य सारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला तीजा संत घर तीजा साजन मेरे प्रीत महो तुम सह की भगत करे हो गुर सेवो सदा अपना।

हर तेरै नाली मन से आण पछोड़ी है गुर का शब्द संभाले साथ तेरे सो सहु सदा है एक खिन हर नाम संभाले जन्म जन्म के तेरे पाप कटे अंत परम पद पावे साचे नाल तेरा गंड लागे गुरमुख सदा संभाले यूं कह नानक जह मन तू धामदा तह हर तेरे सदा नाली सतगुर मिले तावत थमिया निज कर वसिया आई नाम विहाजे नाम लई नाम रहे समाई तावत थमिया सतगुर मिले दसवां द्वार पाया तिथे अमृत भोजन सहज धुन उपजै जित शब्द जगत थम रहा है।

सहो जान है मरण जीवन की सोजी होई गुर प्रसादी एको जान है ता दूजा भाव ना होई मन शांत आई बजी बधाई।

मन मुख मुग्ध चेत है नाही अगे गया पछतावे। यूं कह नानक मन तू गर्ब अटिया गर्ब लदया जावे। मन तू मत मान कर है जे हौ किछ जानदा गुरमुख ने माणा हो। अंतर अज्ञान हौ बुद्ध है सच शब्द मल खो। हो नमाणा सतगुरु अगे मत किस आप लखावे। अपने अहंकार जगत जलिया मत तू अपना आप गवावे। सतगुर कै भाणे करहें कार सतगुर कै भाणे लाग रहो। यूं कह नानक आप छड सुख पावे मन निमाणा होए रहो। धन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया सो सहो चेते आया। महा आनंद सहज भया मन तन सुख पाया। सो सहो चेते आया मन वसाया अवगण सब वसारी जां तिस भाणा गुण प्रगट होए। सतगुर आप सवारी से जन प्रवान होए। जिन्नी एक नाम दिड़िया दुतिया भाउ चुकाया। यूं कह नानक धन सो वेला जित मैं सतगुर मिलिया सो सहो चेते आया। एक जंत परम भुले तिन सह आप भुलाए। दूजे पाए फिर हैं हम मैं कर्म कमाए। तिन सह आप भुलाए कुमार।

बसाए सब संसार दुख गवाया अदिष्ट अगोचर गुरबचन त्याया पवित्र परम पद पाया अनहद धुन वाजे है नित वाजे गाई सतगुर बाणी नानक दात करी प्रभ दाता ज्योति ज्योत समाणी मन मुखा मन मुख मोए मेरी कर माया राम खिन आवे खिन जावे दुर्गंध मड़े चित लाया राम लाया दुर्गंध मड़े चित लागा ज्यों रंग कसुंब दिखाया खिन पूरब खिन पच्छम शाए ज्यों चक कुम्हार पवाया दुख खावे है दुख संचह भोग है दुख की बिरद वधाई नानक बिकम

सब पर हर त्यागी सुन्ने सुन समावे बन जारे एक भारती आवह लाहा हर नाम ले जाए नानक मन तन अर्प गुरे आगे जिस प्राप्त सो पाए रतना रतन पदारत बहु सागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत भरे भंडारा समुंद वरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक।

निस्तारी, रामो राम नाम जपया, दुख किल विखनास गुआया राम, गुर परचै त्याया,

मुख गवाई। मन तन शीतल श्रृंगार सब हुआ, गुरमत राम परगासा। नानक आप अनुग्रह किया, हम दासन दासन दासा। जिन्नी रामो राम नाम वसारिया, ते मन मुख मूड अपागी राम। किन अंतरे मोह व्यापै, खिन खिन माया लागी राम। माया मल लागी मूड पै अपागी, जिन राम नाम नह पाया। अनेक कर्म करह अभमानी, हर रामो नाम चुराया। महाबिखम जम पंथ दुहेला, कालू खत्म हो अंधियारा। नानक गुरमुख नाम ते आया, ता पाए मोख द्वारा। रामो राम नाम गुरु, राम गुरमुखे जाने राम। एहु मनुआ खिन ऊब पयाली, भरम दा इकत कर आणै राम। मन इकत कर आणै सब।

सते सत गुरमुख जानिया राम। सेव को गुर सेवा लागा जिन मन तने अर्प चढ़ाया राम। मन तने अर्पया बहुत मन सरदया गुर सेवक पाए मलाए।

गुण गाया, जन्म जन्म के किल वेख दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन परधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर शब्दी हर रस भोग जियो, हर रस भोग महा निर्जोग, वडभागी हर रस पाया, से धन वड्डे सतपुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया, जन नानक रेण मंगै पग साधु।

पग चारे धर्म ध्यान जियो। मन तन हर गाव है परम सुख पाव है, हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। गुण ज्ञान पदार्थ हर हर किरतार्थ, शोभा गुरमुख होई अंतर बाहर हर प्रभे को। दूजा अवर ना कोई, हर हर लिव लाई हर नाम सिखाई, हर दरगाह पावे मान जियो। सत युग सब संतोख सरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो। एता जोगे आया अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए दियो। पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया, मन हृदय क्रोध जलाए दियो। मन हृदय क्रोध महा बिसलोद, निरपता वह लड़ दुख पाया। अंतर ममता रोग लगाना, हों मैं अहंकार वधाया। हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर, देख गुरमत हर नाम लह जाए जियो। एता जोगे आया अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो। जुग द्वापर आया परम परमाया, हर गोपी कान उपाय जियो। तप तापन ताप है जग पुन आरंभ है, हत किरिया कर्म कमाए जियो। किरिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया, दोए पग टिकै टकाए जियो। महाजुद जोद बहु कीने, विच हों मैं पचै पचाए दियो। दीन दयाल गुर साद मलाया, मिल सत गुर मल लह जाए दियो। जुग द्वापर आया परम परमाया, हर गोपी काने उपाए दियो। कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टकाए दियो। गुर शब्द कमाया औखद हर पाया, हर कीरत हर शांत पाए जियो। हर कीरत रोते आई हर नाम वडाई, हर हर नाम खेत जमाया। कल युग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मूल गवाया। जन नानक गुर पूरा पाया, मन हृदय नाम लखाए जियो। कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टकाए दियो। आसा महला चौथा, हर कीरत मन पाई परम गत पाई। हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया। तुर मस्तक भाग प्राण जियो, तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग। हर नामे हर गुण गाया, मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी। हर नामे हर सोहाया, ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया। मिल सतगुर मनुआ मान जियो, हर कीरत मन पाई परम गत पाई। हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया। ते उत्तम जन प्रधान जियो, तिन हम चरण सरेव है खिन खिन पग धोवे है। जिन हर मीठ लगान जियो, हर मीठा लाया परम सुख पाया। मुख भागा रतिं चारी, गुरमत हर गाया हर हार उर पाया। हर नाम कंठ धारी, सब एक दृष्ट समत कर देखै। सब आत्म राम पछाण जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया। ते उत्तम जन प्रधान जियो, सत संगत मन पाई हर रसन रसाई। विच संगत हर रस होए जियो, हर हर अराध्या गुर शब्द विगासिया। बीजा अवर ना कोए जियो, अवर ना कोए हरे अमृत सोए।

संगत मन पाई हर रसन रसाई विच संगत हर रस होए जियो हर दया प्रभ तार हो पाखण हम तार हो कड ले वो शब्द सुपाए जियो मोह चीकड़ फाथे निगरत हम जाते।

निर्गोचर आद निरंजन निरंकार जियो तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो तू घट घट अंतर सर्व निरंतर सब मैं रहया समाए जियो घट अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर ताका अंत न पाया तिस रूप न रेख अदिष्ट अगोचर गुरमुख अलख लखाया सदा आनंद रहै दिन राती सहजे नाम समाए जियो तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निदान जियो हर हर प्रभ एको अवर ना कोई तू आपे पुरख सुजान जियो पुरख सुजान तू प्रधान तुद जेवड़े अवर ना कोई तेरा शब्द सब तू है वरत है तू आपे करह सो होई हर सब मह रव्या एको सोई गुरमुख लखिया हर नाम जियो तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निदान जियो सब तू है करता सब तेरी वडियाई ज्यो भावै तिवें चलाए जियो तुदे आपे भावै तिवें चलावह सब तेरै शब्द समाए जियो सब शब्द समावै जां तुद भावै तेरै शब्द वडियाई गुरमुख बुद्ध पाईऐ आप गवाईऐ शब्दे रहिया समाई तेरा शब्द अगोचर गुरमुख पाईऐ नानक नाम समाए जियो सब तू है करता सब तेरी वडियाई ज्यों भावै तिवें चलाए जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा।

मेरा मन तनु पिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजी जिस लागी पीर पिराम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखी है।

हर पाया, हर भगत एक मंगा, मेरा मन तन शब्द विगासिया, जप अनंत तरंगा, मिल संत जना हर पाया, नानक सत संगा, दीन दयाल सुन बेनती, हर प्रभ हर राया राम राजी, हों मांगू शरण हर नाम की, हर हर मुख पाया, भगत वच्छल हर बिरद है।

आई। आसा महला चौथा, इन मस्तक तुर हर लिखिया, तिना सतगुर मिलिया राम राजी, अज्ञान अंधेरा कटे।

मेरा सतगुरु सोथान सुहावा राम राजी गुर सिखी सोथान पालिया लै तूर मुख लावा गुरसिखा की काल पाए पाई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पू

गुर सिखा की भुख सब गई, तिन पिछै होर खाए कनेरी। जन नानक हर कुन बीजिया, फिर तोट ना आवै हर कुन केरी। गुर सिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजी। कोई कर गल सुनावै हर नाम की, सो लगै गुर सिखा मन मिठा। हर दरगाह गुर सिख पैलाई है, जिन्ना मेरा सतगुरु तुठा। जन नानक हर हर होया। हर

हे हरि मैं प्रेम ना चाखिया मेरे प्यारी भाउ करे मन तृष्णा ना बुझी मेरे प्यारे नित आस करे नित जोवन जावे मेरे प्यारे जम सास हिरे भाग मणि सुहागन मेरे प्यारे नानक हर पुर धारे फिर रत्याड़े मैंडे लोइन मेरे प्यारे चातरक बूंद जिवें मन सी

सब किश मैं सब किश पाया नाम त्याई राम नाम त्याई सदा सखाई सहज सुपाई गोविंदा गणत मटाई चूकी ताई कदे ना व्यापै मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अच्छा।

सर से अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता भरम गड़ा पाया खजाना बहुत नदाना साणथ मेरी आप खड़ा सोई सुगयाना सो परदाना जो प्रभ

हर रंग मानी हर संता हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड भागी सत संगत पाई राम वड भागी पाए नाम ते आए लाते दूख संतापै गुर चरणी लागे प्रम पौ भागे।

हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम। वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम। सद बलिहारे कर नमस्कारी जिन भेटत प्रभ जाता। घट घट रव रहा सब थाई पूरन पुरख विधाता। गुरपुरा पाया नाम ते आया जूए जन्म न हारे। बिनवंत नानक सरन तेरी राख किरपा धारे। बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम। तेरे चरना

जल संग राती माछली नानक हर माते चातरक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अदारा राम राजे मालक जीना सुत प्रात मीत सबहू ते प्यारा राम राजे सबहू ते प्यारा पुरख नरारा ताकी गत नहीं जानिए हर सास ग्रास न बिसरे कबहू गुर शब्दी रंग मानिए प्रभ पुरख जग

हर प्यारा मिले नारायण अपने मानोरथ पूरा राम राजे ताठी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे पूर्ण गुर पाए पुरब लखाए सब निद दीन दयाला आद माद अंत प्रभ सोई सुंदर गुरु गोपाला सुख सहज आनंद कनेरे

जम पंथ भणी है तह साध संग ना डरपी है कर कीरत गोविंद गुणी है सगल परास्त दुख हरे कहो नानक संत गोविंद हर के मन हर स्यो नेहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे जैसी मछली नीर टिक खिन पी ना तीरे मन ऐसा नेहो करे हो जैसी चात्रक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे मेह हर प्रीत करी जय इहो मन दीजै हथ लाइय चित।

कहो नानक संत अनंत ठाकुर की हरसियों की जय नेहा। मन ऐसा नेहो करे हो चकवी सूर स्नेहो चितवै आस घनी कद दिनियर देखी है। गोकले अंब प्रीत चवै सुहाविया मन हर रंग कीजिए। हर प्रीत करीजे मान ना कीजे इक राती के हब पाहुनिया। हब क्या रंग लायो मोहर चायो नांगे आवन जावनिया। थिर साधु सरनी पड़ी है चरनी अब टूटस मोह जो कीती है। कहो नानक संत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है। निष्करंक जैसे नाद सुन श्रवणी हियो डिवै मन ऐसी प्रीत की जय जैसी तरण पता।

मन लाल दीजै मन लाल लह दीजै भोग करीजै हव खुशियां रंग माणी फिर अपना पाया रंग लाल बनाया।

मन हर चरण गिहिजै, ऐसी मन प्रीत कीजै। आसा महला पंजवां सलोक, बन बन फिरती खोजती, हारी बहु अवगाही। नानक पेटे साध जब, हर पाया मन माही। संत जां को खोजह असंख मुनि, अनेक तपे, ब्रह्मे कोट अराधह ज्ञानी। जाप जपे जप ताप संयम क्रिया पूजा, अनक सोधन बंदना। कर गवन बसदा तीर्थ है मज्जन, मिलन को निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी, सगल तुझ आराधते। दयाल लाल गोबिंद नानक, मिल साध संगत हुए गते। कोट बिसन अवतार, संकर जटा तार। चाह है तुझ दयार, मन तन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर, सगल पूरक प्रभ धनी। सुर सिद्ध गण गंधर्व त्याव है, जख किनर गुण भनी। कोट इंदर अनेक देवा, जपत स्वामी जय जयकार। अनाथ नाथ दयाल नानक, साध संगत मिल उधार। कोट देवी जाको सेव है, लक्ष्मी अनक पांत। गुप्त प्रगट जाको राध है, पौन पानी दिन सरात। नखियतर ससियर सूर त्याव है, वसुद गगना गावे। सगल खानी सगल बाणी, सदा सदा त्यावे। सिमरत प्राण चतर बेद, खट शास्त्र जा को जपात। पतत पावन भगत वचल, नानक मिली है संग सात। जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी, अनजानत जो सेवै तेती नह जाए गनी। अवगत अगंत अथाह ठाकुर, सगल मंजे बाहरा। सर्ब जाचक एक दाता, नह दूर संगी जाहरा। बस भगत थिया मिले जिया, ताकि उपमा कित गनी। एहो दान मान नानक पाए, सीस साधा धर चरनी। आसा महला पंजवां सलोक, उदम करहो वडभागी हो। सिमरो हर हर राय, नानक जिस सिमरत सब सुख होवै है। दुख दर्द भ्रम जाय, संत नाम जपत गोबिंद नह अलसाइए। भेटत साधु संग, जमपुर नह जाइए। दुख दर्द ना पौ ब्यापै, नाम सिमरत सद सुखी। सास सास अराध हर हर, त्याए सो प्रभ मन मुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण निद, कर दया सेवा लाई है। नानक पयंपै चरण जंपै, नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है। पावन पतत पनीत नाम निरंजना, परम अधेर बनास ज्ञान गुर अंजना। गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन, जल फल मही अल पूरिया। एक निमख जा कैर दैवसिया, मिटे तिसैव सूरिया। अगाध बोध समरथ स्वामी, सर्ब का पौ भंजना। नानक पयंपै चरण जंपै, पावन पतत पुनीत नाम निरंजना। ऊट गही गोपाल दयाल कृपा निदे, मोहे आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे। हर चरण कारण करण स्वामी, पतत उदरन हर हरि। सागर संसार पाव उतार, नाम सिमरत बहुतरी। आद अंत बेअंत खोजह, सुनी उदरन संत संग बिदे। नानक पयंपै चरण जंपै, ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वचल हर

आई सहज सुभाई भगत कार्ज सारिया आनंद हर जस महामंगल सर्व दुख वसारिया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नानक पयम पै चरण जम पै भगत।

आवे अवनाशी अवघत सो प्रभ सदा नव तन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण सद सदा प्राण पत गत मत जाति प्रिय प्रीत प्रीतम भावे नानक वखाणे गुर बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे ना जावे जाको राम पतार तां कै अनद घना सुखवंती सानार सोभा पूर्बणा मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्ब सिद्ध नवनिद तित ग्रह नहीं ऊना सब कशु मधुर बाणी प्रह मानी थिर सुहागता का बना नानक वखाणे गुर बचन जाने जा को राम पतार तां कै अनद घना आओ सखी संत पास सेवा लागी है पीसों चरण पखार आप त्यागी है ताजे आप मिटे संताप आप नह जनाई है शरण गिही जय मान लीजै करे सो सुख पाई है।

पास सेवा लागी है। जाके मस्तक भाग से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया। साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन लागिया।

कर जोड़। हर हर नाम देहो, हर नाम मांगो चरण लागो, मान त्यागो तुम दया, कतहु ना तामु शरण पावो, करना मैं प्रभ कर्मया, समर्थ अगत अपार निर्मल।

कीच सठ कठोर को लहीन व्यापत मोह कीच मल धर्म कर्म अहं ममता मरण चीत न आवे बनता बनोद आनंद माया अज्ञान ताल पटावे खिसै जोबन बदै जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत नानक।

आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान ता की शरण गही निरपव भये प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुत मीत सुरजन इष्ट बंधप जानिया गह कंठ लाया गुरम लाया जस बिमल संत बखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही प्रभ एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप भये राम नाम उरहार बिख के दिवस गए गत परम मोह बेकार बिनसे जोन आवन सब रही अग्न सागर भये शीतल साधे अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समृत बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याहे पूर्ण साध संग पाई परम गति जह देखो तह संग एको रव रहिया घट घट वासी आप विरलै किने लहिया जल थल महियल पूर पूरन कीट हस्त सुमानिया आदि अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निद जन कहिया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहिया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कल मल पाप तरे दुख भूख दरिद्र नाठे प्रगट मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल संभूहा सब तरे दिन सरैन आनंद अनदिन सिमरंत नानक हर हरे आसा महला पंजवा शंत कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत संत पिन्नी रैनड़ी है चाम कन तारी जाग है संत जना मेरे राम प्यारे सदा जाग है नाम सिमर है अन दिनो चरण कमल ध्यान हिरदय प्रभ बिसर नाही एक खिनो तज मान मोह बिकार मन का कलमला दुख जारी बिनवंत नानक सदा जाग है हर दास संत प्यारी मेरी सेजड़ी है आडंबर बनिया मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया प्रभ मिले स्वामी सुख हगामी चाव मंगल रस परे अंग संग लागे दुख भागे प्राण मन तन सब हरे मन इच पाई प्रभ ते आई संजोग साहा शुभ गणिया बिनवंत नानक मिले श्री तार सगल आनंद रस बनिया मिल सखिया पुछ है कहो कंत नीचाणी रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी गुण गूढ़ गुप्त अपार करते निगम अंत ना पावहे भगत पाए ते आए स्वामी सदा हर गुण गावहे सगल गुण सुगयान पूरन अपने प्रभ पाणी बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज समाणी सुख सोहिलड़े हर गावन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन भागे सुख सहज सरसे हर नाम रहस्ते प्रभ आप कृपा धारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवस आए सहज पाए सगल निद प्रभ पागे बिनवंत नानक शरण स्वामी सदा हर जन तागे आसा महला पंजवा उठ वंज वटाउड़िया तैं क्या चिर लाया मोहलत पुन्नड़िया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तो माया करह पाप अमित्या
तन पसम टेरी जम है हेरी, काल बपड़ै जितया माल जोबन छोड़ वैसी, रहे ओ पैनन खाया नानक कमाना संग जुलिया, नह जाए किरत कमाया हाथ हो मिर्ग जिवें, पेख रहन चंद्रायन सुख हो दुख भये, नित पाप कमायन पापा कमाने छड़ह नाही, लै चले कत गलावया हर चंदौरी देख मूठा, कूड़ सेजा रावया लब लोभ अहंकार माता, गर्भ भया समायन नानक मृग अज्ञान बिनसे, नह मिटै आवन जायन मिठै मख मुआ, क्यों लए उडारी हस्ती गर्त पया, क्यों तरियै तारी तरण देह ला पया, खिन मह खसम चेतना आयो।

पन्नड़ा प्रभ संग सोहंती संगे सोहंती कंत स्वामी दिन सरैनी रावी सास सास चतार जीवा प्रभ पेख हर गुण गावी है बिरहा लज्जाया दर्श पाया अम्यों दृष्ट सचंती बिनवंत नानक मेरी इच पुनी मिले जिस खोजंती नस मंजो हो किल विखो हो करता घर आया दूत है दहन भया गोविंद प्रगटाया।

धर्म करे दूत भय पलायन। धर्म धीरज सहज सुखिए साध संगत हर भजे कर अनुग्रह राख लीने मोह ममता सब तजे गह कंठ लाए गुरमलाए गोविंद जपत अगायण विनवंत नानक सिमर स्वामी सगले आस पुजायण निध सिद चरण गहे तां केहा काड़ा सब किस वस जिसै सो प्रभु असाड़ा गह पुजा लीने नाम दीने करतार मस्तक राखिया संसार सागर नह व्यापै हम्यों हर रस चाखिया साध संगे नाम रंगे

ना जाइए। आठ पहर हर नाम सिमरहो चले तेरे साथी, भज साध संगत सदा नानक मिट हैं दुख कमाते। वलवंच कर उदर भर हैं मूर्ख गावारा, सब किश दे रहया हर देवन हारा। दातार सदा दयाल स्वामी काए मनु विसारी है, मिल साध संगे भजन संगे कुल समूहा तारी है। सिद्ध साधक देव मुन जन भगत नाम आधारा, बिनवंत नानक सदा भजिय प्रभ एक करने हारा। खोट ना कीचई प्रभ परखण हारा, कूड़ कपट कमाम दड़े जनमह संसारा। संसार सागर तिन्नी तरिया जिन्नी एक त्याया, ताज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ सरनाई आया। जल थल महील रविया स्वामी ऊच अगम अपारा, बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल अधारा। एक हर चंदौरड़ी अस्थर किश नाही, माया रंग जेते से संग ना जाही। हर संग साथी सदा तेरे दिनस रहन संभाली है, हर एक बिन काश अवर नाही। भाओ दुतिया जाली है मीत जोबन माल सरबस, प्रभ एक कर मन माही। बिनवंत नानक वड

बाद कमला भ्रम पीत कमला भ्रम पीत हे तीखण मद विपरीत हे अवध अकारथ जात गहबर बन कोर गहबर बन कोर हे ग्रह मूसत मन चोर हे दिन करो अन दिन खात जात बेहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ नह गते कुल रूप धूप ज्ञान हीनी तुझ बिना मोहे कमन मात कर जोड़ नानक सरण आयो प्रिय नाथ नरहर करो।

मिल बैरागी हिन रहन प्रिग तन तिस बिना पलका न लागे प्रिय प्रेम पागे चितवंत अन दिन प्रभ

नानक मगन होत अलियल गुंजात अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास हे घन बूंद विचित्र मन आस हे अन पीवत बिन सतताप तापा बनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत घना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कमन रसना गुण पना गह पुजा ले वो नाम देव हो दृष्ट धारत मिटत पाप नानक जम पै पतत पावन हर दर्श पे

करत न लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़ है हजार एते चानन होंदिया गुरबेन कोर अंधार महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मान्या।

रते से जन गए हार गए से ठगण वालिया लिख नावे धर्म बहालिया। सलोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लग है पराणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेख वडान रहया विस्माद। नानक बुझण पूरै भाग महला पहला कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत पौ सुख सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत

प्यारे कुदरत जाति जिन सी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्मै अंदर वेखै वरतै ताको ताक पौड़ी आपी न भोग भोग कै होए भसमड़ भौर सदाया वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल कत चलाया अगे करनी कीरत वाची है बहलेखा कर समझाया।

बहुते जन्म परमिया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जे वड़दाता को नहीं सब सुनियो हो लोक सबाया सतगुर मिलया सच पाया जिनी विचो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सलोक महला पहला कड़िया सबे गोपिया पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सर्ब जंजाल नानक मुस्तै ज्ञान विहूनी खाए गया जमकाल महला पहला वायन केले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ उड़ रावा झाट पाए।

सगल जहान सेवक सेव है कर्म चढ़ाओ पिन्नी रहन जिन्ना मन चाओ सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वारोले बहुत अनंत लाटू मादानिया अनगाह पंखी पौंदियां लैन ना साह सूए चाड़ पवाई है जंत नानक पौंदियां गणत ना अंत बंधन बंद पवाए सोए पय किरत नचै सब कोई।

मन भाऊ पौड़ी ना तेरा निरंकार है ना ही लय नरक ना जाई है जियो पिंड सब तिसदा देखा जय आख गवाई है जे लोड़ है चंगा अपना कर पुन्नो नीच सदाई है जे जरवाना पर हर है जर वेस करें दी आई है को रह ना परिये पाईये सलोक महला पहला मुसलमाना सिफत सरयत।

लावह अर्चा पूजा अगर वास बहकार। जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार। सूखम मूर्त नाम निरंजन।

पौड़ी। बिन सतगुर किनै ना पायो, बिन सतगुर किनै ना पाया। सतगुर विच आप रखियोन, कर प्रगट आख सुनाया।

हित संयम दुख जाहे पौड़ी, सेव कीती संतोखे जिनी सचो सच ते आया, होनी मंदै पैर ना रखियो कर सो किरत धर्म कमाया, होनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया, तू बख्शी सी अगला

जिन सचो सच वरताया, जिस तू देहे तिस मिलै सच, ता तिन्नी सच कमाया, सतगुर मिलिया सच पाया, जिन कै हिरदै

कप्पड़ कूड़ रूप अपार, कूड़ मिया कूड़ बीबी खाप होए खार, कूड़ कूड़ ने हो लगा विसरिया करतार, किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलन हार, कूड़ मिठा कूड़ माखियों

निर्मल उत्तर तन करे हच्छा तूय सच ता पर जानिए जा सच धरे प्यार नाउ सुन मन रहसिए ता पाए मोख द्वार।

पूछ के बह रह करी निवास, सच सबना हुए दारू पाप कड्डे तोए। नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले हुए पौड़ी, दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाई है, कूड़ा लाल च छड़ी है, होए एक मन अलख ते आई है, फल तेवे हो पाई है, जे वे ही कार कमाई है, जे होवे पूर्व लिखिया ता धूड़ तिना दी पाई है, मत थोड़ी सेव गवाई है। सलोक महला पहला, सच काल कूड़ वरतिया, कल कालक बेताल, बियो बीज पत लै गए, अब क्यों उगवे दाल। जे एक होए ता उगवे, रुती हूं रुत होए, नानक पाहे बाहरा पूरे रंग ना सोए। भै विच खुंब चढ़ाई है, शर्म पाह तन होए, नानक।

पाहे परे मरदार। ज्ञानी नचह बाजे वावह रूप करह सिंगार। ऊचे कूकह वादा गावह जोदा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत

होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाउ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहया महला दूजा जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं

खंतर पाहे जुज मह जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी ले आया मिंद्रा बन मह रंग किया कल मह वेद अथर बन हुआ नाउ खदाई अल्लुह भया।

वारिया, जित मिलिया खसम संभालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, हिनी नेत्री जगत निहालिया, खसम छोड़ दूजे लगे डुबे से बन जा रिया, सत गुरु है बोहे था विरले किने विचारिया, कर किरपा पार उतारिया, सलोक महला पहला, सिमल रुख सरायरा, अत दीर्घ अत मोच, हुए जे आव है आस कर जाहे नरासे केत, फल फिके फुल बक बके कामना आवे है पत, मिठत नीवी नानका गुण चंगे आईया तत, सब को निवे आप को हर को निवे ना कोई, तर तारा जू तोली है निवे सो गौरा होए, अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गा है, शीस नवाया क्या थी है जा।

कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने हुए प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे भावे सो करे मनहु चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगाह पैंदा जाए सी श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण कौ कर लाभ गोबर तरण ना जाई धोती टिक्का तै जप माली धान मलेच्छा खाई अंतर पूजा पढ़ कतेबा संजम तुरका भाई।

ताग तिन कर ब्राह्मण पूरह नाद उना ते आवह ओई साध कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करह आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेर धोती खाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर होवह परवान मलेश पान ले पूजह पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देके चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन्न असाडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याईए सोच होवे ता सच पाईए पौड़ी चिते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वडियाईया आपे ही कर्म कराएंदा वड्डो हो वड्डा वड मेदनी सिरे सिर धंदे लाएंदा नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काहू कराएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा सलोक महला पहला जे मुहाका कर मोह कर मोहे।

नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पा सारिया चीज करन मन भाव दे हर गुजन नाही हारिया कर फुरमाए सिखाया वेख महलत मरन वसारिया।

काज ना कोई, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई। सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवै रसोई, नानक सूतक एव ना उतर है ज्ञान उतारे तोय। महला पहला, मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना पर त्रिय पर धन रूप, कन्नी सूतक कन पै लायत बारी खाहे। नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे। महला पहला, सभो सूतक भरम है,

पया तेता जित मुख नाम ना ऊच रह बिन नामे रस खाए नानक एवं जानिए तित मुख थुका पाहे महला पहला पांड जमीए पांड निमीए पांड मंगन वे आह पंडो हो ऐ दोस्ती पंडो हो चले राह पांड मोआ पांड पाली है पांड हो ऐ बंदान सो क्यों मंदा आखी है जित जम है राजान पंडो ही पांड उपजे पंडे बाज ना कोई नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोई जित मुख सदा सलाही है भागा रती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सब को आखे अपना जिस नाही सो चुन कड़ी है कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडी है जा रहना नाही ऐस जग ता कायत गार बहंडी है।

तै धारी है, देख कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है। जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है। जिसके जी प्राण है, क्यों साहिब मनु विसारी है। अपना हथी अपना, आपे ही काज सवारी है। सलोक महला दूजा, एह कने ही आशकी। दूजे लगे जाए, नानक आशक कांडी है। सद ही रह समाए, चंगा चंगा कर मन्ने। मंदे मंदा होए, आशक इहो ना आखी है। जे लेखे वरतै सोए महला दूजा। सलाम जवाब दो है।

सुख पाई है, सो साहिब सदा संभाली है, जित कीता पाई है अपना, सा काल बुरी क्यों काली है, मंदा मूल ना कीचे ही, दे लम्मी नजर निहाली है, ज्यों साहिब नाल ना हारी है, ते वेहा पासा ढाली है, किश लाहे उपर काली है। सलोक महला दूजा, चाकर लगे चाकरी, नाले गार बवाद, गल्ला करे कनेरिया, खसम ना पाए साध, आप गवाए से।

मंग अमृत वेखो एहो न्याओ महला दूजा नाल इयाने दूसती कदे न आवै रास जिहा जाने ते हो वरतै वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्त समावै दूजी होवै पास साहिब सेती हुक्म ना चलै कही बने अरदास कूड़ कमाणे कूड़ो होवै नानक सिफत विगास महला दूजा नाल इयाने दोस्ती।

जो पाई है नानक सा करमात साहिब तुठ है जो मिले महला दूजा एक ने ही चाकरी जित भौ खसम ना जाए नानक सेवक काढ़ी है जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक अंत न जापनी हर ता के पारावार आप कराए साखती फिर आप कराए मार इक ना गली जंजीरियां इक तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हौ कैस्यो करी पकार नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार सलोक महला पहला आपे पांडे साजियन आपे पूरन दे इकनी दुध समाई है इक चुल्ला रहन चढ़े इक निहाली पै सवन इक उपर रहन खड़े।

आप जिस विच जंत उपाई कै दिखै थाप उथाप किसनो कहिए नानका सब।

जियो गुरचरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कमन काज जग उपजै बिनसै कहो मोहे समझाया देव करो दया मोहे मार्ग लाभ हो।

इन भेद अपियो ना चूके कही ना उपज उपजी जाने भाव अभाव बिहूना उदय अस्त की मन बुद्ध नासी तो सदा सहज लिव लीना ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा तो मन सुन समाना आसा गज साडे तै तै धूतिया तेरे पाइन तग गली जिन्ना जप मालिया लोटे हाथ निबग वे हर के संत।

मुखों अपरस कहावे है, सदा सदा फिर है अभमानी, सगल कुटंब डुबावे है, जितको लाया तित ही लागा, तैसे कर्म कमावे, कहो कबीर जिस सतगुर भेटै, पुनरप जन्म न आवे आसा।

तेरा मन पाया, हम पूत तेरा तू बाप मेरा, एक ठाहर दोहां बसेरा, कहो कबीर जन एको बूझिया, गुर प्रसाद मैं सब किस सूझिया, आसा इकत पत्र पर उरकट कुरकट, इकत पत्र पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी, नकटी कोठन गन बाडाडू, किन्ह बबेकी काटी तू रहाउ, सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलियां की हो।

आव आगम निर्गम ज्योतिक जान है बहु बहु व्याकरण तंत मंत्र सब औखद जान है अंत तऊ मरना राजभोग अर सतर संघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तऊ मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे कहू न उबरना कहो कबीर इं राम जंपो मेत जन्म मरना आसा फीलर बाबी बल्द पखावज कौआ ताल बजावे पहर चोलना।

शंख बजावे, वंश को पूत ब्याहन चलिया, सोइने मंडप छाए, रूप कन्या सुंदर बेदी, ससै सिंह गुन गाए।

आसा बटुआ एक बहतर आधारी एको जिसह द्वारा नवे खंड की पृथ्वी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौनिध पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाओ खिंथा ज्ञान ध्यान कर सोई शब्द तागा मथ काले पंच तत् की कर मिर्गानी गुर कै मार्ग चाले दया पहुरी काया कर तुई दृष्ट की अग्न जलावे।

पढ़त गुनत ऐसे सब मारे, किन्हों खबर ना जानी रहाओ। सकत सुनेहो कर सुन्नत करिय, मैं न बदौगा पाई। जौरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए। हरद शरीर ही नार ना छोड़े, ता ते हिंदू ही रही है। शाड़ कतेब राम भज बौरे, जुल्म करत है पारी। कबीर पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचेहारी। हासा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूजे सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई। रे बौरे तुहे करी ना राख कोई, तू राम नाम जप सोई रहाओ। कां की मात पिता कहो कां को, कमन पुरख की जोई। ठट फूटे को बात ना पूछे, काढ़ो होई। देहरी बैठी माता रोए, खटिया ले गए पाई। लट छिटकाए तिरिया रोए, हंस अकेला जाई। कहत कबीर सुनो रे संतो, तै सागर कह ताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जम नहीं हटे गुसाई। दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा श्री कबीर जीओ के चौपदे एक तुके। सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया। हर का बलोव ना बलोव हो मेरे भाई, सहज बलोव हो जैसे तत ना जाई रहाओ। तन कर मटकी मन माहे बलोई, इस मटकी मह शब्द संजोई।

तपै सूता बुझ गई अगन नानक से ओ धुआ रव रहया एक अवर नहीं दुआ रहाउ टूटी तंत ना बजै रवाब भूल बिगारे अपना काज कथनी बदनी कैन कहावन समझ परी तो बिसरे ओ गावन कहत कबीर पंच जो चूरे इनते नाहे परम पद दूरे आसा सोते अपर

खंडस अवगन मेरा रहाउ। जे अत क्रोप करे कर ताया तां पी चीत ना राखस माया चिंत भवन।

सनडारी फूल शंकर देव तीन देव प्रताख तो रह करह किसकी सेव पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाओ जे एह मूर्त साची है तो गढ़न हारे खाओ पात पहत अरलापसी कर करा का सार भोगन हारे भोगया इस मूर्त के मुख शार मालिन भूली जग भुलाना हम।

काल पन बीते, 20 वर्ष कस तप ना कियो, 30 वर्ष कस देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, शायर सोख भुजंग बलियो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत है ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बह, जिहवा बचन शुद्ध नहीं निकसै, तबरे धर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिवलावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर धन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो, कहत कबीर सुनो रे संत हो, अन तन कछुए लै ना गयो, आई तलब गोपाल।

सोकृत कर कर लीजै रे मन रहाउ, कुमारै एक जो माटी गूंदी बहु विद्वानी लाई, काहू मह मोती मुक्ताहल काहू ब्याद लगाई, सुमह धन राखण को दिया मुगद कह धन मेरा, जमका दंड मूंड मह लागे किन मह करै निवेरा, हर जन उत्तम भगत सदावे आग्या मन सुख पाई, जो तिस भावै सत

कर फीकी। आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्त सरीकी। माटी एक पेख तर नाना ता मैं ब्रह्म पछाना। कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक स्यों मन माना। आसा गगन नगर एक

चरण रहे कर धरक परे हैं, मुखो नानक सह बाता थाके पंच दूत सब तस्कर, आप अपने भ्रमते थाका मन कुंचर उर थाका, तेज सूत धर रमते मृतक भये दसै बंद छूटे, मित्र भाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावै, जीवत बंधन तोरे आसा इक तुके चार, सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया, मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी, जिन त्रे भवन दसियले गुर प्रसाद दीठी रहाओ, सरपनी सरपनी क्या कहो भाई, जिन साच पछाने

राय, कह डिसियर को दूध पियाए। सात संगत मिल बबेक बुद्ध हुई, पारस परस लोहा कंचन सोई। साकत सुवान सब करे कराया, जो तुर लिखिया।

हे रावण कर खबर ना पाई, क्या मांगू किस थिर ना रहाई, देखत नैन चल्यो जग जाई रहाउ, एक लख पूत सवा लख नाती, तेहे रावण कर दिया ना बाती, चंद सूरज जाके तपत रसोई, बैसंतर जाके कपड़े धोई, गुरमत राम

राम रमत तिस सब किश सूजे, बाईस चौपदे तथा पंच पदे, आसा श्री कबीर जीओ के तिप दे आठ, दो तुके सत, एक तुका एक, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, बिंद तेजन पिंड किया, अगन कुंड रहाया, दस मास माता उदर राखिया, बहुर लागी माया, प्राणी काहे को लोभ लागे, रतन जन्म खोया, पूरब जन्म कर्म भूम, बीज नाही बोया रहाओ, बारक ते बिरद भया, होना सो होया, जां जम आए चोट पकड़ै, तब है काहे रोया, जीव न की आस करह, जम निहा

आओ नाभ कमल मह बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो दूलोह पायो आसवड भाग हमारा सुर नर मुन जन कौतक आए कोट ते तीस उजाना कह कबीर मोहे ब्याहे चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरो रे सखी सहेली नंद गहेली देवर का बिरह जरों रे।

राई माया सद मतवारी बड़े भाई कह जब संग होती तब हो नाह प्यारी कहत कबीर पंच को झगरा झगरत जन्म गवाया झूठी माया सब जग बांदिया मैं राम रमत सुख पाया।

गायत्री गोविंद हृदय हमारे मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण हृदय बस है गोविंदा जम द्वार जब पूछस बबरे तब

खसम हमारे तू बामन मैं कांसी के जुलहा बुझो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे भूपत राजे हर सौ मोहर त्याना आसा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समान साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निदान बाबा माया मोह हित कीन जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाओ नैन देख पतंग उर्जे पासना देख आग काल पासना मुग्ध चेत कनक कामन लाग कर विचार विकार परहर तरन तारन सोए कह कबीर जग जीवन ऐसा दुतिया नाही कोय आसा जो मैं रूप किए बहु तेरे अब खुन रूप न होई तागा तंत साज सब ठाका राम नाम बस होई अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदरिया ना बजावे रहाओ काम क्रोध माया ले जारी तृष्णा गागर फूटी काम चोलना भया है पुराना गया परम सब छूटी।

मैं तेरा सोच विचार ना देखै खबर ना करै दीन के बौरे तां ते जन्म अलेखै रहाउ साचक ते बखाने अल्लाह नार पुरख नहीं कोई पड़े गुने नाही कछ बौरे ज्यो दिल मह खबर ना होई अल्लाह गैब सगल घट पीत।

तेरो पेर हौ हर की बहुरिया, राम बड़े मैं तनक लहरिया रहाओ। धन पेर एकै संग बसेरा, सेज एक पै मिलन दुहेरा। धन सुहागन जो पी पावै, कह कबीर फिर जन्म ना आवै। आसा श्री कबीर जीओ के दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हीरे हीरा बेद पवन मन, सहजे रहे आसमाई। सगल जोत इन हीरे बेदी, सतगुर बचनी मैं पाई। हर की कथा अनाहद बानी, हंस होए हीरा ले पछानी रहाओ। कह कबीर हीरा अस देखियो, जग मह रहा समाई। गुप्त हीरा प्रगट भयो, जब गुरगम दिया दिखाई। आसा पहली क्रूप कुजात कुलखनी, सोहरे पेये बुरी। अब की स्वरूप सुजान सुलखनी, सहजे उदर धरी। भली सरी मुई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवो मेरी अब की धरी रहाओ। कहो कबीर जब लोहरी आई, बड़ी का सुहाग टरियो। लोहरी संग पई अब मेरे, जेठी और धरियो। आसा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ, ले राखियो राम जनिया नाओ। इन मुंडियन मेरा घर तुंदरावा, बिटवह राम।

रहु रहुरी बहुरिया कुंगट जिन काढ़े अंत की बार लहगी न आढ़े रहाउ। कुंगट काट गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे। कुंगट काढ़े की यह बड़ाई दिन दस पांच बहु भले आई। कुंगट तेरो तो पर साचे हर गुण गाए कूद।

जाना सब जागे अनतनायो ताना रहाओ। जब तुम सुन ले वेद पुराना तब हम इतनक पसरे उताना। तरन आकाश की कर गह बनाई चंद सूरज दोए साथ चलाई। पाई जोर बात एक कीनी तह तांती मन माना। जो लाहे घर अपना चीना घट ही राम पछाना।

जे तीर्थ लावे तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कछु ना होवे, ना ही राम अयाना, पूजो राम।

ऐसे ओए नर फिर जोनी आवह मनहु कठोर मरे बनारस नरक ना बांचिया जाई। हर का संत मरे हाड़म्भ है ता सगली सैन तराई दिन सना रैन वेद नहीं शास्त्र।

एक मन सत सहंस जैसे ऊत पूत प्रब सोई रहाउ जल तरंग हर फेन बुद बदा जल ते भिन्न न होई एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचर ध्यान न होई मिथ्या भरम हर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकिरत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मानिया कहत नाम देओ हर की रचना देखो हृदय बिचारी घट घट अंतर सर्ब निरंतर केवल एक मरारी हासा आनी ले कुंभ पराई ले उदक ठाकुर को स्नान करूं बयालीस लाख जी जल मह होते बीठल पहला काहे करूं जतर जाऊं तत बीठल पहला महा आनंद करे सदके ला रहाओ आनी ले फूल परोई ले माला ठाकुर की हम पूज करूं पहले बास लई है पवर है बीठल पहला काहे करूं आनी ले दूध रिदाई ले खीरं ठाकुर को नैवेद करूं पहले दूध बटारियो बछरे बीठल पहला काहे करूं ईबै बीठल ऊबै बीठल बीठल बिन संसार नहीं थान तनंतर नामा प्रणवे पूर रहे हो तू सर्वमही आसा मन मेरो गाज जेहबा मेरी काती माप माप काटो जम की फासी कहां करूं जाती कहां करूं पाती।

खसमत्याव सोयने की सुई रुपे का तागा नामे का चित हर स्यों लागा आसा साप कुंच छोड़ भिख नहीं छाड़ उदक माहे जैसे बाग ध्यान मांडे काहे को की जय ध्यान जपन्ना जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ सिंगच भोजन जो नर

गुरु उपदेश पहला संत है कह प्रसाद नामा हर भेटला आसा वाणी श्री रविदास जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दुख बनास पंच दुख असाध जाम है तां की केत के आस माधो अविद्या हित कीन दुबेक दीप मलीन रहाव त्रिगद जोन अचेत संभव पुन पाप असोच मानुखा अवतार दुलभ तिही संगत पोच जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए काल पास अबद लागे कशना चले उपाय रविदास दास उदास तज ब्रह्म तपन तप गुर ज्ञान भगत जन भय हरन परमानंद करो निदान आसा संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान।

आओ संत आचरण संत चो मार्ग संत च ओलग ओलगणी और एक मांगो भगत चिंतावन जनी लखाव हो संत पापी सन रविदास भणे जो जाने सो जान संत अनंत है अंतर नाही आसा तुम चंदन हम एरंड बापरे संगत मारे बासा नीच रूख ते ऊच भये हैं गंध सुगंध निवासा माधो सत संगत सरन तुम्हारी हम योगन तुम उपकारी रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपियल हम बपरे जस कीरा सत संगत मिल रही है माधो जैसे मदप मखीरा जाती ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा।

जो तन भयो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन तुझे चरण अरबिंद भवन मन पान करत पायो पायो रा मैया तन रहाओ संपत बिपत पटल माया तन ता मह मगन होत ना तेरो जन प्रेम की जेवरी बांधे ओ तेरो जन कह रविदास छूटे बो कवन गुन आसा हर हर हर हर हर हर हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर निमत नाम देव दूध पे आया तौ जग जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम रंग राता इयों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता माटी को पुत्रा कैसे नचत है देखे देखे सुने बोले दौर्यो फिरत है रहाऊ जब कछ पावे तब गर्भ करत है माया गई तब रोवन लगत है मन बच क्रम रस कसै लुभाना

सतगुरु प्रसाद, भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलानी, तन मन धन नहीं धीरे, लालच बिख काम लुभ धराता, मन बिसरे प्रभ हीरे रहाउ, बिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार ना जानिया, गुण ते प्रीत बड़ी अनभांति, जन्म मरण फिर तानिया, जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, बिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे, ज्ञान प्रवेश गुरह धन दिया, ध्यान मान मन एक मय, प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्त अगाने मुक्त भये, जोत समाए समानी जाके, अशली प्रभ पहचानिया, धने धन पाया धरनी तर, मिल जन संत समानिया, महला पंजवा, गोविंद गोविंद गोविंद।

ते भोए भारथिए रहाओ, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन धन जड़ेंदी माओ आए सफल से, परवदगार अपार अगम बेअंत तू, जिन्ना पछाता सच चुम्मा पैर मु, तेरी पनह खुदाए तू बख्शंदगी, सेख फरीद खैर दीजै बंदगी, आसा बोलै सेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, एहो तन हो सी खाक निमाणी गोर करे, आज मलावा सेख फरीद ताकम कुंजड़ियां, मनहूम चिंदड़ियां रहाओ, जे जाना मर जाइए घूमना आइए, झूठी दुनिया लग ना आप वंजाइए।

आधार जा की भगत करह जन पूरे मुन जन सेव है गुर विचार रहाव राव सस दीपक जाके त्रे भवन एका ज्योत मरार गुरमुख होए सो अहनस निर्मल मनमुख रहन अंधार सिद्ध समाद करह नित झगड़ा दोह लोचन क्या हेरै अंतर ज्योत शब्द धुन जागै सतगुर झगर नबेरै सुर नर नाथ बेअंत अजोनी साचे महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करहु निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला।

आओ गोविंद प्रीत सिंह एक सहज उपजिया वेख जैसी भगत बनी आप सेती आप खाया ता मन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समई बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाईए जे लोचै सब कोई कूड़ै की पाल विचों निकलै ता सदा सुख होए नानक ऐसे सतगुर की क्या ओह सेवक सेवा करे गुर आगै जियो तरे सतगुर का पाणा चित करे सतगुर आपे कृपा करे गुजरी महला तीजा हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोई जी हर की सेवा ते मनो चिंदिया फल पाई है दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी।

आओ। हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप, हर मेरा भाई, हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है।

गुरु अपने सद बलिहार जाऊं, सतगुर मिले हर मन वसे सहजी रहे समाई रहाउ, जा पहु पाए अपना बैराग उपजे मन आई, बैरागे ते हर पाईए हर स्यों रह समाई, से मुकत जे मन जिन है फिर तात ना लागे आई, दसवें द्वार रहत करी त्रिभवन सूजी पाई, नानक गुर ते गुर होया

आए जिस नर की दुबदा ना जाए धर्म राए तिस देश जाए कर्म होवे सोई जन पाए गुरमुख बूझे कोई नानक विचों हउमै मारे ता हर भेटै सोई गुजरी महला तीजा जिस जन शांत सदा मत निश्चल जिसका अभमान गवाए सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझे हर चरणी चित लाए हर चेत अचेत मना जो इच्छा है सो फल होई गुर प्रसादी हर रस पाव है पीवत रह सदा सुख होई रहाओ सतगुर भेटे ता पारस होए पारस होए ता पूज कराए जो उस पूजे सो फल पाए दीखिया देवे साच बुझाए बिन पारस पूज ना हो गई बिन मन परचे अवरा समझाए गुरु सदाए अज्ञानी अंधा किस ओहो मार्ग पाए नानक बिन नदरी किछु ना पाई है जिस नदर करे सो पाए गुर प्रसादी दे वडियाई अपना शब्द वरताए गुजरी महला तीजा पंच पदे ना कांसी मत उपजे ना कांसी मत जाए सतगुर मिले मत उपजे।

फिर रहे ता परम विचों जाय रहाउ हर चरण हृदय वसाई तू किल विख हो वह नास पंच भू आत्मा वस करह ता तीर्थ करह निवास मनमुख एहो मन मुग्ध है सोजी किशु ना पाए हर का नाम ना बुझई अंत गया पछताए एहो मन कांसी सब तीर्थ सिमरत सतगुर दिया बुझाए हथ सठ तीर्थ तिस संग रह जिन हर हिरदय रहे आसमाए नानक सतगुर मिले हुक्म बुझिया एक वस्या मन आए जो तुद भावे सब सच है सच्चे रह समाए गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडित सुन सिख सच सोई दूजे भाए जेता पढ़ पढ़त गुणत सदा दुख होई हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सोजी होई हर रस रसना चाख तू ता मन निर्मल होई रहाओ सतगुर मिले मन संतोखी है ता फिर तिछना भूख ना होए नाम निधान पाया पर कर जाए ना कोई कथनी बदनी जे करे मनमुख।

जो आप ना पछाने सच ना धरे प्यार सच्चे जगत दहकाया कहना कछु ना जाए नानक जो तिस पावे सो करे ज्यों तिस की रजाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गुजरी महला चौथा चौपदे घर पहला हर के जन सतगुर सतपुरखा।

एव मोकौ राम नाम परजास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाऊ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आई त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम परगास गुजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सत संगत शब्द मन मोह है जप गोविंद गोविंद त्याई है सब को दान दे प्रभ को है मेरे भाई जना मोको गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है रहाऊ सुख साध

आगीन मत फीके नाम सुनत आवे मन रोहे कौआ काग कौ अमृत रस पाई तृप्त विष्टा खाए मुख गो है अमृत सर सतगुर सतवादी जितना तै कौआ हंस हो है नानक धन तन वड्डे वड भागी जिन गुरमत नाम हृदय मल तू है गुजरी महला चौथा हर जानी उत्तम उत्तम बाणी मुख बोलह पारे उपकारी जो जन सुने सरदा भगत सेती।

मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुर सरनाई, मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नावे त्रिग त्रिग बिरथा जाई, नाम बिना रस कस दुख खावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई, जो जन हर प्रभ हर हर

मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाव। धीरज धर्म गुरमत हर पाया, नित हर नामे हर सिउ चित लावे। अमृत बचन सतगुर की बाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावे। निर्मल नाम जित मैल न लागे, गुरमत नाम जपै लिव लावे। नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया, ते भागहीन मोए मर जावे। आनंद मूल जग जीवन दाता, सब जन को आनंद करहो हर त्यावे। तू दाता जी सब तेरे, जन नानक गुरमुख बख्श मलावे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुजरी महला चौथा घर तीजा। माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना कौ संबंध हर कर दिए। हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर, हर का तन मन सब हर के वस है। शरीर रहाओ भगत जना कौ श्रद्धा आप हर लाई, विचे ग्रिस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यों बने आई, तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभ पाई। जित कारे कम हम हर लाई, सो हम करहें जो आप कराई। जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई, ते जन नानक राम नाम लिव लाई। गुजरी महला पंजवा चौपदे घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवह उद्दम, जा आहार हर जियो परया। सैल पत्थर मह जनते उपाय, ता कारजक आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले से तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई ना किसकी तरिया। सिर सिर रिजक

शरिया उन कवन खलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया गुजरी महला पंजवा चौपदी घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरिया चार करह खट करमा पितराती संसारी अंतर मैल न उतरे हुमे बिन गुरबाजी हारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाव सास्त वेद सिमरत सब सोदे।

अठसठ मज्जन कर इचनाना भ्रम आए धर सारी अनक सोच करह दिन राती बिन सतगुर अंधियारी धावत धावत सब जग धायो अब आए हर द्वारी दुर्मत मेट बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी गुजरी महला पंजवा हर तन जाप हर तन ताप हर तन भोजन पाया निमख न बिसरो मन ते हर हर साध संगत मह पाया माई खाते आयो घर पूता हर तन चलते हर तन बैसे हर तन जागत सूता रहाओ हर तन इशनान हर तन ज्ञान हर संग लाए ध्याना हर तन तुलहा हर तन बेड़ी हर हर तार पुराना हर तन मेरी चिंत वसारी हर तन लाहया धूखा हर तन ते मैं नव निद पाई हाथ चरियो हर थूका खाव हो खर्च हो टूट ना आवे हलत पलत कै संगे लाद खजाना गुरु नानक को दिया एहो मन हर रंग रंगी गुजरी महला पंजवा जिस सिमरत सब किल विखनास है पितरी होए उदारू सो हर हर तुम सद ही जाप हो जा का अंत न पारू पूता माता की आसीस निमख न बिसरो तुम कहो हर हर सदा भजो हो।

कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत अमृत पीवहो सदा चिर जीवहो हर सिमरत आनंद अनंता रंग तमाशा पूर्ण आसा कभै न व्यापै चिंता पवर तुम्हारा इहो मन होवो हर चरना हो कौला नानक दास उन संग।

काटी काम क्रोध माया बिख ममता ए व्याध ते हाटी हर जस साध संग मिल गायु गुर प्रसाद पयु मन निर्मल सर्व सुखा सुख पायु रहाउ जो किछ कियो सोई भल मानै ऐसी भगत कमानी मित्र सत्तर सब एक समानी जोग जुगत निशानी पूरन पूर रहो सर्ब थाई आन न कतहु जाता घट घट अंतर सर्ब निरंतर।

सो अपना दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अरादिया तिन भउ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है तित मान महत जस काटे।

साध संगत मिल छूटे रहाउ आठ पैर हर के गुण गावे भगत प्रेम रस माता हरख सोग दोह माहे नराला करने हार पछाता जिसका साथ नहीं रख लिया सगल जुगत बन आई कहो नानक प्रभ पुरख दयाला कीमत कहन ना जाई गुजरी महला पंजवा दो पदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पतत पवित्र लिए करे अपने सगल करत नमचकारु वर्ण जात को पूछे नाही बांछ चरण रवारु ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारु सगल श्रेष्ठ को तनी की जय जन को अंग नरारु रहाउ साध संग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधारु नाम देओ त्रिलोचन कबीर दासरु मुक्त पयो चमियारु गुजरी महला पंजवा है नाही को बूजन हारु जान कवन पता शिव बरंच अर सगल मोन जन गह ना सकाहे गता प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिए अवर अवर विद

आराधो प्यारू निमखना की जैती ला संत सेवा कर पावनी लाई है त्याग मान हठीला मोहन प्राण मान रंगीला बास रहे ओ ही अरे कह संगे पेख मोहयो मन लीला रहाओ जिस सिमरत मन होत अनंत।

पंजवा मन जोगी शास्त्रग कहावत सब कीने बस अपने ही तीन देव अर कोड़ तीसा तिनकी हैरत कश ना रही बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जानस को मर्मा गुर कृपा ते लही रहाउ जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही कहो नानक साधते भागी होए केरी चरण गही गुजरी महला पंजवा दुए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मटाया।

सगल निहोरा गुजरी महला पंजवा आल जाल प्रम मोहत जावे प्रभ सेती रंग लाई मन को एह उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जिस पेटे टूटह माया बंद बिसरना कबहू जाई रहाओ करत करत अनक बहु भांति।

जोत धरी त्याई अपनो सदा हरी सोच अंदेसा ताका कहां करिए जा मह एक करी रहाओ तुमरी टेक पूरे मेरे सतगुर मन सरन तुम्हारे परी अचेत अयाने बारक नानक हम तुम राखो धार करी गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माही चरण कमल रिदमाहे समाए तह भरम अंधेरा नाही ठाकुर जा सिमरा तू ताही कर कृपा सर्व प्रतपालक प्रभ को सदा सलाही रहाओ सास सास तेरा नाम सुमारो तुम ही कहो प्रभ आही नानक टेक पई करते की और आस बढ़ानी लाही गुजरी महला पंजवा कर कृपा अपना दर्श दीजै जस गावो निसे अर पूर।

चरण कमल अराध हृदय एक स्यो लिव लाओ। पार ब्रह्म प्रभ दया तारी बक्षली ने आप, सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप। गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया,

गुजरी महला पंजवा अहम बुद्ध बहु सगन माया महावीर गरोग हर नाम औखद गुरु नाम दीनो करण कारण योग मन तन बांछिए जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोविंद लोचा पूर रहाओ आद अंते माध्य आसा कूकरी बिकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमणं।

तर पुत्र कलत्तर सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख नवारी मिले हर जन संत सर्व बिद प्रमते पकार है कत है नाही छोट हर चरण सरन अपार प्रभ की दृढ़ गही नानक ओट गुजरी महला पंजवा कर चौथा दोपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राज श्री।

काम क्रोध अहंकार तदी अले लोभ मोह तिस माया मन तत अवगत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ध्यान सब दात कथी अले

जह अंतर शब्द विचार। अब तब अवर ना मांगो हर पै, नाम निरंजन दीजै प्यार। नानक चातरक अमृत जल मांगै।

इतना मध्यम हर शरणागत हर के लोग नाम रते केवल बैरागी सोग बजोग विसर्जत रोग पाई रे गुर कृपा से भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहाओ हर गुण रसन रवह प्रभ संगे जो तिस पावे सहज हरि बिन हर नाम वृथा जग जीवन हर बिन निफल मेक करी ऐ जी खोटे ठौर नाही घर बाहर निंदक गत नहीं काई रोस करे प्रभ बख्शना मेटै नित नित चढ़ै सवाई।

रविया गुरमत भ्रमण चुकाई पारस भेट कंचन धात होई सत संगत की वड्याई हर जल निर्मल मन इशनानी मज्जन सतगुर पाई पुनरप जन्म नाही जन संगत ज्योति ज्योत मलाई तू वड पुरख अगम तरोवर हम पंखी तुझ माही नानक नाम निरंजन दीजै जुग जुग शब्द सलाही गुजरी महला पहला घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगत प्रेम आराधितं सच प्यास परम हितं बिल लाप बिलल विनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सरनी संसार सागर तार तारन राम नाम कर करनी रहाओ ए मन मिर्त शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधान हर नाम मन रमन चल चित वित ब्रह्मा भ्रमं जग मोह मग्न हितं हिर नाम भगत दृढ़ मति गुरवाक शब्द रतन परमात भरम ना चूकई जग जन्म ब्याद खपं अस्थान हर निह केवलं सतमति नाम तपं एहो जग मोहेत व्यापतं दुख अधिक जन्म मरनं भज सरन सतगुर उबर है हर नाम रिद रमन गुरमत निश्चल मन मन मन सहज विचार सो मन निर्मल जित साच अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तर पव जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन एहो शरीर तौ सरणी लभ लोभ लहर निवारण हर नाम रास मन मन मार तुही निरंजना कहो नानका सरनं गुजरी महला तीजा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरत करी एहो मन नचाई गुर प्रसादी आप गवाई चित थिर राखै सो मुक्त होवै जो इच्छी सोई फल पाई नाच रे मन गुर कै आगै गुर कै भाणै नाच है ता सुख पावै अंते जम

0: सुनावे, इस मन अंधे को मार्ग पाए।
1: अन दिन नाचै सख्त निवारे,
0: शिव कर नींद न होई। शक्ति घर जगत सूता, नाचै टापै अवरोह गावे। मनमुख भगत न होई, सुर नर विरत पक करमी नाचे। मुन जन ज्ञान बिचारी, सिद्ध साधक लिव लागी नाचे। जिन गुरमुख बुद्ध बिचारी, खंड ब्रह्मांड त्रै गुण नाचे। जिन लागी हर लिव तुम्हारी, जी जंत सबे ही नाचे। नाच है खानी चारी, जो तुद भाव है से ही नाच है। जिन गुरमुख शब्द लिव लाए, से भगत से तत् ज्ञानी। जिन को हुक्म मनाए, एहा भगत सच्चे स्यों लिव लागै।

भय त्रास नाश कृपाल गुण निद सफल स्वामी सेव हर गोपाल गुरु गोविंद चरण सरण दयाल केशव तार जग भव सिंध रहाउ काम क्रोध हरन मद मोह दहन मरार मन मकरंद जन्म मरन निवार धरनी तर पत राख परमानंद जलत अनेक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिद मंत छेद अहम बुद्ध करना मैं चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान सहज समाध।

बेकार राख धर्म परम बदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड़ पंडार हर निद होत जिन्ना ना चीर खल मुग्ध मूड कटाक श्री धर पये गुण मत धीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन धार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमण परम हंस है रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक पतत उदार।

नानक हुक्म बुझ परवान होए ता फल पावे सच कतनी बदनी करता फिरे हुक्मे मूल ना बुझई अंधा कच निकच पौड़ी संजोग वजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मलाया ज्योति हूं सब चानना सतगुर शब्द सुनाया।

आई। ऐसा सतगुरु जी मिले तुठा करे पसाऊ, मुक्त द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ। महला तीजा, नानक मुक्त द्वारा

आई, सतगुर मिले हो मैं गई, जोत रही सब आई, एहो जियो सदा मुक्त है, सहजे रहे आसमाई पौड़ी, प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता, गणते प्रभु न पाई है दूजे परमीता, सतगुर मिले जीवत मरे बुझ सच समीता, शब्दे हों मैं खोई है हर मेल मिलीता।

वसियो मन आई त्रिग अवेहा जीविया क्या जुग में पाया आय माया खोटी रास है एक चसे में पाज लह जाय हथों छुड़की तन स्याहो होए बदन जाए कमलाय जिन सतगुर सियो चित लाया तिन सुख वसया मन आय हर नाम त्यावह रंग सियो हर नाम रहे लिवलाय नानक सतगुर सो।

पाए, इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू इन मल दल लाई पाए, नानक से ही उबरे जे सच रहे लिवलाए। पौड़ी ढाडी करे पुकार प्रभु सुनाए सी, अंदर धीरक होए पूरा पाए सी। जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी, जा होवै खसम दयाल ता महल घर पाए सी। सो प्रभ मेरा अत वड्डा गुरमुख मिलाए सी। सलोक महला तीजा, सबना का सहो एक है सदी रहे हजूर। नानक हुक्म ना मन्ने ता घर ही अंदर दूर। हुक्म पी तिना मनाए सी, जिनको नदर करे हुक्म मन सुख पाया। प्रेम सुहागण होए महला तीजा, रैन सबाई जल मोई कंत ना लायो भावो। नानक सुख वसन सुहागणी, जिन प्यारा पुरख हर राव। पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता उपाय कितै ना पाईऐ। हर कर्म बधाता गुर शब्दी, हर मन वसै हर सहजे जाता। अंदरों तृष्णा अग्न बुझी, हर अमृत सर नाता। वड्डी वडियाई वड्डे की, गुरमुख बोलाता।

को विरला ब्रह्म ज्ञानी जे हम मैं मेत समाए नानक किसनो मिलिया सदा सुख पाई है जे अन दिन हर नाम ते आए महला तीजा अंतर कपट मरमुख अज्ञानी रसना झूठ बोलाए कपट कीता हर पुरख ना पीजे नित वेखै सुनै सुभाए दूजै पाए जाए जग प्रबोधै।

काम क्रोध अहंकारा एह जम की सिरकार है। इना उपर जम का डंड करारा मनमुख जम मग पाईन जिन दूजा भाव प्यारा जमपुर बदे मारियन को सुने ना पुकारा जिसनों कृपा करे तिस गुर मिले।

आए गुर कै शब्द पर जाली है ता एह विचों जाए तन मन होवै उजला नाम वसै मन आए नानक माया का मारन हर नाम है गुरमुख पाया जाए महला तीजा इहो मन के तड़िया जुग भरमिया फिर रह न आवै जाए हर पाणा ता परमायन कर परपंच खेल उपाय जां हर बख्शे ता गुर मिलै अस्थिर रह समाई नानक मन ही।

पेय रस भोगी आप अतीत अलिपत है निर्योग हर जोगी जो तिस भाव है सो करे सो होगी हर गुरमुख नाम त्याई है लह जाहे वजोगी। श्लोक महला तीजा वाह वाह आप अखाएंदा गुर शब्दी सच सोए वाह वाह।

तिस जीवड अवर ना कोई। वाहु आहु अगम अथाह है, वाहु आहु सच्चा सोई। वाहु आहु विपरवाह है, वाहु आहु करी सोहोई। वाहु आहु अमृत नाम है, गुरमुख पावे कोई। वाहु आहु कर्मी पाई है, आप दया कर दी। नानक वाहु आहु गुरमुख पाई है, अन दिन नाम लई महला तीजा। बिन सतगुरु से

है जाए। नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाई पौड़ी, तिस आगे अरदास जिन उपाया, सतगुर अपना सेव सब फल पाया। अमृत हर का नाउ सदा त्याया, संत जना कै संग दुख मिटाया, नानक भय अचिंत हर धन निह चलाया। श्लोक महला तीजा, खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णय, महल भगती घर सरह सज्जन पहुण्यो, बरसना ता बरस घना बहुल बरस है काही, नानक तिन बलिहार ने जिन गुरमुख पाया मन माहि। महला तीजा।

पौड़ी प्रभ पास जन की अरदास तू सच्चा साई तू रखवाला सदा सदा हो तुद त्याई जी जंत सब तेरे आ तू रहया समाई जो दास तेरे की निंदा करे तिस मार पचाई चिंता छद चिंत रहो नानक लग पाई श्लोक महला तीजा आस्था करता जग मोआ आस्था मरे ना जाए नानक आस्था पूरिया सच्चे स्यों चित लाए महला तीजा आस्था मनसा मर जाए सी जिन कीती सो लै जाए नानक निश्चल को नहीं

पौड़ी। नित जपिया सास ग्रास नाओ परवदगार दा, जिसनो करे रहम तिस ना विसार दा, आप उपावन हार आपे ही मारदा, सब किस जाने जान बुझ विचारदा, अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा, जिसनो लाए सच तिसै उधारदा, जिस दै होवै वल सो कदे ना हारदा, सदा भग दी बाण है हौ तिस नमस्कार दा। श्लोक महला पंजवां। काम क्रोध लोभ छोड़ीऐ दीजै अगन जलाई, जीव दया नित जापीऐ नानक साचा नाओ महला पंजवां। सिमरत सिमरत प्रभ अपना।

सेती लगड़ी डोरी, नानक आनद सेती बन गाही महला पंजवा। सच्ची बैसक तिना संग, जिन संग जपिया नाउ, तिन संग संग ना कीचई, नानक जिन्ना अपना सुआउ पौड़ी। सावेला परवान जित सतगुर भेटिया, हुआ साधु संग फिर दुख ना तेटिया। पाया निश्चल थान फिर गर्भ ना लेटिया, नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया। तत ज्ञान लाए ध्यान दृष्ट समेटिया, सबो जपिया जाप जे मुखो बोलेटिया। हुक्मे भोजन हाल सुख सुखेटिया, परख खजाने पाए से बहुड़ ना खोटिया। सलोक महला पंजवा, विशोहे जंबूर हवे ना वंजन गाखड़े। जेसो धनी मलन नानक सुख संभूह, सच महला पंजवा। जिमी वसंधी पाणी है ईंदन रखे पाहे, नानक सो सहो आहे। जाके आडल हब को पौड़ी, तेरे कीते काम तुदैही गोचरे। सोई वरतै जग जे किया तुद तुरे, विषम

गाव कूट कलीचा उपजह नानक बिसरै नाव महला पंजवा नानक सतगुर भेटै पूरी होवै जुगत हसंदियां खेलंदियां पैनंदियां खवंदियां विचे होवै मुकत पौड़ी सो सतगुर धन धन जिन भरम गल तोड़िया सो सतगुर वाह वाह जिन हर स्यों जोड़िया नाम

नानक संभालिया। सलूक महला पंजवां आद मद अर अंत परमेश्वर रखिया। सतगुर दिता हर नाम अमृत चखिया। साधा संग अपार अंदिन हर गुण रवे। पाए मनोरथ सब जूनी नह पवे। सब किस करते हाथ

जिन जन त्याया खसम तिन सुख पाया सफल जन्म परवान गुरमुख आया हुक्मै बुझ निहाल खसम फुरमाया जिस हुआ आप किरपाल सो नह परमाया जो जो दिता खसम सोई सुख पाया नानक जिसै दयाल बुझाए हुक्म मित जिसै पलाए आप मर मर जमह नित पौड़ी निंदक मारे तत्काल खिन टिकन ना दिते प्रभदास का दुख ना खव सकह हर जोनी जुते मथे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते दुख लगै बिल लाणिया नरक घोर सुते कंठ लाए दास रखियन नानक हर सत्ते सलोक महला पंजवा राम जपो हो वडभागी हो जल थल पूर्ण सोए नानक नाम।

दौलत बन महिया, अजहो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो, कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो, अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरे हो, एहो अवसर कत।

आई आवत किने ना पेख्यो कमने जाने री बाई कौन कह किन बूझी है रमैया आकुल री बाई रहाउ ज्यों अकाश पंखी अलो खोज निरख्यो ना जाई।

पानी लख चौरासी जिन अपाई सो सिमरो निर्वाणी कायक मंडल कापड़ी आरी अठसठ कायक राही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाह के पाही गुजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता मह दे मरै सर्प जोन वल वल अवतरै अरी बाई गोविंद नाम।

बेसवा जून वल वल अवतरै, अंत काल जो लड़के सिमरै, ऐसी चिंता मह जे मरै, सूकर जोन वल वल अवतरै, अंत काल जो मंदर सिमरै, ऐसी चिंता मह जे मरै, प्रेत जोन वल वल अवतरै,

प्रमाद पुरुख मनोपिमंग सत आद भाव रतन परमद पुतंग परकृत परंग जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयंग नाद नोत जसमरणेन जन्म जराद मरण भयं रहाउ इस जमाद पराभयं जस स्वस्थ सोकृत कृतं पाव पूत भाव समभ्यं परमंग प्रसन्न मिदं लुबाद दृष्ट परग्रहं जद विद आचरणं तज सकल दोह कृत दुर्मति भज चक्र धर सरणं हर भगत निज निह के

पहला सेवक जन बने ठाकुर लिव लागे जो तुम राजस कहते गुरमत तिन मुख भाग सुभागे रहाउ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिसम भई मुख लागे सगली रैन सोई अंधियारी गुर किंचत कृपा जागे जन नानक के प्रभ सुंदर स्वामी मोहे तुम सर अवर ना लागे देव गंधारी मेरो सुंदर कहो मिले कित गली हर के संत बतावो मार्ग हम पीछे लाग चली रहाव प्रिय के बचन सुखाने ही अरे यह चाल बनी है भली लटुरी मधुरी ठाकुर पाई ओह सुंदर हर ढुल मिली एको प्रियो सखियां सब प्रिय की जो भावे पेर सा भली नानक गरीब क्या करे बेचारा हर भावे तित राहे चली देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग चलूलै राती हर प्रेम पीनी चोली है रहाव हों फिरों दीवानी आवल बावल तिस कारण हर ढोली है कोई मेलै मेरा प्रीतम प्यारा हम तिस की गुल गोली है सतगुर पुरख मनावो अपना हर अमृत पी चोली।

कर जार। कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है तार। जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राखो कृपा तार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो हो लाज मरार। देव गंधारी हर गुण गावे हो तिस बलिहारी, देख देख जीवा साध गुर दर्शन। जिस हृदय नाम मरारी रहाओ, तुम पवित्र पावन पुरख प्रभु स्वामी। हम क्यों कर मिल है जूठारी, हम रह जिये होर मुख होर होत है। हम कर्महीन कूड़ियारी, हमरी मुदर नाम हर स्वामी। हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी, ज्यों पावै त्यों राखो स्वामी। जन नानक शरण तुम्हारी देव गंधारी, हर के नाम बिना सुंदर है नक्ति। ज्यों बेसवा के करपूत जमत है, तिस नाम परयो है त्रक्ति रहाओ। जिनकै हृदय नाही हर स्वामी, ते बिगड़ रूप बेरक्ति। ज्यों नुगुरा बहु बातां जाने, ओह हर दरगाह है प्रस्ति। जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी, तिन्ना साध जना पग चकती। नानक पतत पवित मिल संगत, गुर सतगुर पातै सुक्ति। छका एक देव गंधारी महला पंजवा, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माई गुर चरणी चित लाई है,

अमृत सुखदाई पूर्ण प्रभ करता मेरी बहुत ज्ञान पजरत निर्गुण क्रूप कोलहीन नानक हों आनंद रूप स्वामी भरत देव गंधारी मन हर कीर्त कर सद हूं गावत सुनत जपत उधारै

ज्यों अपने प्रभु भाव नीचों नीच नीच अतनाना होए गरीब बलाव रहाव अनक अडंबर माया के बिरथे तांस्यों प्रीत कटावों ज्यों अपनो स्वामी सुख माने ताम है सुबा पावों दासन दास ऋण दासन की जन की टहल कमावों सर्व सुख बड़े

राम नाम रस माते महा किल बिख कोट दुख रोगा प्रभ दिष्ट तुहारी हाते सोवत जाग हर हर हर गाया नानक गुर चरण पराते।

दुख कनेरा सके दो देव गंधारी पंजवा मन गुरमिल नाम अराध्यो सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल भादेव रहा कर कृपा अपना दास कीनो काटे माया पादेव भाओ भगत गाए गुण गोविंद जम का मार्ग साधेव भयो अनग्रहो मिट्यो मोर्चा अमोल पदार्थ ला देव बलिहार है नानक लख बेरा मेरे ठाकुर अगम अगा देव देव गंधारी पंजवा माई जो प्रभ के गुण गावे सफले आया जीवन फल ताको पा

आवे नरक रोग नहीं होवत जन संग नानक जिस लड़ लावे देव गंधारी पंजवा चंचल सुपने ही पुर जायो इतनी ना बूझे कबहू चलना विकल भयो संग मायो रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया विखिया एक उपायो लोभ सुने मन सुख कर माने बेग तहां उठतायो फिरत फिरत बहुत श्रम पायो संत द्वारे आयो करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी।

लाग हर चरनी लागो जिस प्रभे अंचल गही है आंच न लागे अग्न सागर ते करन स्वामी की अही है कोट पराद महा किरत कान बहुर बहुर प्रभ सही है परना मैं पूर्ण परमेश्वर नानक तिस सर नहीं है देव गंधारी पंजवा गुर के चरण हृदय प्रवेशा रोग सोग सब दुख बनाते उतरे सगल कलेचा रहाव जन्म जन्म के किल विकनाश हैं

नानक दास बलिहारी चके तिन देव गंधारी महला पंजवा माई प्रभ के चरण निहारो करहु अनग्रह स्वामी मेरे मन ते कबू ना डारो रहाओ आदु धूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जारो सब ते नीच आत्म कर मानो मन मह इहो सुख धारो गुण गावह ठाकुर अबनाथी कलमल सगले चारो नाम निदान नानक दान पाव कंठ लाए उड़ धारो देव गंधारी महला पंजवा।

जाको उपजी छोड़ न कतहु जाता रहाउ। बैखत हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीरथ मज्जन कीनो साधु धूरी नाता सफल जन्म।

लाइय संकट घोर कटे खिन तर नानक हर दर्स समाइय देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाव दुई कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्म मन त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन कौ बल जाइए।

पाल दयाल दुख भजन मेरा सगल अनेतरा गया रहाउ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सहया कर मस्तक धार साज निवाजे मुए दुष्ट जो फया पर उपकारी सर्ब सधारी सफल दर्शन सहजया कहो नानक निर्गुण कहो दाता चरण कमल उर धरिया।

हरि गुरमुख जान रहाउ, काहे प्रमत हो तुम प्रमहु ना पाई। रवियारि रविया सर्वथान, ज्यों बैसंतर काष्ट मजार। बिन संजम नहीं कार्य सार, बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार। मिल संगत ताज अभमान, कहो नानक पाए है परम निदान।

कर चतुराई बिस्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध अर साधक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादक चतुर वेद उचरत दिन रात।

ताकत स्यो करे उल्टी रे झूठै कीरे झूठ प्रीत छुटकी रे मन छुटकी रे ताकत संग ना छुटकी रे रहाओ ज्यो काजर भर मंदर राखियो जो पैसा कालू कीरे दूरों ही ते भाग गयो है जिस गुरमिल छुटकी त्रे कुटीरे मांगो दान कृपाल कृपा ने मेरा मुख साकत संग ना जुपसीरे।

रहाउ। मद माया कै भयो बावरु, हर जस नह उचरै, कर परपंच जगत को डहकै, अपनो उधर भरै, स्वान पूछ ज्यो होए ना सूदो, कहो ना कान धरै, कहो नानक भज राम नाम नित, जां ते काज सरै, देव गंधारी महला नावा, सब किस जीवत को व्यवहार, मात पिता भाई सुत बंधप, हर फुन ग्रह की नार रहाव, तन ते प्राण हो जब न्यारे, तीरत प्रेत पकार, आद करी को नह राखै, घर ते देत निकार, मृग तृष्णा ज्यों जग रचना, यह देखो हृदय विचार, कहो नानक भज राम नाम नित, जहां ते होत उधार, देव गंधारी महला नौवां, जगत मैं झूठी।

पुयंगन बसरिया अनक उपरिया तौ तो मैं हर हर करिया तो सुख सहजरिया रहाउ मिथन मोहरिया अनको मेरिया विच घूमन किरिया सगल बटरिया बिरख कतरिया बहुबंद है परिया हिर साध सफरिया जह कीर्तन हरिया नानक सरनरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागड़ा महला नौवा हर की गत नह को जाने जोगी जति तपी पाच हारिये अर बहु लोग सियाने रहाउ तिन मह राउ रंक कौ करी राउ रंक कर डारी रीते परे परे सखनावे यह ताको व्यवहारी।

मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़िए, हर हर नाम त्याए राम, हर भाग वड्डे लिख पाया मेरी जिंदड़िए, जन नानक नाम समाए राम, हर सेती मन बेदया मेरी जिंदड़िए, ज्यों बालक लग दुध कीरे राम।

गुण गावे हर प्रभ कीरे राम। ते सर्वन भले सोभ नीक है मेरी जिंदड़िए, हर कीर्तन सुने है हर तेरे राम। सो शीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए, जो जाए लगे गुर पैरे राम। गुर विटो नानक वारिया मेरी जिंदड़िए, जिन हर हर नाम च तेरे राम। ते नेत्र भले प्रवान है मेरी जिंदड़िए, जो साधु सतगुरु देख है राम। ते हस्त पनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए, जो हर जस हर हर लेख है राम। तिस जान के

हर सुन हर नाम मनी सह राम, धरत पाताल आकाश है मेरी दड़िए, सब हर हर नाम त्यावै राम, पौन पानी वै संतरो मेरी जिंदड़िए, नित हर हर हर जस गावै राम, वण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए, मुख हर हर नाम।

तेरा। जिस अंतर हिरदा शुद्ध है मेरी जिंदड़िए, तिन जान सब डर सुट कत्ते राम। हर निरपो नाम पतीजिया मेरी जिंदड़िए, सब झक मारन

तिनकै संग मल उतरै मेरी जिंदड़िए रंग राते नदर निशाने राम। नानक की प्रभ बेनती मेरी जिंदड़िए मिल साधु संग अगाने राम। हे रसना जप गोविंदो मेरी जिंदड़िए जप हर हर कृष्णा जाए राम। जिस दया करे मेरा पार ब्रह्म मेरी जिंदड़िए तिस मन नाम वसाए राम। जिस भेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़िए सो हर धन निध पाए राम। वड भागी संगत मिले मेरी जिंदड़िए नानक हर गुण गाए राम। थान थनंतर राव रहे आ मेरी जिंदड़िए पार

यो हर हर नाम अराधे राम कर सेवो हो पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो जम का मार्ग साधे राम मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख हर दरगहा सुबा पाईए जिनको बधात तुरहु लिखिया तिना रहन दिन लिव लाईए हौ मैं ममता मोह छुट्टा जा संग मिलिया साधे जन कह नानक मुक्त हुआ हर हर नाम अराधे कर जोड़े हो संत एकत्र होए मेरे लाल जियो।

जो जन प्रभ सिंह रातिया एक जन है एक मन है राम कै रंग मातिया लग संत चरनी पड़े सरनी मन तिना उमाहा बिनवंत नानक जिन नाम पल्ले से सच्चे साहा नानक सोई सिमरिय हर जियो जाकी कल धारी राम।

कै चरण लगे है, मन प्रिय प्रेम कणा, हर की भगत मंगे है, हर भगत पाईए प्रभ त्याईए, जाहे मिलिए हर जना, मान मोह विकार तजिए, अर्प तन तन एहो मना, बड पुरख पूरन गुण संपूर्ण, भ्रम पीत हर हर मिल भगै है।

करी सब किलविख नास मन कर सदा मजन गोविंद सज्जन दुख अंधेरा नास्ते जन्म मरण ना होए तिसको कट्टे जम के पासे मिल साद संगे नाम रंगे तहां पूर्ण आसो मिनवंत नानक तार कृपा हर चरण कमल निवासो तह अनद बनोद सदा अनहद चुनकारो राम मिल गावह संत जना प्रभ का जय कारो राम मिल संत गावह खसम भावह हर प्रेम रस रंग भिन्निया हर लाभ पाया आप मटाया मिले श्री विचुनिया गह पुजा लीने दया कीने प्रभ एक अगम अपारू बिनवंत नानक सदा निर्मल सच शब्द रुण चुनकारु सुन बड़ भागिया हरे अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी किस हृदय सुमानी राम अकथ कहानी तिन्नी जानी जिस आप प्रभ कृपा करे अमृतिया फिर नाम हुआ कल कलेशा दुख हरे हर सरन पाई तज ना जाई प्रभ प्रीत मन तन पाणी बिनवंत नानक सदा गाइय पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत भये किश कहन ना जाई राम जिसते उपजेड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया।

लापन्यवा खोजत संत फिरह प्रभ प्राण अधारिये राम तान तन कीन भया बिन मिलत प्यारे राम प्रभ मिलो प्यारे मया तारे कर दया लड़ लाए लीजी है देह नाम अपना जपू स्वामी हर दर्श पेखे जीजी है समरथ पूर्ण सदा निचल ऊच अगम अपारे बिनवंत नानक धार कृपा मिलो प्राण प्यारे जप तप बरत कीने देखन को चरना।

0: तपत ना कतह बुझे बिन स्वामी सरनाराम। प्रभ सरन तेरी काट बेरी संसार सागर तारिये, नाथ निर्गुण कछ ना जाना।
1: मेरा गुण अवगुण ना बिचारिये,
0: दीन दयाल गोपाल प्रीतम। सम्रात कारण करना नानक चातरक हर बूंद मांगे, जप जीवा हर हर चरना। अमह सरोवरो पियो हर हर नामा राम, संत है संग मिले जप पूर्ण कामा राम। सब काम पूर्ण दुख बदीरन, हर निमख मनहु ना बिसरे। आनंद अनदिन सदा साचा, सर्व गुण जगदीसर। अगणत ऊच अपार ठाकुर, अगम जाको तामा। बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूरन, मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला, सुन गावन हारे राम। हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत सोहंत प्राणी, ताकि महिमा कित गना। हर बिसर नाही प्राण प्यारे, चितवंत दर्शन सद मना। शुभ दिवस आए गह कंठ लाए, प्रभु ऊचे अगम अपारे। बिनवंत नानक सफल सब किश, प्रभ मिले अत प्यारे। बिहागरा

गुण गपालना जप है रसना, फिर कदहो से देह आवे, तरवरव सुन्ने नह पात जुड़ते, जम मग गौन अकेली।

लेखा धर्म भया तिल पीड़े कहानी राम किरत कमाने दुख सहो पराणी अनक जोन प्रमाया महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया एक सहार के नाम बाजू आन काज सियाणी बिनवंत नानक लेख लिखिया भरम मोहे लोभाणी बीच ना कोई करे किरत घण विछड़ पया आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया गुण गोविंद गुरमुख ना जपया तपत थम गल लातिया काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पछतापया बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम पतत उदारन हर बिरद तुम्हारा राम पतत उदारन सरन स्वामी कृपा निद दयाला अंधकूप ते उधार करते सगल घट प्रतपाला।

कल्याण मैं प्रगट भय सीजा सुहावी संग प्रभ कै अपनी प्रभ कर लय छोड़ चिंत अचिंत होए बहुत दुख ना पाया नानक दर्शन पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया।

देश वेश स्वर्ण रूपा सगल ऊणे काम पुत्र कलतरना संग शोभा हस्त घोर विकारी बिनवंत नानक बिन साध संगम सब मिथ्या संसारी राजन क्यों सोया तू नींद भरे।

बिन नाम हर के सुख नहीं, सहस सियाणप अपाव थाके, जह भावत कह जाही, आद अंते मद पूरन सर्वत्र घट घट आही, बिनवंत नानक जिन साध संगम, से पत सेती घर जाही, नरपत जान ग्रहयो सेवक सियाने राम, सर पर विचड़ना मोहे पछताने राम, हर चंदौरी देख भूला कहां अस्थित पाई, बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई, है हों हों करतना त्रिशन बूझै, नह काम पूर्ण ज्ञानी, बिनवंत नानक बिन नाम हर के कीत्या पछताने, तार अनग्रहो अपना कर ली नाराम, पुजा गह काग लियो साधु संग दीना राम, साध संगम हर अरादे सगल कलमल दुख जले, महा धर्म सोदान किरिया संग तेरे से चले, रसना अरादै एक स्वामी हर नाम मन तन पीना, नानक जिसनो हर मलाए सो सर्व गुण पर बीना।

अंतर शब्द वसाया दुख कटिया चानन किया करतार नानक रखन हारा रखसी अपनी कृपा धार महला तीजा।

तुद जेवड़ होर शरीक होवै तां आखियै तुद जेवड़ तू है होई जिन तू सेवया तिन सुख पाया।

पाए। गुरु का शब्द संभाल तू मूड़े, गत मत शब्दे पाए। नानक सतगुर तद ही पाए, जा विचो आप गवाए पौड़ी। जिस दै चित वसिया मेरा स्वामी, तिसनों क्यों अंदेसा किसै गल दा लोड़ी है। हर सुख दाता सबना गल्लां का, तिसनों त्याए दया केव निमख घड़ी मुंह मोड़ी है। जिन हर त्याया तिसनों सर्ब कल्याण होए, नित संत जना की संगत जाए बहिया मुंह जोड़ी है। सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के, सब जन के बंधन तोड़ी है। हर कृपा ते हुआ हर भगत, हर भगत जना कै मुहे दिठै। जगत तरिया सब लोड़ी है। सलोक महला तीजा, सारस ना जल जाओ। जिन हर का स्वाओ ना पाया, नानक रसना शब्द रसाए। जिन हर हर मन वसाया, महला तीजा सारस ना जल जाऊ। जिन हर का नाम वसारिया, नानक गुरमुख रसना हर जपै। हर कै नाए प्यारिया पौड़ी, हर आपे ठाकुर सेवक भगत। हर आपे करे कराए, हर आपे वेखै विगसै आपे। जित पावै तित लाए, हर इक ना मार्ग पाए आपे। हर इक ना उजड़ पाए, हर सच्चा साहिब सचत पावस। कर वेखै चलत सुबाए, गुर

आई बंधन तोड़े सच बसै अज्ञान अंधेरा जाय सब किस देखै तिसै का जिन किया तन साज

दिन रहे सदा गुण गाय, बिन कर्म किने ना पायु, भौंक मोए बिल लाय। गुर कै शब्द मन तन भिजै,

सब शास्त्र आप कथ आप पीजै आपे ही बह पूजे करता आप परपंच करीजै आप परविरत आप निर्विरति आपे अकाथक थीजै आपे पुन सब आप कराए आप लिप्त वर्तीजै आपे सुख दुख देवै करता आपे बख्श करीजै। श्लोक महला तीजा। सेखा अंदर हो जोर छाड़ तू पहो कर चल गवाए गुर कै भय केते निस्तरे भय विच निरभो पाए मन कठोर शब्द भेद तू शांत वसै मन आए शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए थाए नानक काम करो।

खंडन आपे सब कट भोग वै स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब बेता आपे गुरमुख भंजन जन नानक सलाहे ना रजै तुद करते तू हर सुखदाता।

लातीजा। एक सतगुर की सेवा करहें चा करी, हर नामे लगे प्यार। नानक जन्म सवार ने अपना, कुल का करन उधार। पौड़ी आपे चात साल आप है पांदा।

पर बुझै सब आपे, एक थै आपे करे आणी, टिकना अंदर महल बुलाए, जा आप तेरे मन सच्चे पाणी, जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़ियाई, से जन सच्ची दरगह जाणी। सलोक मर्दाना पहला, कल कलवाली काम मद, मनुआ पीवन हार, क्रोध कटोरी मोहे भरी, पीलावा अहंकार, मजलस कूड़े लभ की, पी पी होए खुआर, करनी लाहन सत गुड़, सच सरा कर सार, गुण मंडे कर सील के हो, शर्म मास आहार, गुरमुख पाइए नानका, हादै जाहे विकार। मर्दाना पहला, काया लाहने आप मद, मजलस तृष्णा धात, मनसा कटोरी कूड़ भरी, पी लाए जमकाल, हित मद पीतै नानका, बहुते खटी है बेकार। ज्ञान गुड़ सलाह मंडे, भौ मास आहार, नानक एहो भोजन सच है, सच नाम आधार। काया लाहन आप मद, अमृत किसकी धार, सत संगत स्यों मिलाप होए, लिव कटोरी अमृत भरी, पी पी कट है बेकार। पौड़ी आपे सुर नर गण गंधर्वा, आपे खट दर्शन की बाणी, आपे सेव संकर महेशा, आपे गुरमुख अकथ कहानी, आपे जोगी आपे भोगी, आपे सन्यासी फिरै बिबाणी, आपे नाल गोसत आप उपदेसै, आपे

हरस्यों प्रीत उपजै, माया मोह जलावै, गुर प्रसादी दुबदा मरै, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार। नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै, मर जम्मै होए खुआर महला तीजा। प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी, मेरी प्यास ना जाए। नानक सतगुर मिले है मेरी प्यास गई, फिर पाया घर आए पौड़ी। आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास भया, आपे दस अठ वर्ण उपायन। आप ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे छोड़े, आपे बख्शे करे दया। आप अभुल ना भुलै कब ही,

गुरप्रसाद जीवत मरे ता फिर मरना होए पौड़ी। जिसदा कीता सब किश होए तिसनू परवाह नाही किसै केरी। हर जियो तेरा दिता सब को खावे सब मोहताजी कढ़ै तेरी। जे तुदनू सलाहे सो सब किश पावे जिसनू किरपा निरंजन केरी। सोई साहु सच्चा बनजारा जिन वखर लद्या हर नाम धन तेरी।

गुर पर साथी जीवत मरे हुक्म बूझे सोई नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए पौड़ी जा आप कृपाल होए हर स्वामी ता अपना नाउ हर आप जपावे आपे सतगुर मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर पावे अपने सेवका की आप पैज रखे अपने भगतां की पैरी पावे धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवे जो हर का प्यारा।

अगम अगोचर अत वड्डा अतुल ना तुलिया जाय कीमत किनै ना पाइया कितै ना लया जाय गुर कै शब्द भेदिया इन बिद वसिया मन आय नानक आप अमेओ है गुर किरपा ते रहिया समाय आपे मिलिया मिल रहिया आपे मिलिया आय महला तीजा।

आपे लाए ध्याना, आपे मोनी वरतदा आपे कथै गियाना, कौड़ा किसै ना लगई सबना ही पाना, उस्तत बरन ना सकी है,

पट्टियां भरिया मांग संधूरे अगै गई ना मनिया मरो वसूर वसूरे मैं रवंदी सब जग रुन्ना रुनने बणो पंखेरू एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन्हो पिरहो विछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई आओ।

गुर कै शब्द मलाए मेरी मेरी कर दे घट गए इना हाथ केहो ना आया सतगुर मिले है सच मिले सच नाम समाया आसा मनसा इहो शरीर है अंतर जोत जगाए नानक मनमुख बंध है गुरमुख मुक्त कराए वडहंस महला तीजा सुहागनी सदा मुख उजला गुर कै सहज सुभाए सदा फिर राव है अपना विचों आप गवाए मेरे मन तू हर हर नाम त्याए सतगुरु मोह को हर दिया बुझाए रहाव दुहागनी खरिया बिल लांदियां तिन्ना महल ना पाए।

मिलाया पूरे सतगुर हर नाम त्याया रहाय। ब्रह्म वेद बाणी परगासी माया मोह पसारा महादेव ज्ञानी वरतै घर अपने तामस बहुत अहंकारा। किसन सदा अवतारी रूदा कित लग तरै संसारा। गुरमुख ज्ञान रथे जोगे अंतर चूकै मोह गुबारा।

मन आए भरमे भूला फिरे संसार मर जन्मे जम करे खुआर नानक से बड़ भागी जिन हर नाम ते आया गुर प्रसादी।

मैं निर्गुण बख्श नानक वेचारा। वडहंस महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मैं मन वड्डी आस हरे, क्यों कर हर दर्शन पावा। हौ जाए पुछा अपने सतगुर, गुर पुछ मन मुग्द समझावा। भूला मन समझै गुर शब्दी, हर हर सदा त्याए। नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा, तो हर चरणी चित लाए। हौ सब वेस करी पिर कारण, जे हर प्रभ साचे पावा।

संतन पह आया, दुख भ्रम हमारा सगल मताया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूंचा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा, वडहंस महल।

प्रभु दाते जिसह जनावो हो तिनह तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण किशु ना जाता नानक साधु देख मन राता वडहंस महला पंजवा अंतर जामी सो प्रभ पूरा दान दे साधु की तूरा कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला रहाओ जल कल महियल रहे आपर पूरे निकट वसै नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पैर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सरन परे हो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा तू वड दाता अंतर जामी सब मह रविया पूर्ण प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाव तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल होए संता तूरे चरण कमल हृदय उरतारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारी।

साध संग हर अमृत पीजै, ना जियो मरे ना कबहू सीजै, वडभागी गुर पूरा पाइय, गुर किरपा ते प्रभु त्याय रहाउ। रतन जवाहर हर माणक लाला, सिमर सिमर प्रभ भए निहाला, जत कत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना, घट घट अंतर मेरा स्वामी बूठा, नानक नाम पाया प्रभ तूठा, बढ़ा।

जे सौ भोजन मैं नीरे मेरा मन तन प्रेम परम का बिन दर्शन क्यों मन धीरे सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई।

किस बिन रह ना सका, ज्यों चातरक जल को बिन लाता, हों क्या गुण तेरे सार संभाली, मैं निर्गुण को रख लेता, हों पई उड़ीनी कंत को अमाली, सो पेर कद नैनी देखा, सब रस भोगण विसरे, बिन पेर कितै ना लेखा, इहो कापड़ तन ना सखावई, कर ना सको हों वेसा, जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा, तिने आगे हम आदेसा, मैं सब शिंगार बनाया अमाली, बिन पेर काम ना आए, जां सह बात ना पुछिया अमाली, तां बिरथा जोबन सब जाए, तन तन ते सुहागणी अमाली, जिन सहो रहया समाए, हों वारिया तिन सुहागणी अमाली।

वारी खसम कढाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वन्यावना।

वारी खसम कढाए किरत कमावण सब उपायन आप आपे नदर करे कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे सब कोई मीठा मांग देख खसम भावे सो करे किश पुन दान अनेक करनी नाम तुलना सम

अलख अपारा तेरे बंके लोएन दंतरे साला सोहने नक जिन लमड़े वाला कंचन काया सोयने की ताला स्वर्ण ताला कृष्ण माला जप हो तुसी सहेली हो जम द्वार ना हो खड़िया सिख सुन हो मेहली हो।

रंगरती मुइये सुभावंती नारे सच्चा शब्द मिल रही मुइये फिर रावे पाए प्यारी सच्चा पाए प्यारी कंत सवारी हर हर स्यों ने हो रचाया आप गुआया ता फिर पाया गुरु कै शब्द समाया सा धन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा धन मे

नानक हर की भगत नराली, गुरमुख विरलै कीजै। गुरमुख खेती हर अंतर बीजी, हर लीजै शरीर जमाए राम। अपने घर अंदर रस पुंच तू, लाहा लै परथाए राम। लाहा परथाए हर मन वसाए, धन खेती वापारा। हर नाम ते आए मन वसाए।

नानक नाम बीज मन अंदर सच्चै शब्द सुपहाय हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमति मन निज कर वसिया सच्चै शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हूं मैं मारी साचै शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पहु पंजन हर रावै मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वडियाई राम गुरमति हुक्म बूझियै हुक्मे मेल मलाई राम हुक्म मलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वडियाई गुर ते पाई सच सवार नहारा पौ भंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहया समाई वडहंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा

पारा खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कै दरबारा राम खोटे दरगहा सुटियन उभे करन पुकारा राम उभे करन पुकारा मुग्ध गुवारा मनमुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम ना पाया मनमुख संता नाल वैर कर

रसना हर रस पीजै राम, रसना हर रस पीजै अंतर पीजै, साच शब्द बीचारी अंतर खूटा अमृत भरिया, शब्दे काढ़ पीए पनिहारी, जिस नदर करे सोई सच लागे, रसना राम रबीजै, नानक नाम रते से निर्मल, होर हूं मैं मैल परीजै, पंडित ज्योत की सब पढ़ पढ़ कूक दे, किस पह करह पुकारा राम, माया मोह अंतर मल लागे, माया के वापारा राम, माया के वापारा जगत प्यारा, आवन जान दुख पाई, बिख का कीड़ा बिख स्यो लागा, बिष्टा माही समाई, जो तुर लिखिया सोए कमावे, कोई ना मेटन हारा, नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया, और मूरख कूक मोए गावारा, माया मोहे मन रंगिया, मोहे सुध न काई राम, गुरमुख इहो मन रंगी है, दूजा रंग जाई राम, दूजा रंग जाई साच समाई, सच भरे पंडा।

सच्चा मन पाया सच वसाया, शब्द रत्ते अंत नबेरा, नानक नाम रत्ते से सच समाणी, बहुर ना पवजल फेरा, माया मोह सब बरल है दूजे।

कै कोई जिन सृष्ट साजी सो कर वेखै तिस जेवड़ अवर ना कोई मनमुख अंधा तप तप खपै बिन शब्द शांत ना आई नानक बिन नावै सब कोई भुला माया मोहे खोआई एहो जग जलता देख कै भज पए हर सरनाई राम।

सेवा लागे से वडभागे जुग जुग एको जाता जात सत संयम कर्म कमावे बिन गुर गत नहीं पाई नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवे हर सरनाई जो हर मत दे सा उपजे होर मत ना काई राम अंतर बाहर एक तू आपे देहे बुझाई राम आपे देहे बुझाई अवर ना पहाई गुरमुख हर रस चाखिया दर साचै सदा है साचा साचै शब्द सुभाखिया घर मह निज घर पाया सतगुरु दे वडाई नानक जो नाम रते से महल पाए मत प्रवान सच साई बड़ा हंस महला चौथा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई राम हर हर

हो मन तन काट काट तिस दे जो सतगुर बचन सुनाए मेरा मन बैराग भया बैरागी मिल गुर दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो सुख दाते देहो सतगुर चरण हम तूरा।

तह तिन के जिन सतगुर पुरख प्रभ के आया तू वरदाता अंतर जामी मेरी श्रद्धा पूर हर राया गुरसिख मेल मेरी श्रद्धा पूरी अन दिन राम गुण गाए जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मिलाए हों वारी गुरसिख मीत प्यारे राम हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नाम अधारे राम हर हर नाम मेरा प्राण सिखाई किस बिन घड़ी निमक नहीं जीवा हर हर कृपा करे सुख दाता गुरमुख अमृत पीवा हरे आपे श्रद्धा लाए मलाए हरे आपे आप सुवारे हों वारी गुरसिख मीत प्यारे हरे आपे पुरख निरंजन सोई राम हरे आपे मेलै करै सो होई राम जो हर प्रभ भावै सोई होवै अवर न करना जाई बहुत सियाणप लया न जाई कर थाके सब चतुराई गुर प्रसाद जन नानक देखिया मैं हर बिन अवर ना कोई हरे आपे पुरख निरंजन सोई बड़ा हंस महला चौथा हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञान अंधेर बनासे सतगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास ग्रासे जिनको हर प्रभ कृपा सारी ते सतगुर सेवा लाया हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया मेरा सतगुर प्यारा मैं गुर बिन रहन ना जाई राम हर नाम देवै मेरा अंत सखाई राम हर हर नाम मेरा अंत सखाई गुर सतगुर नाम दृढ़ाया जिथे पुस्त कलत्र कोई बेली नाही तिथे हर हर नाम छड़ाया तन तन सतगुर पुरख निरंजन जित मिल हर नाम ते आई मेरा सतगुर प्यारा मैं गुरबिन रहन ना जाई जिन्नी दर्शन सतगुर पुरख ना पाया राम तिन निफल जन्म सब बिरथा गवाया राम निफल जन्म तिन बिरथा गवाया ते साकत मोए मर चूरे कर हुंदै रतन पदार्थ भूखे भागहीन हर दूरे हर हर तिनका दर्शन।

सतगुर पुरख ना पाया हम चातरक दीन हर पास बेनंती राम गुर मेल मेरा प्यारा हम सतगुर करह भगती राम हर हर सतगुर करह भगती जा हर प्रभ कृपा तारे मैं गुर बिन अवर ना कोई बेली गुर सतगुर प्राण हमारे कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया हर हर नाम हर सती हम चातरक दीन हर पास बेनंती वडहंस महला चौथा हर कृपा कर सतगुर मेल सुखदाता राम हम पूछे हैं सतगुर पास हर बाता राम सतगुर पास हर बात पूछे हैं जिन नाम पदार्थ पाया पाए लगे हैं नित करहें बेनंती गुर सतगुर पंथ बताया सोई भगत दुख सुख समत कर जाने हर हर नाम हर राता हर कृपा कर गुर सतगुर मेल सुख दाता सुन गुरमुख नाम सब बिन से हूं मैं पापा राम जप हर हर नाम लथे अड़े जग तापा राम हर हर नाम जिन्नी अरादया तिनके दुख पाप नवारे सतगुर ज्ञान खड़ग हाथ दीना जम कंकर मार बिदारे हर प्रभ कृपा धारी सुख दाते दुख लाथे पाप संतापा सुन गुरमुख नाम सब बिन से हूं मैं पापा जप हर हर नाम मेरा मन पाया राम मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम गुरमुख जप सब रोग गवाया अरोगत भये शरीरा अनदिन सहज समाध हर लागी हर जपया गहर गंभीरा जात अजात नाम जिन त्याया तिन परम पदार्थ पाया जप हर हर नाम मेरा मन पाया हर तारु हो कृपा।

आया तू दुख भंजन सर्व सुख दाता हम पाथर तरे तराया सतगुर भेट राम रस पाया जन नानक नाम उधारी हर धारहु हर धारहु कृपा कर कृपा लेहु उबारे राम वडहंस महला चौथा घोड़िया एक ओंकार सतगुर प्रसाद देहे तेजन जी राम उपाइया राम धन मानस जन्म पुन पाइया राम मानस जन्म वड पुन्ने पाया देहे सो कंचन चंगड़िया गुरमुख रंग चलूला पावे हर हर हर नवरंगड़िया एहे देहे सो बांकी जित हर जापी हर हर नाम सुहाविया वडभागी पाई नाम सुखाई जन नानक राम उपाइया देह पावो जीन बुझ चंगा राम चढ़ लंगा जी बिखम भोए अंगा राम बिखम भोए अंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहत चढ़ बड़ भागी लंघे गुर खेवट शब्द तराए अन दिन हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिनै गुरमुख जीतिया अकड़ो कड़ावे शब्द पावे अपेओ हर रस पीतिया सुन श्रवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महामार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया घोड़ी तेजन देहे राम उपाइया राम जित हर प्रभ जापै सा धन तन सुखाइया राम जित हर प्रभ जापै सा धन सबासै तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ दे हड़ घोड़ी बिखम लंघाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरे मिल संत जना जानी आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वाधाई बड़ा

राम जाड़ हर हर नाम रतन्ना राम जाड़ नाम रतन गोविंद पाया हर मिले हर गुण सुख घने गुर शब्द पाया हर नाम त्याया बड़भागी हर रंग हर बाणी हर मिले स्वामी अंतर जामी हर नव तन हर नव रंगिया नानक बखाने नाम जाने हर नाम हर प्रभ मंगिया कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम मन मैगल गुर शब्द वस आया राम मन वसगत आया परम पद पाया सा धन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती कर सो है हर प्रभ नारी हर रंग राती सहजे माती हर प्रभ हर हर पाया नानक जन हर दास कहत है वडभागी हर हर त्याया देह घोड़ी जी जित हर पाया राम मिल सतगुर जी मंगल गाया राम हर गाए मंगल राम नामा हर सेव सेवक सेवकी प्रभ जाए पावे रंग महली हर रंग माने रंग की गुण राम गाए मन सुपहाए हर गुरमति मन त्याया जन नानक हर कृपा तारी देह घोड़ी चढ़ हर पाया राग बड़ा हंस महा

0: तुद सलाही
1: गुण अवगण मेरा किस नाम बिचारिया
0: बख्श लिया खिन माही नौ निद पाई बजी वधाई वाजे अनहद तूरे कहो नानक मैं वार घर पाया मेरे लाथे जी सगल वसूरे सलोक क्या सुनेंदो कूड़ वंजन पवन चलारिया नानक सुनियर ते परवान जो सुनेंदे सच धनी चंत तिन घोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया राम से सहज सुहेले जिन हर हर रसना भणिया राम से सहज सुहेले गुण अमोले जगत उदाहरणे आए भै बोहित सागर प्रभ चरणा केते पार लंघाए जिन कौ कृपा करी मेरा ठाकुर तिनका लेखा ना गणिया कहो नानक तिन कोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया सलोक लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूह घणी नानक से अखड़िया बेअन।

धाने से परधाने हर सेती रंग राते हर रस अगाए सहज समाए घट घट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुरे अपने पाणे कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा इनकै सद कुरबाणी सलोक देह अंधारी अंध सुनी नाम विहूणिया नानक सफल जनम जय घट गुठा सच धनी संत तिन खनिया वन्या जिन मेरा हर प्रभ डीठा राम जन चाख अगाणी हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तूठा अमयो बूठा सुख भये दुख नास भरम बनास तन ते जप जगदीश ईसह जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तिन खनिया वन्या जिन घट मेरा हर प्रभु बूठा सलोक जो लड़ींदे राम सेवक से कांडिया नानक जाने सत साई संत ना बाहरा शंत मिल जल जलह खटाना राम संग ज्योति ज्योत मलाना राम समाए पूर्ण पुरख करते आप आपह जानिए तह सुन सहज समाद लागी एक एक वखाणिए आप गुप्ता आप मुक्ता आप वखाना नानक भ्रम पै गुण बिनासे मिल जल जलह खट।

भ्रम दुख दर्द निवार खिन मह रख ले हो दीन दयाला मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो सरण आवे गुण निदान पावे सो बहुड़ जन्म ना मरता बिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता आठ पहर हर त्याई राम मन इच्छे अड़ा फल पाईए राम मन इच्छ पाईए प्रभ त्याई है मिट है जम के त्रासा गोविंद गाया साध संगाया भई पूर्ण आसा तज मान मोह विकार सगले प्रभु कै मन पाईए बिनवंत नानक दिन सरैणी सदा हर हर त्याईए दरवाजे हैं अनहतवाजे राम घट घट हर गोविंद गाजे राम गोविंद गाजे सदा बिराजे अगम अगोचर ऊंचा गुण बेअंत किस कहन ना जाई कोई ना सकै पहुंचा आप अपाए आप प्रतपाले जी जंत सब साजे बिनवंत नानक सुख नाम भगती दर वजह है अनहद वाजे राग बड़ा हंस महला पहला घर पंजवा अलाहनिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद धन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग धंदै लाया मोहलत पुन्नी पाई भरी जानी अड़ा घत चलाया जानी घत चलाया लिखया आया।

पुरबकमाया धन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग तंद लाया साहिब सिमरहो मेरे भाई हो सबना एहो पयाना इत तंदा कूड़ा चार देह आगे सर पर जाना आगे सर पर जाना ज्यो मेहमान काहे गार्ग कीजै जित सेवे दरगाह सुख पाई नाम तिसे कालीज आगे हुक्म ना।

तिस भावै समरत सोथी है, हीलड़ा एहो संसारु जल थल मही अल रव रहिया, साचड़ा सिरजन हारु साचा सिरजन हारु अलख अपारु, ताका अंत न पाया आया तिनका सफल भया है, एक मान जिनी त्याया ताहे ताहे उसारे आपे, हुक्म सवार नहारु जो तिस भावै समरत सोती है, हीलड़ा एहो संसारु नानक रुन्ना बाबा जानिया, जे रोवै लाए प्यारु वाले वे कारण बाबा रोइय, रोवन सगल बेकारू।

दुख सुख दिया जेहा किया सो निभ है जी नाले जेहे कर्म कराए करता दूजी कार ना पाले आप नरालम तंदै बाधी।

रेवा रोवै माया मुठड़ी धंधड़ा रूवण हारेवा धंधा रूवै मैल ना धोवै सुपनंतर संसारू ज्यो बाजी गर पर मैं भूलै झूठ मुठी अहंकारू आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाई नाम रते गुरपूरै राखे नानक सहज सुभाय वडहंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पसार होवा सच्चा घर सचड़ै सेवी।

भया मनहुच्छा गुड़ सा मक्खी खाया नाम अरजाद आया कल पीतर नांगो बंद चलाया बाबा रू वो जे किसै रोवना जानी अड़ा बंद पठाया है लिखेड़ा लेखना मेटी है दर हकारड़ा आया है हकारा आया जा तिस पाया रुन्ने रोवन हारे पुत भाई पाती जे रोवह प्रीतम अत प्यारे पैर होवै गुणसार संभाले को मरे ना मोया नाले नानक जुग जुग जान सजाना रोवह सच संभाले वडहंस महला तीजा महला तीजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद प्रभ सचड़ा हर सलाही है कार्ज सब किश करने जोग सा धन रंड ना कबहू बैसे ना कदे होवै सोग ना कदे होवै सोग अन दिन रस भोग सा धन महल समाणी जिन प्रियो जाता कर्म बधाता बोले अमृत बाणी गुणवंतियां गुणसार हैं अपने कंत संभाल हैं ना कदे लगै विजोगो सचड़ा पिर सलाही है सब किश करने जोगो सचड़ा साहिब शब्द पछाणी है आपे लए मलाई सा धन प्रिय कै रंग रत्ती विचों आप गवाई विचों आप गवाई फिर काल ना खाई गुरमुख एको जाता कामन इच पुन्नी अंतर भिन्नी मिलिया जग जीवन दाता शब्द रंग राती जोब नमाती फिर कै अंक समाए सचड़ा साहिब शब्द पछाणी है आपे लहे मलाए जिन्नी अपना कंत पछाणिया औतिन पूछो संतां जाए आप छोड़ सेवा करे फिर सचड़ा मिले सहज सुपहाए फिर सच्चा मिले आए साच कमाए साच शब्द धन राती कदे ना रांड सदा सुहागण अंतर सहज समाधि फिर रहया पर पूरे वेख हदूरे

गई परांती। पेर निर्मायल सदा सुखदाता, नानक शब्द मलाए फिर हों चुनिया भी मिल है। जे सतगुर लाग है साचे पाए।

प्रेम समाय, जिन्हें अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता, कूड़ मुठी कूड़े आरे, सुने हो कंत मेहली हो, फिर सेवे हो शब्द विचारे, सब जागे आप।

झूठे बिन शब्द पिर ना पायो जन्म गवायो रोवे अवगुण यारी झूठी फिर जग जीवन किसनो रोईए रोवे कंत वसारे सब जग आप उपाय आवन जान संसारी सो फिर सच्चा सद ही साचा है ना ओह मरे ना जाए भूली फिरे धन इणिया रंड बैठी दूजे पहाय रंड बैठी दूजे पाई माया मोहे दुख पाए आप कटे तन सीजे जो किश आया सब किश जासी दुख लागा पाए दूजे जम काल ना सूजे माया जग लूजे लभ लोभ चेत लाए।

प्यारी मैं प्रभ सच पछाणिया होर भूली अवगणयारी मैं सदा रावे फिरे अपना सचड़ै शब्द विचारी सच्चै शब्द विचारे रंग राती नारे मिल सतगुर प्रीतम पाया अंतर रंग राती सहजे माती गया दुश्मन दुख सबाया अपने गुर कौ तन मन दीजै ता मन भीजै कृष्णा दुख नवारे मैं फिर सच पछाणिया होर भूली अवगणयारे सचड़ै आप जगते अपाया गुर बिन घोर अंधारू।

सब आखुहु सतगुरु वाहु वाहु जिन दान हर नाम मुख दिया। सलोक महला तीजा भै विच सब आकार है निरपौ हर जीओ सोए सतगुर सेवै हर मन वसै तिथै भउ कदे ना होए दुश्मन दुख तिसनो नेड़ ना आवै ओहे ना सकै कोई गुरमुख मन विचारिया जो तिस भावै सो होए नानक आपे ही पत रखसी कारज सवारे सोए महला तीजा एक सज्जन चले एक चल गए रहंदे भी फुन जाहे जिन्नी सतगुर ना सेवेओ ते आए गए पछताहे नानक सच रते से ना विछड़ सतगुर सेव समाहे पौड़ी तिस मिलिया सतगुर सज्जन जिस अंतर हर गुणकारी तिस मिलिया सतगुर प्रीत मैं जिन हूं मैं विचों मारी सो सतगुर पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जप्यो हो संतो हो राम नाम भौजल बिख तारी गुरपूरै हर उपदेसया गुर विटण्यो हौ सदवारी। सलोक महला तीजा सतगुर की सेवा चाकरी सुखी हूं सुख सार ऐथे मिलन वडियाईया दरगाह मुख द्वार सच्ची कार कमावनी सच पहनन सच नाम आधार सच्ची संगत सच मिले सच्चै नाए प्यार सच्चै शब्द हरख सदा दर सच्चै सत्यार नानक सतगुरु की सेवा सो करै जिसनो नदर करै करतार। महला तीजा होर वडाणी चाकरी त्रिग जीवन त्रिग वास अमृत छोड़ बिख लगे बिख खटना बिख रास बिख खाना बिख पहनना।

काम क्रोध विनाश सतगुर का भौ छोड़िया मन हट काम ना आवे रास जमपुर बद्दे मारी है को ना सुने अरदास नानक पूर्व लिखिया कमावना गुरमुख नाम निवास पौड़ी सो सतगुर सेवे हो साध जन जिना हर हर नाम दिरडाया सो सतगुर पूजो हो दिन सरात जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया सो सतगुर देखो एक निमख निमख जिन हर का हर पंथ बताया किस सतगुर की सब पगी पवो जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो सब धन धन जिन हर भगत भंडार लहाया श्लोक महला तीजा सतगुर मिले भुख गई

मनाय विस भेखै थामहु गिरहु भला जिथहु को वरसाय। शब्द रत्ते तिन्ना सूजी पई दूजे भरम भुलाय। पया किरत कमावना कहना कछु ना जाए। नानक जोत सुभावै।

ना हो गई, अचिंत वत्सय मन आय, अंतर तीर्थ ज्ञान है, सतगुर दिया बुझाय, मैल गई मन निर्मल हुआ, अमृत सारे तीर्थ नहाय, सज्जन मिले सज्जना, सच्चा शब्द सुपहाय, घर ही परचा पाया, ज्योति ज्योत मिलाय, पाखंड जम काल ना छोड़े, ले जासी पत गवाय, नानक नाम रते से उबरे, सच्चे सिंह निबलाए पौड़ी, तित जाए बहु सत संगति, जितै हर का हर नाम बिलोइया, सहजे ही हर नाम लेहो, हर तत् ना खोइया, नित जप्यो हो हर हर दिन सरात, हर दरगाह ढोइया, सो पाए पूरा सतगुरु, जिस तुर मस्तक लिलाट लखोइया, तिस गुर को सब नमस्कार करहु, जिन हर की हर गाल गलोइया। श्लोक महला तीजा, सज्जन मिले सज्जना।

गुर कै शब्द अपार यह सज्जन मिले ना विछड़ है जे आप मेले करतार इकना दर्शन की प्रतीत ना आईया शब्द ना करह विचार विछड़िया का क्या विछड़ जिन्ना दूजे भाए प्यार मनमुख सेती दोस्ती थोड़िया दिन चार इस प्रीति टुटदी विलम ना होवे

मारी साप ना मरे त्यों गुरे कर्म कमाहे सतगुर दाता सेविए शब्द वसे मन आए मन तन शीतल शांत होए तृष्णा अग्न बुझाए सुखा सिर सदा सुख होए जा विचों आप गवाए गुरमुख उदासी सो करे।

अंध बहु कर्म कमावे, दूजे भाए प्यार अणहोंदा आप गणाएंदे, जम मार करे तिन खुआर। नानक

सतगुर की गल मन्नी जो गुरमुख नाम के आए दे तिन चढ़ी चवगण वन्नी। सलोक महला तीजा मनमुख कायरत रूप है बिन नावै लक नाही अन दिन धंधे व्यापिया सुपने भी सुख नाही। नानक गुरमुख होवै ता उबर है नाही ता बदे दुख सहाय। महला तीजा गुरमुख सदा दर सोहणे गुर का शब्द कमाहे अंतर शांत सदा सुख दर सच्चै सोभा पाहे। नानक गुरमुख हर नाम पाया तैजे सच समाए। पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई। गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई। गुरमुख हर भगत हर आप लहाई। सलोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत ना आईया शब्द ना लागो भाव उसनो सुख ना उपजै भावे सौ गेड़ा आवो जाओ। नानक गुरमुख सहज मिले सच्चे स्यों लिवलाओ। महला तीजा ए मन ऐसा सतगुरु खोज लहो जित सेवे जन्म मरण दुख जाए। सहसा मूल ना होवे हूं मैं शब्द जलाए कूड़ै की पाल विचों निकले सच वसै मन आए। अंतर शांत मन सुख होए सच संयम कार कमाए। नानक पूरे

0: खलवाया हर नावै की वडियाई कर्म प्राप्त होवे गुरमुख विरलै किन्हे त्याया।
1: श्लोक महला तीजा बिन सतगुर सेवे जगत मोआ बिरथा जन्म गवाए दूजै।

सेवक सेवा करी हर सच्चे के गुण गाई नानक वेख विगस्या हर सच्चे की वडियाई पौड़ी जिनकै हर नाम वस्या सद हिरदै हर नामो तिनको रखन हारा हर नाम पिता हर नामो माता हर नाम सखाई मित्र हमारा हर नावै नाल गल्ला हर नावै नाल मसलक हर नाम हमारी करदा नित सारा हर नाम हमारी संगत अत प्यारी हर नाम कुल हर नाम परवारा जन नानक कौ हर नाम हर गुर दिया हर हलत पलत सदा करे निसतारा सलोक महला तीजा जिन कौ सतगुर भेटिया ते हर कीर्त सदा कमाहे चिंत हर नाम तिनकै मन वसिया सच्चै शब्द समाहे कुल उधार है अपना मोख पदवी आपे पाहे पार ब्रह्म तिनको संतुष्ट भया जो गुर चरणी जन पाहे जन नानक हर का दास है कर कृपा हर लाज रखाए महला तीजा हम मैं अंदर खड़क है खड़के खड़क विहाय हम मैं वड्डा रोग है मर जम्मे आवे जाय जिनको पूर्व लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया प्रभ आए नानक गुर प्रसादी उभरे हम मैं शब्द जलाए पौड़ी हर नाम हमारा प्रभ अवगत अगोचर अविनाशी पुरख विधाता हर नाम हम सिरे वह हर नाम हम पूज्य है हर नामे ही मन राता हर नामे जेवड कोई अवरना सूजे हर नामो अंत छडाता हर नाम दिया गुर पर उपकारी धन धन गुरु का पिता माता।

कै सार नानक जिन को नदर करे से गुरमुख लंगे पार महला तीजा इको सतगुर जागता होर जग सूता मोह प्यास सतगुर सेवन जा गन से जो रते सच नाम गुणतास मनमुख अंध ना चेतनी जन्म मर होहे विनाश नानक गुरमुख तिन्नी नाम त्याया जिनको तुर पूर्व लिखे आस पौड़ी हर नाम हमारा भोजन शक्ति प्रकार जित खाया हमको तृप्त भई हर नाम हमारा पहनन जित फिर नंगे ना होवे होर पहनन की हमारी सरद गई हर नाम हमारा वणज।

पौड़ी जिन उपाय जी तिन हर राखिया अमृत सच्चा नाव भोजन चाखिया तिपत रहे आघाए मिटी पपाखिया सब अंदर एक वरत है तिने विरले लाखिया जन नानक भय निहाल प्रभ की पाखिया श्लोक महला तीजा सतगुरु नो सब को वेखदा जेता जगत संसार डिठे मुक्त ना हो गई जिचर शब्द ना करे विचार हम मैं मैल ना चुकई नाम ना लगे प्यार इक आपे बख्श मलायन दुबदा ताज विकार नानक एक दर्शन देख मर मिले सतगुर हेत प्यार महला तीजा सतगुरु ना सेवे मूर्ख अंध गवार दूजे भाए।

0: मन हर सरनी पड़ रही है।
1: हर दिन कोई मार जीवाल ना सके।
0: मन होए निचिंद निसल होए रही है। उठदियां बहदियां सुतियां सदा सदा हर नाम ते आई है।

इहो सी सोय। सबना दाता एक तू, मानस दात ना होय। जो तिस पावे सो थीए, रन के रुन्ने होय। धरती उपर कोट गाड़, केती गई बजाय। जो असमान ना मावनी, तिन नक नखा पाए।

अत भाई हुक्म भया बाहर घर छोड़िया हिन मह भई पराई नाम दान इशनान ना मन मुख इत तन धूड़ तुमाई मन मानिया नाम सिखाई पाई परहु गुर कै बलिहार जिन साची बूझ बुझाई रहा जग स्यों झूठ प्रीत मन भेदया जन स्यों वाद रचाई माया मगन एहन समग जो है नाम ना लेवै मरै बिख खाई गंदन वहन रत्ता हितकारी शब्दै सुरत ना आई रंग ना राता रस नहीं भेदया मनमुख पत गुआई साध सभा मह सहज ना चाखिया

ना तिस मात पिता सुत बंधक, ना तिस काम ना नारी, अकुल निरंजन अपर परंपर, सगली जोत तुम्हारी, घट घट अंतर ब्रह्म लुकाया, घट घट जोत सबाई।

जुगत सबाय सतगुर सेव पदार्थ पावह छूटह शब्द कमाई सूचै भांडै साच समावै विरले सूचाचारी तंतै कौ परम तंत मलाया।

सर अपसर की सार ना जाने, फिर कीच बड़ाही जीओ, अंतर मैल लोभ बहु झूठे, बाहर ना वो काही जीओ, निर्मल नाम जपो हो सद गुरमुख, अंतर की गत ताही जीओ, पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो हो, सच गुर बचनी फल पाही जीओ, ज्यों पावै त्यों राखो हो हर जीओ, जन नानक शब्द सलाही जीओ, सोठ महला पहला पंच पदे, अपना घर मूसत राख ना साक है, की पार घर जोहन लागा, घर दर राख है, जे रस चाख है, जो गुरमुख सेवक लागा, मन रे समझ कमन मत लागा, नाम वसार अन रस लोभाने, फिर पछताहे अपागा रहाव, आवत को हरख जात को रोवह, एह दुख सुख नाले लागा, आपे दुख सुख भोग पगावै, गुरमुख सो अनरागा, हर रस ऊपर अवर क्या कही है, जिन पिया सो तृप्तागा, माया मोहित जिन एहो रस खोया,

यो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो हो घट घट जोत समोई जियो चल तो ठाक रखो हो घर अपने गुर मिले एह मत हो जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसर सुख हो जियो पीवो हो अपे परम सुख पाई है निज करवास।

प्रभ पाया छबदे हूं मैं मारी गिरही मह सदा हर जन उदासी ज्ञान तत बिचारी सतगुर सेव सदा सुख पाया हर राखिया उर धारी एहो मनुआ दह दिस धामदा दूजै भाई खुआया मनमुख मुगद हर नाम।

इसका अंत ना पाया। पूरे गुरु की सेवा कीनी, अचिंत हर मन वसाया। मन तन निर्मल सदा सुख अंतर, विचों भरम चुकाया। हर का मार्ग सदा पंथ विखड़ा, वो पाए गुर विचारा। हर कै रंग राता शब्दे माता, हम मैं तजे विकारा। नानक नाम रत्ता इक रंगी, शब्द सवारन हारा। सोठ महला तीजा, हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारी। जिचर घट अंतर है सासा, एक पल खिन बिसर है तू स्वामी। जानो बरस पचासा, हम मूड मुगद सदा से पाई। गुर कै शब्द परगासा, हर जियो तुम आपे देहो बुझाई। हर जियो तुद विटोह वारिया सद ही, तेरे नाम विटोह बल जाय रहाओ। हम शब्द मोए शब्द मार जवाले पाई, शब्दे ही मुक्त पाई। शब्दे मन तन निर्मल हुआ, हर वस्या मन आई। शब्द गुरदाता जित मन राता, हर स्यों रहे आसमाई। शब्द ना जान है से अन्ने बोले, से कित आए संसारा। हर रस ना पाया, बिरथा जन्म गवाया। जम है वारो वारा, बिस्ता के कीड़े बिस्ता माहि समाणी। मान मुख मुग्ध गोबारा, आपे कर वेखै मार्ग लाए भाई। किस बिन अवर ना कोई, जो तुर लिखिया सो कोई ना मेटै भाई। करता करे सो होई, नानक नाम वसया मन अंतर भाई। अवर ना दूजा कोई,

आप राखै जो तेरे मन पाणी। तू गुण दाता शब्द पछाता, गुण कह गुणी समाणी। मन मेरे हर जियो सदा संभाल, अंतकाल तेरा बेली होवे, सदा निभै तेरे नाल रहाव। दुष्ट चौंकड़ी सदा कूड़ कमावै, ना बूझै विचारी। निंदा दुष्टी ते किन फल पाया, हरनाक्ष नखह बिदारी। प्रहलाद जन सद हर गुण गावै, हर जियो लए उबारी। आपस कहो

हृदय जग जीवन सद वस्या, तज काम क्रोध अहंकारा, सदा हजूर रविया सब ठाई। हृदय नाम अपारा, जुग जुग बाणी शब्द पछाणी, नाउ मीठा मने प्यारा, सतगुर सेव जिन नाम पछाता, सफल जन्म जाग आया, हर रस चाक सदा मन तृप्तिया, गुण गावे गुणी अगाया, कमल प्रगास सदा रंग राता, अनहद शब्द बजाया, तन मन निर्मल निर्मल बाणी, सच्चे सच समाया, राम नाम की गत कोए ना बूझे, गुरमत हृदय समाई, गुरमुख होवे सो मग पजाने, हर रस रसन रसाई, जप तप संजम सब गुरते होवे, हृदय नाम वसाई, नानक नाम समल है से जन सोहन, दर साचै पत पाई, सोठ महला तीजा दुतुके, सतगुर मिले उल्टी पई पाई, जीवत मरे ता बूझ पाई, सो गुरु सो सिख है पाई, जिस ज्योति ज्योत मलाई, मन रे हर हर सेती लिव लाए, मन हर जप मीठा लागे पाई, गुरमुख पाए हर थाए रहाउ, बिन गुर प्रीत ना उपजै पाई, मनमुख दूजै पाए, तोह कुटह मनमुख कर्म करह पाई, पल्लै किशु ना पाए, गुर मिलै नाम मन रविया पाई, साची प्रीत प्यार सदा हर के गुण रवै पाई, गुर कै हित अपार आया सो परवान है पाई, ये गुर सेवा चित लाए, नानक नाम हर पाई पाई, गुर शब्दी मेलाए, सोठ महला तीजा घर पहला, तिही गुणी त्रे भवन व्यापिया पाई, गुरमुख बूझ बुझाए, राम नाम लग छूटी है पाई।

तेरा मन वसै पाई, सदा हर के गुण गाए रहाउ। नामै ते सब उपजे पाई, नाए विसरै मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है पाई, सूते गए मोहाए। गुरमुख जागे ते उभरे पाई, भवजल पार उतार। जग मैं लाहा हर नाम है पाई, हिरदै रखिया उरतार। गुर सरनाई उभरे पाई, राम नाम लिवलाए। नानक नाओं बेड़ा नाओं तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाए। सोठ महला तीजा घर पहला, सतगुर सुख सागर जागे अंतर। होर थै सुख नाई, हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया। मर जन मैं रोवै ताही, प्राणी सतगुर सेव सुख पाए।

वावह। हर रस साधना आया संध्या तर्पण करह गायत्री। बिन बूझे दुख पाया सतगुर सेवे सो वड भागी। जिसनो आप मलाई हर रस पी जन सदा तृप्तासे। विचों आप गवाई एहो जग अंधा सब अंध कमावे। बिन गुर मग ना पाई नानक सतगुर मिले ता अखी वेखे। करे अंदर सच पाए सोठ महला तीजा। बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा। जुग चारे परमाई हम दीन तुम जुग जुग दाते। शब्दे देह बुझाई हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। सतगुरु दाता मेल मलाव हो हर नाम देव हो आधारे रहाओ। मनसा मार दुबदा सहज सुमानी। पाया नाम अपारा हर रस चाख मन निर्मल होआ। गिल बिख काटन हारा शब्द मरहो फिर जीव हो सद ही। ता फिर मरन ना होई अमृत नाम सदा मन मीठा। शब्दे पावे कोई दाते दात रखी हाथ अपने। जित पावे तिस देई नानक नाम रते सुख पाया। दरगाह जापह से सोठ महला तीजा। सतगुर सेवे ता सहज धुन उपजे। गत मत तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या। नामे नाम समाई

चौथा पद कीन्है, राम नाम सुख होई, त्रै गुण सब तेरे, तू आपे करता, जो तू करह सो होई, नानक राम नाम निस्तारा, शब्दे हौ मैं खोई, सोठ महला चौथा घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आपे आप वरतदा प्यारा, आपे आप अपाह, वणजारा जग आप है प्यारा, आपे साचा साहु, आपे वणज व्यापारिया प्यारा।

आपे पत्तल पातनी प्यारा, आपे पार लंगा, आपे सागर बोहे था प्यारा, गुर खेवट आप चला, आपे ही चढ़ लंगदा प्यारा, कर चोज वेखे पातशाह, आपे आप दयाल है प्यारा, जन नानक बख्शमला, सोरठ महला चौथा चौथा, आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज, आपे खंड आपे सब लोए,

कर दया अमृत मुख चोए रहाउ। आपे जल थल सबत है प्यारा, प्रभ आपे करे सो होए। सब नारिजक समाह दा प्यारा, दूजा अवर ना कोई।

प्यारा तुन आप बजाए आपे आपे जोगी पुरख है प्यारा आपे ही तप तापे आपे सतगुर आप।

जन नानक हर रस त्रापे सोठ महला चौथा आपे कंडा आप तराजी प्रभे आपे तोल तलाया आपे साहो आपे वणजारा आपे वणज कराया आपे धरती साजियन प्यारे पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर हर त्याए सुख पाया हर हर नाम निदान है प्यारा गुरपुरै मीठा लाया रहाउ आपे धरती आप

आप दया कर रखदा प्यारा आपे सुगड़ सुजान मेरे मन जप राम नाम निशान सत संगत मिल त्याए तू हर हर

प्यारी जप नानक भगत समाहा सोठ महला चौथा दो तुके अनक जन्म विछड़े दुख पाया मन मुख कर्म करे अहंकारी साधु पर सत ही प्रभ पाया गोविंद शरण तमारी गोविंद प्रीत लगी अत प्यारी जब सत संग भये साधु जन हिरदय मिलिया शांत मरारी रहाओ तू हिरदय गुपत वस है दिन राती तेरा भाव ना बुझह गवारी सतगुर पुरख मिलिया प्रभ प्रगटिया गुण गावे गुण विचारी गुरमुख प्रगास भया शांत आई दुरमत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म कीन सुख पाया सत संगत पुरख तुमारी पुरख है पुरख मिलिया गुर पाया जिनको कृपा भई तुमारी नानक अतुल सहज सुख पाया अन दिन जागत रह बनवारी सोरठ महला चौथा हर स्यों प्रीत अंतर मन भेदिया।

हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल भये है, तृष्णा शब्द बुझाई, सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचार चरै तां सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तन भीतर, तां भ्रम काटिया जाई, मेरे गोबिंद अपने जन को देह वड़ियाई।

साध शर्म छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रहे फिर आवत बारो बारा रहाओ ओहो जो परम पलावा कहियत तिन मह उर्जियो सगल संसारा पूर्ण भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा निंदो नाही काहू बात है एहो खसम का किया जाको कृपा करी प्रभ मेरे मिल साध संगत नाउ लिया पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सबना करत उदारा कहो नानक गुर बिन नहीं तरिया एहो पूरन तत बिचारा सोठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचारे राम नाम तत सारा किल बिख काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा हर रस पीवो हो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा तृप्त मन पावे साधु अमृत बाणी रहाओ मुकत भुगत जुगत सच पाई है सर्व सुखा का दाता अपने दास को भगत दान देवे पूर्ण पुरख विधाता सरवणी सुनिए रसना गाइए हृदय त्याइए सोई करण कारण समर्थ स्वामी जाते बिरथा ना कोई वड्डे भाग रतन जन्म पाया।

जोगे अंतर गुरु नानक की वडियाई। चौठ महला पंजवां घर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी।

सोहृदय गुरदया रहाउ। जोए दूत मोहे बहुत संतावत, ते भयानक भया करह बेनती राख ठाकुर ते। हम तेरी शरण आया जह भंडार गोविंद का खुलिया, जेह प्राप्त ते लया एक रतन मोह को गुर दीना। मेरा मन तन शीतल थिया एक बूंद गुर अमृत दीनो, ता अटल अमर नाम हुआ भगत भंडार गुरु नानक कौ सौंपे। फिर लेखा मूल ना लया चौथ महला पंजवा, चरण कमल स्यों जाका मन लीना। से जन तृप्त अघाई गुण अमोल जिस हृदय ना वस्या, ते नर तृष्ण त्रिखाई हर अरादे अरोग अनदाई। जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाओ। जेह जन ऊट गई प्रभ तेरी से सुखिये प्रभ सरने, जेह नर बिसरिया पुरख बधाता ते दुखिया मह गणने। जेह गुरमान प्रभु लिवलाई ते महा आनंद रस करिया, जेह प्रभु बिसार गुर ते बेमुखाई। ते नरक घोर मह परिया जित को लाया तित ही लागा, तैसो ही वरतारा नानक सह पकरी संतन की। हृदय भये मगन चरनारा सोठ महला पंजवा, राजन मह राजा उरझायो मानन मह अभमानी, लोभन मह लोभी लोभायो। त्यों हर रंग रते ज्ञानी हर जन को यही सुहावै, पेख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ। अमलन स्यों अमली लपटायो भूमन भूम प्यारी, हीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी। विद्या मह विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पाव है, जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गाव है। जैसी भूख तैसी का पूरन सगल कटा का स्वामी, नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी। सोठ महला पंजवा, हम मैले तुम उजल करते।

हम भलो ना जाने। तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बधाते। तुम राखो अपने बाला, तुम निदान अटल सुल्तान। जी जंत सब जाचे कहो नानक, हम इह हवाला, राख संतन कै पाछै।

मांगन कौ सगले दान देहे प्रभ पान हिन मह अवर हिन मह अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूडो गूडो गहर गंभीरो ऊंचो अगम अपारी साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद भया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सूरठ महला पंजवां हम संतन की रेन प्यारी।

संतन सिंह हम लाहा खाटिया हर भगत परे पंडारा संतन मोह को पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा धर्म राय अब कहां करे गू जो फाट्यो सगलो लेखा महा आनंद भये सुख पाया संतन कै प्रसादे कहो नानक हर सिंह मन मानिया रंग रते बिस्मादी।

तव आनंद मंगल सुख पाई है, काल ना भान अंतर बिद जाने, ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम एहो मनुआ, अकाल मूत गुरदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवी।

मेरा अंध मंगल बिसरामा मन बाँचत फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा इहां सुख आगे मुख उज्जल मिट गए आवन जाने निरपौ भए हिरदय नाम वसिया अपने सतगुर कै मन पानी उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द भ्रम भागा कहो नानक ताके पूर करम्मा जाका गुर चरणी मन लागा चौथ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु ना पाईए पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याईए सिमरहो हर हर नाम परानी बिनसै काची दे अज्ञानी रहाउ मृग तृष्णार सुपन मनोरथ ताकी कछ ना वडाई राम भजन बिन काम ना आवस संग ना काहू जाई हौ हौ करत बेहाई।

मोह पूर्ण अविनाशी काम क्रोध बिख जारे महा बिखम अग्न को सागर साधु संग उधारे पूरा गुर मेत्यो परम अंधेरा पाज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अगाई जत कत पूर रहो परमेश्वर कत आवे कत जाई जप तप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया तां की पूर्ण काला काल कलेश मिटे दुख सगले काती जम की पासा कहो नानक प्रभ कृपा तारी मन तन भय बिगा

थीवै विघ्न बनासन सब दुख नासन गुर चरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से फल पाए हर की कथा सुहेली आदि अंत मद नानक को सो प्रभ हो आ बेली सूरठ महला पंजवा पंच पदा बिन सह मोह मेरा अर तेरा बिन सह अपनी धारी संतो हो इहा बताव हो कारी जित हऊ मैं गर्भ नवारी रहाओ सर्ब भूत पार ब्रह्म कर मान्या होवा सगल रे नारी देखियो प्रभ जीओ अपने संगे चूकै पीत परमहारी औखद नाम निर्मल जल अमृत पाईऐ गुरु द्वारी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी सोठ महला पंजवा कर दूजा दुख पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह बै संतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह जोत समाणी कट कट माधो जिया संतो हो कट कट रहे समाहेउ पूर्ण पूर रहे सर्ब मह जल थलर मैया आहेउ रहाउ गुण निदान नानक जस गावे सतगुर भरम चुकायु सर्ब निवासी सदा अलेपा सब मह रहे समायु सूरठ महला पंजवा जा कै सिमरन होए आनंदा बिन सह जन्म मरण भय दुखी।

गुर पूरा भेटियो वड भागी जन नानक कतह ना धावहु सूरठ महला पंजवा जाकै सिमरन सब कछ पाई है बिरथी काल ना जाई तिस प्रभ त्याग अवर कत राचुहु जो सब मह रहे आसमाई हर हर सिमरहो संत गोपाला साध संग मिल नाम त्यावहु पूर्ण होवै काला रहाउ सार समालै नित प्रत पालै प्रेम सहत गल लावै कहो नानक प्रभ तुमरे बिसरत जगत जीवन कैसे पावै सूरठ महला पंजवा अबनासी जीयन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निधान भगतन कहो बर्तन बिरला पावै कोई मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई जाकी सरन पया सुख पाई है बहुड़ दुख ना होई रहाओ वड भागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई तिन की धूर नानक दास बांचै जिन हर नाम हृदय परोई सूरठ महला पंजवा जन्म जन्म के दुख निवारै सूका मन साधारै दर्शन भेटत होत निहाला हर का नाम बीचारै मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देवै काटै जम की फंदा रहाउ समरथ पुरख पूर्ण बेधाते आपे करनै हारा अपना दास हर आप उभारिया नानक नाम अधारा सूरठ महला पंजवा अंतर की गत तुम ही जानी तुझ ही पाहे नबेरो बख्श लै हो साहिब प्रभ अपने लाख खते कर फेरो।

जंत प्रभ सगल उधारी दर्शन देखण हारी गुरपूरे की अचरज वडियाई नानक सद बलिहारी चौठ महला पंजवा संचन करो नाम धन निर्मल थाती अगम अपार बिलस बनोद आनंद सुख माणु खाए जीव हो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सच बोहित चढ़ लंघो बिक संसार रहाव पय कृपाल पूर्ण अविनाशी आपह कीनी सार पेख पेख नानक बिगसानु नानक नाही सुमार चौठ महला पंजवा गुरपूरै अपनी कल धारी सब घट उपजी दया आपे मेल वडाई कीनी कुसल खेम सब भया।

भया मन उद्दम नाम रतन जस गाई मिट गई चिंता सिमर अनंता सागर तरिया पहाई हृदय हर के चरण वसाई सुख पाया सहज धुन उपजी रोगा घाण मटाई रहा क्या गुण तेरे आख बखाना कीमत कहन ना जाई नानक भगत भये अविनाशी अपना प्रभ भया सहाई।

पाप रोग गए गुरबचनी, मन इच्छे फल पाया, मेरा गुर पूरा सुखदाता, करण कारण समरथ स्वामी, पूर्ण पुरख बधाता रहाउ, नंद बिनोद मंगल गुण गावहु, गुरु नानक पए दयाला, जय जयकार पए जग भीतर, हुआ पार ब्रह्म रखवाला।

ताप गवाया भाई ठांड पई संसार अपने जी जंत आपे राखे जमह कियो हटतार हर के चरण हृदय उर तार सदा सदा प्रभ सिमरिय भाई दुख किल बिख काटन हार रहाओ तिसकी सरणी उबरै भाई जिन रखिया सब कोय करन कारण समरथ सो भाई सच्चे सच्ची सोए नानक प्रभु त्याइए भाई मन तन शीतल होए चौठ महला पंजवा संतो हर हर नाम त्याय सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप गवाया।

हर का नाम आधारो नानक पातराखी परमेश्वर उदरिया सब संसारू सोठ महला पंजवा मेरा।

पूरी सब राखी हुए सर्व दयाल रहाउ। अनदिन नानक नाम त्याहे जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखे ज्यों बारिक पित माता। सोठ महला पंजवा घर तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया सिख दारू नह पति आया। उमराव हुआ गया तेरा मिल राजन रामन बेरा अब ढूंढन कतहु ना जाई गोविंद भेटे।

मन्नै सर्ब थान को राजा तह अनहद शब्द अगाजा तिस पह क्या चतराई मिल नानक आप गुआई चौठ महला पंजवां हिरदय नाम वसायो घर बैठे गुरु ते आयो हो।

ग्रह आए, आनंद मंगल सुख पाए, संतोह राम नाम निस्तरी है, उठत बैठत हर हर त्याई है, आनंदिन सो कृत करिए रहाओ, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड़।

प्रभ अपने जिन पूरे कल राखी जी जंत सब पये पवित्रा सतगुर की सच साखी बिघन बनासन सब दुख नासन सतगुर नाम दिरड़ाया होए पाप पये सब पावन जन नानक सुख घर आ।

पंजवा पार ब्रह्म निभाई पूरी काई बात न रही आयूरी गुरु चरण लाए निस्तारी हर हर नाम समारी अपने दास का सदा रखवाला कर कृपा अपने कर राखे मात पिता ज्यों पाला रहाओ वडभागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मटाया हर

कर कृपा अंतर जामी, दास नानक सरन स्वामी। सूरठ महला पंजवां, गुरपुरै चरनी लाया,

प्रभराव रहे आपर पूरी हेम कुशल पया इस नाना पार ब्रह्म वित्तो कुरबाना गुर के चरण कवल रिद तारी विघ्न न लागे तिलका कोई कार्य सगल सवारी रहाऊ मिल साधु दुर्मत खोई।

कमाती गुण गोबिंद नित गाइय साध संग मिल त्याई है मन पाशत फल पाई गुरपुरा हृदय त्याई गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे।

सर्व गुणा सुखदायो मंदर चरके पंथ निहारो नैन नीर भर आयो हाँ हाँ पीत भयो है बीचो सुनत देश निकटायो पां बीरी के पात पर दो।

जैसा बालक पाए सुपाई लख अपराध कमावे कार्य उपदेश चिड़के बहु भांति।

सब भेद जाने तां किस पह आख सुनाई है कहने कथन ना पीजे गोविंद हर पावे पैजर खाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है।

सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कारज सगले सांथे जग जीवन नाम तुम्हारा गुर पूरे दियो उपदेसा जप पौजल पारे उतारा रहाओ तू है मंत्री सुन है प्रभ तू है सबके

आप प्रभु स्वामी पात मत कीनी पूरी सदा सदा नानक बलिहारी बांचो संतां तूरी सोठ महला पंजवां गुरपुरा नमस्कारी प्रभ सबे काज सवारी हरे अपनी किरपा धारी प्रभ पूरन पैज सवारी अपने दास को पयो सहाई सगल

आओ प्रभ की अकथ कहानी तन बोले अमृत बाणी नानक दास बखाणी गुरपुरे ते जानी सोरठ महला पंजवां आगे सुख गुर

पाठ करे मन निर्मल पूरन पुरख विधाता रहाउ नानक प्रभे अविनाशी ताकी सेव न बिरथी जासी।

मिल साद संग हर प्याया, आठ पहर अराध्यो हर हर, मन चिंदिया फल पाया रहाउ, परा पूर्बला अंकुर जागया, राम नाम मन लागया, मन तन हर दर

सो प्रभ अंतर जामी रहाओ करतब सब सवारी प्रभ अपना बिरद सुमारी पतत पावन प्रभ नामा जन नानक सद कुर्बाना सोठ महला पंजवां।

रहाय, विघ्न गए हर नाय। मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला, अरदास सुनी भगत अपने की, सब जी

हर हर हर अरादु हर अराद सबू किश पाई है कार्ज सगले साधु रहाव प्रेम भगत प्रबलागी सो पाए जिस वड भागी जन नानक नाम ते आया इन सर्व सुख

पन्ना आनंद कर है नर नारी हर हर प्रभु कृपा तारी संतो हो सुख हो आ सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रव रहे।

होता। जो सिवरै किसकी गत हुआ, उधरह सगले कोटा रहाउ। संत संग जस गाया, एह पूरन हर तन पाया। कहो नानक आप मटाया, सब पार ब्रह्म।

नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बणत बनाई सोठ महला पंजवा प्रभ अपना हृदय त्याई कर सही सलामत आई संतोख भया संसार।

कर साध संगत सिमर माधो होहे पतत पनीत काल बयाल ज्यों परयो डोले मुख पसारे मीत आज काल फुन तोहे ग्रस है समझ राखो।

पूरन सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जोग हारियो।

नहीं। सोठ महल्ला नौवा मन रे कौन कमात तै लीनी, पर दारा निंदिया रस रचियो राम भगत नह कीनी। रहाओ मुकत पंथ जानियो तै नाहन, धन जोरन कौ ताया अंत संग काहू नहीं दीना। बिरथा आप बंधाया ना हर भजियो, ना गुर जन सेवियो, नह उपजियो कछ ज्ञाना। घट ही माहे निरंजन तेरे तै खोजत उदयाना। बहुत जन्म भरमत तै हारियो, अस्थिर मत नहीं पाई। मानस दे पाए पद हर भज ना।

पुदरी ता को जस पुर धारु रहाउ अतल पयो त्रू जा कह सिमरन हर निरपय पद पाया दुख हरता एह विद को स्वामी तैं काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निध

तिमर मोह मन रहो उरजाई रहाओ सगल जन्म परम ही परम खोयो नह अस्थिर मत पाई विख्या सकत रहो निस्बासुर नह छूटी अधमाई साध

होई। सगल जगत अपने सुख लागियो, दुख में संग ना होई रहाओ। दारा मीत पूत संबंधी, सगरे तन सिउ लागे। जब ही निर्तन देखियो नर कौ, संग साड सब भागे। कहो कहां या मन बौरे को, इनस्यों ने हो लगायो। दीनानाथ सकल पै पंजन, जस ता को बिसरायो। स्वान पूछ ज्यो भयो ना सूदो, बहुत जतन मैं कीनो। नानक लाज

तू ठह लागे जन्मे अकारत खोयो कर पर पंच उदर निज पोखयो पश की न्यायी सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया हाथ बिकाना उर्ज रहे हो बिखियन संग पौरा नाम रतन बिसराना रहे हो अचेत ना चेते हो गोविंद बिरथा औध सरानी कहो नानक हर बिरद पछानो।

हरख सोग ते रह नियारो नाहे मान अपमाना आसा मनसा सगल त्यागे जग ते रह निरासा काम क्रोध जेह परसै नाहन तेह घट ब्रह्म निवासा गुर कृपा जेह नर को कीनी तेह एह जुगत पछानी नानक ली।

बहुत हित जासियों सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर भागी। एह बिद को व्यवहार बनियो है जां स्यों नेहो लगायो। अंत बार नानक बिन हर जी को काम ना आयो। सोठ माला पहला कर पहला अष्टपदिया चौतुकी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुगदा ना पढ़ो हर बिन होर ना पू।

बिंद सुख वास्ती नाम बसै सुख पाई जिहवा नेतर सोतर सच राती जल बूजी तुझ है बुझाई आस निरास रह बैरागी।

पहाय। मनमुख जंत दुख सदा निवासी, गुरमुख देव दयाय। अपर अपार अगम अगोचर, कहने कीम ना पाय। सुन संवाद महा परमार्थ, तीन पवन पत नाम। मस्तक लेख जिया जग जोनी, सिर सिर लेख सहाम। कर्म सुकर्म कराए आपे, आपे भगत दृढ़ाम। मन मुख झूठ लह पैमान, आपे ज्ञान अगाम। जिन चाखिया से साध जानन, ज्यों गुंगे मिठियाई। अकथे का क्या कथिये भाई, चालो सदा रजाई। गुरदाता मेले तां मत होवे, निगुरे मत ना काई। ज्यों चलाए त्यों चाल है भाई, होर क्या को करे चतराई। एक भरम भला एक भगती राते, तेरा खेल अपारा। जित तुद लाए तेहा फल पाया, तू हुक्म चलावन हारा। सेवा करी जे कछ होए अपना, जियो पिंड तुम्हारा। सतगुरु

प्यारी अमृत रसन हरे बूढ़े पारे पै बिना प्यारी तारे नदर करे पी तू है सलाहना प्यारे पी तेरी सलाह बिन बोहित पै डुबिया।

पुरतार सोरठ महला पहला पहला दुतुकी तू गुण दातो निर्मलो पाई निर्मल ना मन होय हम अपराधी निर्गुणे पाई।

पाखंडिया भाई मन तन नाम वसेख रहाउ भिख माया चित मोहया भाई चतराई पत खोय चित मह ठाकुर सच वसै भाई जे गुर ज्ञान समोय रूड़ो रूड़ो आखिय भाई रूड़ो लालच लूल जे मन हर स्यों बैरागी है भाई दर कर साच अपूल पाताली आकाश तू भाई धर कर तू गुण ज्ञान गुर मिले सुख पाया भाई चूका मनहु गुमान जल मल काया माजी है भाई पी मैला तन होए ज्ञान महारस नाइए भाई मन तन निर्मल होए देवी देवा पूजिए भाई क्या मांगो क्या दे पाहन नीर पखाली है भाई जल मैं बूट है ते गुर बिन अलख ना लखी है भाई जग बूटे पत खोए मेरे ठाकुर हाथ वडाइया भाई जय भावे तै दे बैयर बोले मीठली भाई साच कह पिर पाए बिरह बेदी सच वसी भाई अदक रही हर नाय सब को आखे अपना भाई।

सदा मन वस्या सब काज सुवारन हारा उन्ना की रीस करे सो बिगुच्चे जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मन मुख भौंक मोए बिललाई आवह जावह ठौर ना पावह दुख मह दुख समाई गुरमुख होवै सो अमृत पीवै सहजे साच समाई बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़ै जे अनेक कर्म करे अधिकाई वेद पढ़े तै वाद बखाणै बिन हार पत गवाई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी भज सूत है गुर सरनाई जिन

जिस प्रतीत न आवे भाई सो जियड़ा जल जाओ। बहु गुण मेरे साहिब भाई हौ तिसके बल जाओ। ओ निर्गुण यारे पालदा भाई देन थावे थाओ। रिजक संभाहे सास सास भाई गूड़ा जाका नाओ। जिस गुर साचा पेटी है भाई पूरा तिस करमाओ। तिस बिन घड़ी ना जीवी है भाई सर्ब कला भरपूर। सास ग्रास ना विसरै भाई पेखों सदा हजूर। साधु संग मिलाया भाई सर्ब रहया भरपूर। जिन्ना प्रीत ना लगिया भाई से नित नित मर दे चूर। अंचल लाए तराया भाई भौजल दुख संसार। कर कृपा नदर निहालिया भाई कीतोन अंग अपार। मन तन शीतल होया भाई भोजन नाम आधार। नानक तिस शरणागति भाई जे किल बिख काटन हार। चोरठ महला पंजवां। मात गर्भ दुख सागरो प्यारी तैं अपना नाम जपाया। बाहर काड बिख पसरिया प्यारी माया मोह वधाया। जिसनों कीतो कर्म आप प्यारी

हार प्यारे अंतरजामी एक रहाओ कोट जन्म भ्रम आया प्यारे अनक जोन दुख पाई साचा साहिब विसरिया प्यारे बहुती मिलह सजाई जिन पे तै पूरा सतगुरु प्यारे ते लागे साचे नाई तिन्ना पिछे छुटिया प्यारे जो साची सरनाई मिठा करके खाया प्यारे तिन तन की तारोग कौड़ा हुए प्रतिष्ठिया प्यारे तिस्ते उपजिया सोग भोग पुंचाए उलायन प्यारी उतरै नहीं वजोग जो गुरमेल उधारिया प्यारी तिन तुरे पया संजोग माया लालच अटिया प्यारी चेतना आवै मूल जिन तू विसरह पार ब्रह्म स्वामी से तन होए धूड़ बिललाप करह बहु तेरिया प्यारी उतरै नाही सूल जो गुरमेल सुआरिया प्यारी तिनका रहया मूल साकत संग ना कीजई प्यारे जे का पार वसाए जिस मिले हर विसरै प्यारी सो मोह काले उठ जाए मन मुख ढोई नह मिले प्यारी दरग

प्यारी, एक ना चली नाल, जो बेमुख गोबिंद ते प्यारी, तिन कुल लागे गाल, हुंदी वस्त ना जातिया प्यारी, कूड़ ना चली नाल, सतगुर जिना मलाय उन प्यारी, साचा नाम समाल, सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारी, जिसनो नदर करे अनगिन कीर्तन गुण रवै प्यारी, अमृत पूर भरे दुख सागर तिन लंघिया प्यारी, भवजल पार परे जिस भावै तिस मेल लह प्यारी, सेई सदा खरे समरथ पुरख दयाल देव प्यारी, भगतां तिस का तान तिस सरनाई टह पए प्यारी, जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारी, मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरै प्यारी, नानक सद कुर्बान सोरठ महला पंजवां, घर दूजा अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल पुअंगम साधे पंच जना स्यो संग ना छुटकियो, अधिक हम बुद्ध बाधे प्यारे, इन बिद मिलन ना जाई, मैं किए कर्म अनेका।

कर पाती रहे हो, नग्न फिरे हो बन माही, तट तीरथ सब धरती भ्रम्यो, डुबदा छुटकै नाही, मन कामना तीरथ जाए बस्यो, सिर करवत तराई, मन की मैल ना उतरै एह बिद जे

नानक तिस भयो परापत जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दीन।

तोरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल ना कत मन जीवै सच्चा सोए ससुरै पेयै पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावै पिर संग सदा शिंगारी नाओ मन कदे

सज्जना ये गुरमुख मिल है सुपाय सतगुर का पाना अन दिन कर है हे सच रहे समाय दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिय है जे अवमान कर है वेकार मन मुख आप स्वार्थी कार्ज ना सकह सवार नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई ना मेटन हार पौड़ी तुदे आपे जगते अपाए कै आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया विच हों मैं लेखा मंगी है फिर आवे जाया जिन्ना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलिहारी गुर अपने सदा सदा कुमाया सलोक महला तीजा।

आवै जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया तंदा करत्या निफल जन्म गवाया सुख दाता मन ना वसाया नानक नाम तिना को मिलया जिनको तुर लिख पाया महला तीजा घर ही मह अमृत भरपूर है मन मुखा साधना पाया ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने भ्रम दा भरम पलाया अमृत ताज बिक संग्रह करत आप खवाया गुरमुख विरले सोजी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया तन मन सीतल होया

बिरथा जन्म गवाया, अमृत एको शब्द है, नानक गुरमुख पाया पौड़ी, सो हर पुरख अगम है, कहो कित बिद पाइये, तिस रूप नारेख अदृष्ट कहो, जन क्यों ते आइये, निरंकार निरंजन हर अगम, क्या कह गुण गाइये, जिसे आप बुझाए आप, सो हर मार्ग पाइये, गुरपूरे वेखा लिया, गुर सेवा पाइये। श्लोक महला तीजा, ज्यों तन कोलू पीड़िए, रतना पूरी दे, जियो वंजे चौखनिए, सच्चे संदड़े ने, नानक मेल ना चुकई।

ज्यो मजी ठह कपड़े रंगे पी पाहे, नानक रंग ना उतरै ब्याह ना लगे के पौड़ी। हरे आप वरतै आप, हरे आप बुलाए दा, हरे आपे सिठ सवार सिर तंदै लाए दा। इक ना भगती लाए इक आप खुआए दा, इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पाए दा। जन नानक नाम त्याए गुरमुख गुण गाएदा। श्लोक महला तीजा, सतगुर की सेवा सफल है।

आए। इस जग में नाम अलभ है, गुरमुख वसै मन आए। नानक जो गुर सेव है अपना, हो तिन बलिहार जाओ। महला तीजा, मनमुख मन अजित है, दूजे लगे जाए। तिसनु सुख सुपने नहीं, दुखे दुख व्याए। कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके, सिद्ध समाध लगाए। एहो मन वस न आवे, थके कर्म कमाए। भेख धारी भेख कर थके, हट हट तीरथ नहाए। मन की सार ना जाननी, हमें परम पलाए। गुर प्रसादी भव पया, वडभाग वस्या मन आए। पै पय मन वस हुआ, हमें शब्द जलाए। सच रति से निर्मले, ज्योति ज्योत मलाए। सतगुर मिले ना पाया, नानक सुख समाए। पौड़ी।

गुरमुख आनंद ने उस्तत हुआ, मनमुख भरम सहसा हुआ, अंतर चिंता नींद ना सोए, ज्ञानी जाग है सब है सुपाए, नानक नाम रत्या बल जाओ पौड़ी, से हर नाम त्याव है जो हर रत्या, हर एक त्याव है एक, इको हर सत्या, हर इको वरत एक, इको उत्पत्या, जो हर नाम त्याव है तिन दर सट कत्या, गुरमति देव आप गुरमुख हर जपया, सलोक महला तीजा, अंतर ज्ञान ना आय, जित किस सोजी पाए, ऋण जिठा क्या सलाही है, अंधा अंध कमाए, नानक शब्द पछाणी है।

लाभ सदा खटिया नाम अपार विख विच अमृत प्रगटिया कर्म पिया मनहार नानक सच सलाही है धन सवारन हार पौड़ी जिन्ना अंदर कूड़ वरतै सच ना पावई जे को बोले सच कूड़ा जल जावई कूड़े आरी रजै कूड़ जू विस्ता काग खावई जिस हर होए कृपाल सो नाम त्यावई हर गुरमुख नाम अराध कूड़ पाप लह जावई सलोक महला तीजा सेखा चौ चकिया चौ आया एहो मन इकत घर आन एहड़ तेहड़ छड तू गुर का शब्द पछाण सतगुरे अगे तै पौ सब किश जाने जान आसा मन सा जलाए।

लायु अंत दुख पहुताय आई अंदरों बाहरों अंधिया सुध न काई पाई पंडित तिनकी बरकती सब जगत खाए जो रत्ते हर नाय जिन गुर कै शब्द सलाहया हर स्यों रहे समाय पंडित दूजै पाए बरकत ना होवे।

पावड़ी हर सज्जन मेल प्यारी मिल पंथ दसाई जो हर दसे मेता किस हों बल जाई गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम त्याई हर सेवी प्यारा नित सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुर तिस जिन सोजी।

आई नानक गुरमुख मिलै वडियाईया जे आपे मेल मलाए पौड़ी हर रसना हर जस गावे हरी सुहावनी जो मन तन मुख हर बोले सा हर पावनी जो गुरमुख चखे साध सा त्रिपतावनी गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी जिस होवे आप दयाल सा सत गुरु गुरु बुलावनी श्लोक महला तीजा हस्ती सिर ज्यों अंकस है अहरण ज्यों सिर दे मन तन आगे राख कै ऊभी सेव करे यों गुरमुख आप निवारी है सब राज सृष्ट काली नानक गुरमुख बुझी है जा आपे नदर करी महला तीजा जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते परवान नानक कुल उदार है अपना दरगाह पावह मान पौड़ी गुरमुख सखियां सिख गुरु मेलाइया एक सेवक गुरपास एक गुर कार लाइया जिन्ना गुर प्यारा मन चित तिन्ना भाओ गुरु देवाइया गुर सिखा एको प्यार गुर मित्ता पुत्ता पाइया गुर सतगुर

भाई। सलोक महला तीजा, बिन कर्म नाओ ना पाई, पूरे कर्म पाया जाय। नानक नदर करे जे अपनी, ता गुरमत मेल मलाई। महला पहला, एक दज है एक दबी है, एक ना कुत्ते खाए। एक पानी विच उसती है, एक भी फिर हसन पाए। नानक एव ना जापई, किथे जाए समाहे। पौड़ी तिनका खादा पैंदा, माया सब पवित है। जो नाम हर राती, तिनके घर मंदर महल सराई सब पवित है। जिनी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए बरसाती। तिनके तुरे जीन खुरगीर सब पवित है। जिनी गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाती। तिनके कर्म धर्म कार्य सब पवित है। जो बोलह हर हर राम नाम हर साती। जिनके पोते पुन है, से गुरमुख सिख गुरु पह जाती। सलोक महला तीजा, नानक नाम कुथिया। हलत पलत सब जाय, जप तप संयम सब हिरल।

पिछै सुख नहीं, मर जम्मै वार वार, तृष्णा कदे ना बुझई, दुबदा हुए खुआर, मुह काले तिना निंदका, तित सच्चै दरबार, नानक नाम विहूनिया, ना उरवार ना पार पौड़ी, जो हर नाम ते आईंदे, से हर हर नाम रते मन माही, जिन्ना मन चेते एक अरादया, तिना एक सबेन दूजा को नाही, से पुरख हर सेम दे, जिन तुर मस्तक लेख लखाही, हर के गुण नित गाम दे, हर गुण गाए गुणी समझाही, वड्याई वड्डी गुरमखा, गुरपूरै हर नाम समाही, सलोक महला तीजा, सतगुर की सेवा गाखड़ी, सिर तीजै आप गवाए, शब्द मरह फिर ना मरह, ता सेवा पवै सब थाए, पारस परसै पारस हुवै, सच रह लिवलाए, जिस पूर्ब होवै लिखिया, किस सतगुर मिलै प्रभ आए, नानक गणतै सेवक ना मिलै, जिस बख्शे सो पवै थाए, महला तीजा, महल कुमहल ना

है अचिंत करे जिस दात नानक गुरमुख हर नाम मन वसै एहा सिद्ध एहा करमात पौड़ी हम ढाडी हर प्रभ खसम के नित गावह हर गुण क्षमता हर कीर्तन करह हर जस सुनह तिस कवला कंता हर दाता सब जगत पिखारिया मंगत जन जनता हर देव हो दान दयाल हुए विच पाथर कृम

सतगुर का शब्द सुनना जागियो, अंतर ना उपजियो चाओ, शरीर जलो गुण बाहरा, जो गुर कार ना कमाई, जगत जलंदा डेठ मैं, हम मैं दूजे पाई, नानक गुर सरनाई उपरे, सच मन शब्द ते आए।

नाम उपजे किसना भुख सब जाय, नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाए। महला चौथा, सतगुरु पुरख जे मारिया ब्रह्म भ्रमिया कर छोड़ गया, उस पिछे वजे पकड़ी मुंह काला आ गै भया। उस अरल बरल मुंह निकले नित झगू सुतदा मोआ, क्या होए किसे ही दह कीते जां तुर किरत उस दा एहो जेहा पया। जिथे ओह जाए तिथे ओह झूठा, कूड़ बोले किसे ना पावे। वेखो भाई वडियाई हर संतो स्वामी अपने की, जैसा कोई करे तैसा कोई पावे। एहो ब्रह्म विचार होए दर साचे, अगों दे जन नानक आख सुनावे। पौड़ी, गुर सच्चे बद्दा थे हो रखवाले गुर दित्ते, पूर्ण होई आस गुर चरनी मन रत्ते। गुर किरपाल बेअंत अवगुण सब हते, गुरे अपनी किरपा धार अपने कर लिते। नानक सद बलिहार जिस गुर के गुण इते। सलोक महला पहला, तां की रजाए लेख्या पाए, अब क्या की जय पांडे। हुक्म होआ हासल तदे होए लिपड़िया, हंड है जी कमांदे। महला दूजा, नक नथ खसम हथ किरत धके दे, जहां दाने तहां खाने नानका सच हे। पौड़ी, सबे गल्ला आप हाट बहालियोन, आपे रचन रचाए आपे ही काल्योन। आपे जंत उपाए आप प्रतपाल्योन, दास रखे कंठ लाए नदर निहाल्योन। नानक भगतां सदा आनंद पाओ दूजा जाल्योन। सलोक महला तीजा, ए मन हर जी त्याए तू, एक मन एक चित पाए। हर किया सदा सदा वडियाईया दे ना पछोताए। हौ हर कै सद बलिहार ने जित सेवै सुख पाए, नानक गुरमुख मिल रह हम मैं शब्द जलाए। महला तीजा, आपे सेवा लायन आपे बख्श करी, सबना का मां प्यो आप है आपे सार करी। नानक नाम त्याएन तिन निज घर वास है, जुग जुग सुबा हुई। पौड़ी, तू करन कारण समरथ है करती, मैं तुझ बिन अवर ना कोई। तुदे आपे सिष्ट सिरजिया आपे फुन गोई, सब इको शब्द वर्तदा जो करे सो होई। वडियाई गुरमुख दे प्रभ हर पावे सोई, गुरमुख नानक आराध्या सब आखो धन धन धन गुर सोई। शुद्ध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की, घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बुत।

गेरा चौ दिस पसरियो है जम जेवरा रहाऊ कबत पड़े पड़ कबता मुए कपड़ किदा रह जाई जटा तार तार जोगी मुए तेरी गत इन्हें ना पाई दर्ब संच संच राजे मुए गडले कंचन भारी बेल पड़े पड़ पंडित मुए।

झूठी माया आप बंधाया, ज्यो नरनी भ्रम सुआ। वेद पुराण सब मत सुन के करी कर्म की आसा, काल ग्रस्त सब लोग सियानी, उठ पंडित पै चले निराशा। मन रे सरयो ना एक काजा, भजियो ना रघुपति।

जाई। हमरा भरम गया पहु भागा, जब राम नाम चित लागा। रहाऊ बाजीगर डंक बजाई,

तू राम न कर सपतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाउ। तेरे गलह तौक पग बेरी, तू घर घर मई है।

जित लाई तित लागी चेरी तै समत कहां ते पाई जाते भ्रम की लीक मटाई सो रस कबीर है जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया जेह बाज ना जिया जाई जो मिले ता काल अगाई सद जीवन भलो कहाही मुए बिन जीवन नाही अब क्या कथिए ज्ञान बिचारा निज निरखत गत व्यवहारा रहाउ कस कुंकम चंदन गारिया बिनैन हो जगत निहारिया पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया।

तो पंच सैल सुख माने कबीर है सो धन पाया हर भेदत आप मिटाया क्या पढ़ी है क्या गुनी है क्या वेद पुराना सुनिए पढ़े सुने क्या होई जो सहज ना मिलो सोई हर का नाम ना जप सगवारा क्या सोच है बारंबारा रहाओ अंधियारे दीपक चाहिए एक बस्त अगोचर लही है बस्त अगोचर पाई घट दीपक रहे आसमाई कह कबीर अब जानिया।

मुख ज्ञानी झूठे कहां बलो वस पानी काया मांजस कौन गुना जो घट पीतर है मलना रहाउ लौकी अठ सठ तीरथ नाही

मन पवन सुख बनिया, किस जोग प्राप्त गनिया, रहाउ गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंदलिए दरवाजे, बाजियले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटियाउ भा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया।

तहें अनहद शब्द भजंता ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी रतन कमल कोठरी चमकार भी जुल तही मेरे नाही दूर निज आत्म रहया भरपूर जह अनहत सूर उजियारा तह

मिल पारस कंचन होया, मुख मन सारतन परोया, निज पाओ पया ब्रह्म पागा, गुर पूछे मन पति आगा, जल पीतर

नाही। अनल अगम जैसे लहर मैं उदद, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा रहा। नरपत एक संघासन सोया, सुपने पया पेखारी। अच्छत राज बिसरप दुख पाया, सो गत पई हमारी। राज पोयंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मर्म जनाया। अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब कट भोग वै सोई। कह रविदास हाथ पै नीर, सहजे हुए सो होई। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बाधे। अपने छूटन को जतन करो,

सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास भगत एक बाडी अब एह कास्यो कही है जा कारण हम तुम आराधी सो दुख अजबू सही है दलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बिकै राजे इंदर समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो केह लेख ना बिचारियो राजा राम को रस यह रस अनरस बीसर जाही रहाओ जान अजान पए हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं कहियत ज्ञान अचरियत अनकश समझना पर अपर माया कह रविदास उदास दास मत पर हर कोप करहु जी दया सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिध कर तल ताके हर हर हरना जपह रसना अवर सब त्याग वचन रचना रहाओ नाना ख्यान प्राण बेद बिद चौतीस अखर माही व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरनाही सहज समाद उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण पै भागी जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम पये है चकोरा माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरह तुम स्यो तोर कमन स्यो जो रह रहाओ जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाती साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोर अवर संग तो।

ऊंचा रविदास जपै राम नामा मोहे जम सिंह नाई कामा राग सोरठ बाणी भगत भीखण की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नैन नीर बह तन कीना भय केस दुधवानी रूदा कंठ शब्द नहीं उच्चरे अब क्या करह परानी राम राय हो हे बैद बनवारी।

वेदन उपज खरी पई वाकाय औखद नाही हर का नाम अमृत जल निर्मल एहो औखद जग सारा गुर प्रसाद कह।

राखै जां सोए। जह देखा तह रहया समाय, तुद बिन दूजी नाहीं जाय। जे को करे कीतै क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए। हुण उठ

नहीं कोई। तनासरी महला पहला नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रह लिवलाई, आत्मा प्रात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हर सिंह चित लागे फिर का न खाई रहाउ, सच सिमरिया हुए परगास, ताते बिख्या।

काती कूड बोल मल खाए ब्राह्मण नावे जिया काए जोगी जुगत ना जाने अंध तीने उजाड़े का बंद सो जोगी जो जुगत पछाने गुर प्रसादी एको जाने काजी सो जो उल्टी करे गुर प्रसादी जीवत मरे सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे आप तरे सगले कुल तारे दान संबंध सोई दिल तोवे मुसलमान सोई मालक होवे पढ़िया बूझे सो परवान जिस सिर दरगाह का निशान तनासरी महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काल नाही जोग नाही नाही सत का टप था नष्ट जग प्रित होए डूबता इव जग कल मह राम नाम सार अखी ता मीटह नाक पकड़ है ठगण को संसार रहाओ आंट सेती नाक पकड़ है सूझते तिन लो मगर पाचे कछ ना सूझे एहो पदम अलो खतरिया ता धर्म छोड़िया मलेस भाख्या गही श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही अष्ट साज साज प्राण सोदह करह वेद अभ्यास बिन नाम हर के मुक्त नाही कह नानक दास तनासरी महला पहला आरती एक ओंकार सतगुर प्रसाद गगन में थाल रवचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आलो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति ऐसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजन।

सुख मानी अंतर सहज समाणी, एक अचरज जन देखो भाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, सब मह वसै प्रभ एको सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत अपारा, गुर कै शब्द परे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोहे जले अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोई।

सो निर्मल होए। निर्मल नाम हमे मल धोए, साची भगत सदा सुख होए। जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, किस सदा हरख नाही।

बिन सतगुर सब मुई बिल लाई, अन दिन दा जह शांत ना पाई। सतगुर मिले सब त्रिशन बुझाई, नानक नाम शांत सुख पाई। तनासरी महला तीजा, सदा धन अंतर नाम संभाले, जी जंत जिन्हें प्रतपाली।

निर्मल होए, अंतर नाम वसे पात उत्तम होए, रहाओ गुरमुख उपरे हर सरनाई, राम नाम राते भगत दृढ़ाई, भगत करे जन वडियाई पाई, काच रखे सुख सहज समाई।

को सात तृष्णा यज्ञ बुझाई, अंतर शांत सहज सुख पाए, गुर के भाणे चले ता आप जाए, साच महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझे ना जाने बाणी, मन मुख अंधे दुख विहानी।

क्या पावा तनासरी महला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए। यो मन मरे दारू जाने कोई, मन शब्द मरे।

नानक गुरमुख नाम पछाणे तनासरी महला तीजा काचा तन संचय है मूर्ख गवार मनमुख भूले अंध गवार बिख्या कै तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए साचा तन गुरमति पाए काचा तन हुनियावै जाए रहाव मनमुख भूले सब मरहै गवार पवजल डूबे ना उरवार ना पार सतगुर भेटे पूरै भाग साच रखे अहनस बैराग चहो जुग मह अमृत साची बाणी

लाए गुरमत साची साचा विचार आपे बख्शे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूरख मूरख मन माहे हम मैं विच सबकार कमाहे गुर प्रसादी हम मैं जाए आपे बख्शे लए मलाए भिख्या का तन बहुत अभमान अहंकार डूबे न पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत सालाही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर ना कोए जिस सच लाए सोई लागे नानक नाम सदा सुख आगे राग तनासरी महला तीजा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम भीखक पेखारी तेरे तू निज पत है दाता ओ दयाल नाम देहो मंगत जन को सदा रहो रंग राता हम बलिहार है।

ले गुर पर साथी जानिया साथी लिव लागी है पीतर सतगुर सिंह मन मानिया तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेव है संत भगत तिनके सब पाप निवारी।

हर उरतारी हर हर हर औखद जग पूरा जप हर हर हौ मैं मारी हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पैज सुवारी तनासरी महला चौथा हर के संत जना हर जप्यो तिनका दुख परम पौ भागी अपनी सेवा आप कराई गुरमत अंतर जागी हर कै नाम रत्ता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर

निक कीरे तुम वड पुरख वडागी तुम्हारे गात में तो कह ना सक है प्रभ हम क्यों कर मिल है अपागी हर प्रभ स्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागी नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथागी तनासरी महला चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बानी जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिस कह सद कुर्बानी हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमख पल सब किल विख पाप लह जानी रहाव ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी तिनकी धूर मंग है प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी हर हर सफले हो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपे हो से त्रिपतानी हर हर अमृत पी त्रिपता से सब लाथी भूख भुखानी जिनके वड्डे भाग वाडी विचे तिन हर जपे हो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दास दसानी तनासरी महल।

सोई फल मानुहु, हर हर कथा निराली रहाओ, हर के संत सुनो जन पाई, गुर सेवे हो बेग बेगाली, सतगुर सेव खर्च हर बंद हो, मत जान हो आज के काली, हर के संत जप हो हर जपना, हर संत चले हर नाली, जिन हर जपया

तुम हर सरवर आते अगाह, हम लह ना सकह अंत माती। तू परे परे अपरंपर स्वामी, मित जानो आपन गाती। हर के संत जना हर जपेओ, गुर रंग चलो लहराती। हर हर भगत बनी अत सोभा, हर जपेओ उत्तम पाती। आपे ठाकुर आपे सेवक, आप बनावे पाती। नानक जन तुमरी सरनाई, हर राखो लाज पगाती। तनासरी महला चौथा, कर युग का धर्म कहो तुम पाई। के विशुट है हम छुटका की, हर हर जप बेड़ी हर तुलहा। हर जपियो तरह तरा की, हर जी लाज रखो हर जन की। हर हर जपन जपावो अपना, हम मांगी भगत एकाकी रहा। हर के सेवक से हर प्यारे, जिन जपियो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया, सब छूटी जम की बाकी। हर के संत जपियो मन हर हर, लग संगत साध जना की। दिनियर सूर तृष्णा अग्न बुझानी, शिव चरयो चंद चंदाकी। तुम वड पुरख वड अगम अगोचर, तुम आपे आप अपाकी। जन नानक कहो प्रभ कृपा की जय, कर दासन दास दसाकी। तनासरी महला चौथा, कर पंजवां दुपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उरतार विचार मरार। रमो रम मन मोहन नाम जपीने, अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी। गुरपुरे प्रगट कर दीने, राम पारस चंदन हम काष्ट लोष। हर संग हरि सतसंग भये, हर कंचन चंदन कीने रहाओ। नव से खट बोल है मुख आगर, मेरा हर प्रभ इव नाप कीने। जन नानक हर हिरदय सद त्यावो, इउं हर प्रभ मेरा पीने। तनासरी महला चौथा, गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर। इव हर हर नाम त्याई, हर दरगह पावह फिर जन्म नायावह। हर हर हर ज्योत समाई, जप मन नाम हरी। हो हे सर्व सुखी

भगत हर दीनी तब हर स्यो प्रीत बन आई बहु चिंत वसारी हर नाम उर तारी नानक हर पय है सखाई तनासरी महला चौथा हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर पौ जल पार उतारी मन बचन हृदय त्याए हर हुए संतुष्ट इव भण हर नाम मरारी मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होए दिन राती हर कीरत कर बनवारी रहाओ हर हर करी दृष्ट तब पयो मन उत्तम हर हर नाम जपियो गत पई हमारी जन नानक की पात राख मेरे स्वामी हर आए परयो है सरन तुम्हारी तनासरी महला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध तेतीस कोट मुन जन सब चाहे हर जियो तेरो नाओ गुर प्रसाद को बिरला पावे जिनको ललाट लिखिया तुर पाओ जप मन रामे नाम हर जस उत्तम काम जो गावे सुनहे तेरा जस स्वामी हम तिनकै सद

करती जय। नानक हर सिमरन का है चाव, तना श्री महला चौथा। सेवक सिख पूजन सब आवह, सब गावह हर हर उत्तम बाण।

हर कथा जिन जनहु जानी रहाओ आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभु चोज बडानी जन नानक आप मलाए सोई हर मिलसी अवर सब त्याग ओहा हर पानी तनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जा कै वस है काम तीना सो ऐसा हर त्याये मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना जप मन सत नाम सदा सत नाम हलत पलत मुख उज्जल होई है नित त्याये हर पुरख निरंजना रहाओ जह हर सिमरन पया तह अपाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक को गुर एह मत दीनी जप हर पवजल करना।

प्यारी सब तुझे त्यावहि मेरे साह ज्यों भावै त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह तनासरी महला पंजवा घर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद भव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचल निरंकारी कोट पराध मिटे खिन भीतर।

लकिया तेरी कुदरत कौन बिचारी जल थल महियल रविया सरब ठाई अगम रूप गिरधारी कीर्त करह सगल जन तेरी तू अबनासी पुरख मरारी ज्यों पावे त्यों राखो स्वामी जन नानक सरन द्वारी तनासरी मोहल्ला पंजवा दिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल स्यों हेत बढ़ायो

मन गाय भयो परगास सदा सुख मन मह सतगुर पूरा पायो रहाओ गुण निदान रिद भीतर वसिया ता दुख भरम भउ भागा पई परा।

सहज सुख सुबा बाजे अनहत बानी कहो नानक निश्चल घर बांधियो गुर कीओ बंधानी तनासरी महला पंजवां वड्डे वड्डे राजन अर भूमन ताकि त्रिशन ना बूजी लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी बिख्या मह किन्हीं त्रिपत ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै बिन हर कहां।

पाया संत संग रहियो ओला हर तन संचन हर नाम पूजन एहो नानक कीनो चोला।

हीत माया मोह भूलो अवरहित हर चंदौरी बन हर पातरे एह तुहारो बीत रहाओ चंदन लेप होत देखो सुख गर्धब भस्म संगीत अमृत संग ना

केले वेख दुख भागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुख ते निकसेओ नानक एक परीत तनासरी महला पंजवा पानी पक्का पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समा

आनंद राज पाए, मुकटे निमुख बुलाई, जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभु कै मन पाई, नाम जपत कृष्णा सब बुझी है, नानक तृप्त अगाई। तनासरी महला पंजवां, जिन कीने वस अपने त्रै गुण, भवन चतुर संसारा, जग इशनान ताप थान खंडे, क्या एहो जंत विचारा। प्रभ की ओट गही तो छूटो, साध प्रसाद हर हर हर गाय, बिखै ब्याद तब हूटो रहाओ, नह सुनिए नह मुखते बकिए, नह मोहै ओह डीठी, ऐसी ठगौरी पाए पुलावे, मन सब कै लागे मीठी। माए बाप पूत हित प्राता, उन घर घर मेले ओ दुआ, किस ही वाद घाट किस ही पह, सगले लर लर मुआ। हौ बलिहारी सतगुर अपने, जिन ओह चलत दिखाया, गूजी पाहे जलै संसारा, भगत ना व्यापै माया। संत प्रसाद महा सुख पाया, सगले बंधन काटे, हर हर नाम नानक धन पाया, अपने घर लै आया खाते। तनासरी महला पंजवां, तुम दाते ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतपालो, हम बारक तुमरे तारे।

अल्प मात थोरी तुम्हें आपन बिरद रखाव हो, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सोहेले, राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले।

निर्मोल का हर जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेटे नानक सुख जन रहन तनासरी मा

हमरा मीत सगल समग्री जियो ही हो देव हर पौ अपनो चीत रहाओ पार तन पर की निंदा इन स्यों प्रीत ना लागे संत है संग संत संपाखन हर कीर्तन मन जागे।

टेकै मन विश्वास प्रभ धारिया चरण रीन बांछै नित नानक पुनः पुनः बलिहारिया तनासरी महला पंजवा मेरा लागो राम सिउ हेत सतगुर मेरा सदा सहाय दिन दुख का काटिया केत रहाउ हाथ दे राखियो अपना कर बिरथा।

तेरे दुतिया पाओ निवार, बंधन काट ले हो अपने कर, कभू न आवह हार। तेरी शरण पया हो जीवा, तू सम्राट पुरख मेहरवान, आठ पहर प्रभ को आरादी, नानक सद कुर्बान। राग तना श्रीमान।

जी उदारन सब कुल तारन हर हर नाम त्याय नानक नाम निरंजन गाइए पाइए सर्ब निधाना कर कृपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना तनासरी महला पंजवा कर दूजा चौपदे

एकत्र तह हर जस गावह नाद कवित साध सभा मह अनंद विश्राम उन संग सो पाई जिस मस्तक कराम।

रास मिल साध संगत होवत परगास जीयन का दाता पूर्ण सब ठाए कोट क्लेश मिटह।

द्वार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण अवर आस कस पटल ना कीजै सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई नानक जा को कृपा कीजै तनासरी महला।

तिने ओट गही संत पल्ला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम निदान मिट्यो है अभमान एक निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारी काल कलेश लोभ मोह महा भौजल तारी रहाओ सास सास निमख निमख दिन सरहन चितारी साध संग जपन संग मन निदान तारी चरण कमल नमचकार गुण गोविंद बिचारी साध जना की रेन नानक मंगल सुख सधारे तनासरी महला पंजवा घर अठवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सास सास संभाले एह लोक परलोक संग सहाय जत कत मोहे।

टेक, मात दूध जैसे बाले, सागर में बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाली। तनासरी महला पंजवा, पये कृपाल दयाल गोविंदा, अमृत हृदय सिंचाई, नवनित रिद्ध सिद्ध हर, लाग रही जन पाई, संतन को अंध सगल ही जाई, ग्रह बाहर ठाकुर भगतन का।

आई संत अनुग्रह पय मन निर्मल नानक हर गुण गाय तना श्री महला पंजवा जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वसता कै जाका सतगुर पूरा ठाकुर गाय।

मन भरमा तब लग मुक्त ना कोई। कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवां नाम गुर दियो है अपने जां कै मस्तक करमा। नाम दृढ़ावे नाम जपावे ता का युग मह धर्मा जन

जिस जन कह पाले सोई पूरा साहा नाम व्यवहारा नानक अधारा नाम प्राप्त लाहा तनासरी महला पंजवा नेत्र पनीत पय दर्स पेखे माता परो रवाल रस रस गुण गा।

मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधियो पाल। तनासरी महला पंजवां अपनी उकत खिलावे भोजन अपनी उकत खिलावे सर्ब सुख भोग रस देवे।

सदा सलामत देवा। ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला पंजवां संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारी राजमाल जोबन तन जियरा इन ऊपर लै बारी मन तन राम नाम हितकारी सुख सहज आनंद मंगल सहत भव निध पार उतारी रहाओ। तन सो थान ताने ओए भवना

नानक आनंद पये दुख भागे सदा सदा हर जाप तनासरी महला पंजवा चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख।

हर देवन हारा, चरण कमल स्यों लागो नेहो, नानक की बेनंती है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद तनासरी महला नौवा, काहे रे बन खोजन जाई, सर्बनवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई रहाओ। पोह पमद ज्यों बास बस्त है, मुकर माहे जैसे शाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतरे को जानो, एहो गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै ना भ्रम की काई। तनासरी महला नौवा, साधो एहो जग भरम भलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता भाई सुत बनता, तां कै रस लपटाना, जोबन धन प्रभता कै मद में, अहनस रह देवाना। दीन दयाल सदा दुख भंजन, तां स्यो मन ना लगाना, जन नानक कोटन मैं किन्हू, गुरमुख होए पछाना। तनासरी महला नौवा, तेह जोगी को जुगत ना जानो, लोभ मोह माया ममता फुन, जेह घट माहे पछानो रहाओ। पर निंदा उस्तत नह जाके, कंचन लोह समानो, हरख सोग ते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन दह दिस को तावत, अचल जाए ठहरानो, कहो नानक एह बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। तनासरी महला नौवा, अब मैं कौन उपाऊ करूं, जेह बिद मन को संसा चूकै, पहु निध पार परो रहाओ। जन्म पाए कछ पलो ना कीनो, ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच धरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो, पास ज्यो उदर भरो, कहो नानक प्रभ बिरत पछानो, तब हो पतत तरो। तनासरी महला पहला, घर दूजा अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुर सागर रतनी परपूरे, अमृत संत चुगह नहीं दूरे, हर रस चोग चुगह प्रभ पावे, सर्वर मह हंस प्राण पत पावे। क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल ना जाए रहाओ। रख रख चरण धरे विचारी, दुबदा छोड़ पए निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आमन जान रहे गुर राखे। सर्वर हंसा छोड़ ना जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए। सर्वर मह हंस हंस मह सागर, कथ कथा गुर बचनी आदर, सुन मंडल एक जोगी बैसे, नारना पुरख कहो को कैसे। त्रि भवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सच्चे सरनाई, आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरमुख भगत सहज बीचारी, भगत वचल पै काटन हारे, हो मैं मार मिले भगत हारी। अनक जतन कर काल संताए, मरन लखाए मंडल मह आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप ना तीनस भ्रम भ्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीर्ज धर्म तरनी तर टेक, जत सत संयम हृदय समाए। चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल ना लागे, गुर कै शब्द भरम पौ भागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप। तनासरी महला पहला, सहज मिले मिलिया परवान, ना तिस मरण ना आवन जान, ठाकुर मह दास दास मह सोए, जह देखा तह अवर ना कोई।
गुरमुख भगत सहज घर पाई बिन गुर भेटे मर आईए जाइए रहाउ सो गुर करो जे साच दरड़ावे कथ कथावे शब्द मलावे हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकुर साच प्यारा तन

रंग लावे पड़े रे सगल भेद नह चूकै मन भेद एक खिन ना धीरह मेरे घर के पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरा हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए हम बुद्ध मैन लाए घर को ठाकुर एक तिल ना माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन इशनान सगल अश्रम कीने मनुआ नह पतीने विवेकहीन देही तोहे कोई पाई रे पुरख बधाता पार ब्रह्म कै रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म धर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पढ़े कहीं ना लेखै जिस भेटी है सफल मूरत करे सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत्रों पेख मन हठ जो कमावे तिल ना लेखै पावे बगल ज्यो ध्यान लावे माया रे तारी कोई ऐसो रे सुखदाई प्रभ की कथा सुनाई जिस भेटे गत होए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राय काटे रे बंधन माए गुर कै शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद भेट्यो निरपै गोविंद सुख नानक लादे हर चरण पराता सफल सफल पई सफल जातरा आवन जान रहे मिले सादा रहाउ दूजा तलासरी महला पहला शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुरु ज्ञान साचा थान तीर्थ दास पुरब सदा दसा।

सच बिना गुरवाक निर्मल सदा चानन नित साच तीर्थ मजना साच ना लागे मैल क्या मल धोई है गुणहा हार परोए किस को रोई है विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे आप पारस परम ध्यानी साच साचे भावे आनंद अन दिन हरक साचा दुख।

आप पूरा नामण गावे गावण हार शब्द सुहावण सलाहे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग पावे सहज नावे देनी ता संगम सत सते आराद एक अंकार साचा नित दे चढ़े सुआया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मलाया कहन कह सब को एक वडे आखी है हो मूर्ख नीच अजान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी।

है बेखला दे शब्द सच्चा गुर मेरा आखण तोट ना भगत पंडारी भरपुर रहे आसोई नानक साच कह बेनंती मन मांजै सच सोई तनासरी महला।

लेख है आपे सुरत बुझाई नानक साहेब अगम अगोचर जीवा सच्ची नाई तुम सारे अवर ना कोए आया जायसी जियो हुक्मी होए नबेड़ परम चुकाए सी जियो गुर परम चुकाए अकथ कहाए सच मह साच समाना आप अपाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाणा सच्ची वड्याई गुर ते पाई तू मन अंत सखाई नानक साहिब अवर ना दूजा नाम तेरे वड्याई तू सच्चा सिरजनहार अलख सिरंदिया जियो एक साहिब दोए राह बाद वधंदिया जियो दोए राह चलाए हुक्म सबाए जन्म मुआ संसारा नाम बिना नाही को बेली बेखलादी सिर भारा हुक्मी आया हुक्म ना बूझै हुक्म सवारण हारा नानक साहिब शब्द सियापै साचा सिर जनहारा भगत सोह दरबार शब्द सुहाया जियो बोल है अमृत बाण रसन रसाया जियो रसन रसाए नाम तसाए गुर कै शब्द विकाणे पारस परसे है पारस होए जां तेरे मन भाणे अमरा पद पाया आप गवाया बिरला ज्ञान विचारी नानक भगत सोहन दर साचे साचे के वापारी भूख प्या सुहात क्यों दर जाए सा जियो सतगुरु पूछो जाए नाम त्याए सा जियो सच नाम त्याई साच चवाई गुरमुख साच पछाणा दीना नाथ दयाल निरंजन।

निवारी तनासरी संत महला पहला फिर संग मूठड़िए खबर ना पाया जियो मस्तक लिखियड़ा लेख पुरब कमाया जियो लेख ना मिटई पुरब कमाया क्या जाना क्या होसी गुणी अचार नहीं रंग राते अवगुण बह बह रोसी तन जोबन आक की छाया गिरध भये दिन पुनिया नानक नाम बिना दोहागण छूटी झूठ विछुनिया बूढ़ी घर गालियो गुर कै पाए चलो साचा नाम त्याए पावह सुख महलो हर नाम त्याए तां सुख पाए पे अड़े दिन चारे निज कर जाए बह सच पाए अन बिन नाल प्यारे बिन भगती घर वास न होवी सुनियो लोक सबाए नानक सरसी तां फिर पाए राती साचे नाए फिर तन भावे तां फिर भावे नारी जियो रंग प्रीतम राती गुर कै शब्द विचारी जियो गुर शब्द विचारी नाह प्यारी निव निव भगत करे माया मोह जलाए प्रीतम रस मह रंग करे प्रभ साचे सेती रंग रंगेती लाल भई मन मारी नानक साच वसी सुहागण फिर स्यों प्रीत प्यारी फिर कर सोहै नार जे पिर भावे जियो झूठै वैण चवे।

छे तप कर बहुर ऐबू क्या मांगू किस थिर नाही राम नाम रख मन माही रहाऊ सोभा राज बिभै बढ़ियाई अंत न काहू संग सहाय पुत्र कलत्तर लक्ष्मी माया इन्ते कहो कमने सुख पाया कहत कबीर अवर नहीं कामा हमरे मन धन राम को नामा राम सिमर राम सिमर भाई राम नाम सिमरन बिन बूढ़ ते अदकाई रहाउ बनता सुत देह गृह संपत सुखदाई इन मैं कछ नाही तेरू काल अब दे आई अजा मल गज गनका पतत कर्म कीने तेऊ पुत्र पार परे राम नाम लीने सूकर कूकर जोन भ्रमे तऊ लाज ना आई राम नाम छाड अमृत काहे बिख खाई ताज परम कर्म बिदन खेद राम नाम लेही गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई ऊपर मंडप छाई बार कंडे ते को अधकाई जिन त्रिण धर मूंड बलाई हमरू करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ करत हो बिन सजाए झूठी देही रहाओ मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से पाई बारह योजन शत्र चले था देही गिरजन खाई सर्ब सोइन की लंका होती रावण से अधकाई कहां भयो दर बांधे हाथी खिन मैं भई पराई दुर्बासा स्यो करत ठगा।

आए। दस बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नाम, सत्तर दोए परे अमृत सार, बिख को मार कढ़ावो, पाछे बहुर ना आवन पावो, अमृत बाणी घटते उचरो, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, ए संसार ते तब ही छूटो, जो माया नह लपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तेह तज दर्शन पावो, इत कर भगत करह जो जन, तिन भव सगल चुकाइए, कहत नाम देव बाहर क्या भरम हो, एह संजम हर पाइए, मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, जो करंक निसनाद बाल।

आऊ ज्यो धरणी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे भवरला ज्यो कोकिल को अंब बालहा त्यों मेरे मन रामैया चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला ज्यों तरणी को कंत बालहा त्यों मेरे मन रामैया पार्क को जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रामैया साधक सिद्ध सगल मुन चाह बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिये पुंडरक वना तांचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नचंती नाचना पहल पुरसाबरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचै पिंडी महसागरा रहाऊ।

पतत पावन माधव बिरध तेरा धन ते वै मुन जन जिन ध्यायो हर प्रभ मेरा मेरे माथे लागी ले तूर गोविंद चरणन की सुर नर मुन जन तिन्हू ते दूर रहाओ दीन का दयाल माधो गर्भ परहारी चरण सरन नामा बल तिहारी तनासरी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन माने जन को पूर्ण दीजै हौ बल बल जाऊ रमैया कारने कारण कमने अबोल रहाओ बहुत जन्म बिछरे थे माधव यो जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जीमो चिर भयो दर्शन देखे चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण बानी सुजस पूर राखो मन सो मधुकर करो चरण हृदय धरो हरसन अमृत राम नाम पाखो मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन घटै मैं तो मूल महंगी लई जी सटै रहाउ साध संगत बिना भाव नहीं उपजै भाव बिन भगत नहीं होए तेरी कह रविदास एक बेनती हर सिंह पैज राखो राजा राम मेरी नाम तेरो आरती मजन मरारी हर के नाम बिन झूठे सगल

ज्योत लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारह सगल जूठारे तेरो किया तुझे क्या अर्पों नाम तेरा तुही चवर टोलहारे दस अठा अठसठे चारे खानी यह बर्तन है सगल सं

कर्मरी रहाव शंकर मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन मधे मिलियो सारग पान रे कर्म कर कलंक मफीत सरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बांधवा कर्म कार अरुण पिंगलारी अनक पात कहरता त्रे पवन नाथरी तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पाररी कर्म कर कपाल मुठीट सरी अमृत ससी तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर समागर नदी के नाथं कर्म कार खार मुठीट सरी दादी ले लंका गाड़ उपाड़ी ले रावण बाण सालब साल आण तो खीले हरी कर्म कर कछोटी मफीत सरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी घर गेहन ताचे मोहे जापी अले राम चे नाम बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन धूप दीप कृत साज आरती वार ले जाओ कमला पति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को रहाओ उत्तम दियरा निर्मल बाती तुही निरंजन कमला पाती राम।

जैत श्री मोहल्ला चौथा हीरा लाल अमोलक है पारी बिन गाहक मीका काखा रतन गाहक गुर साधु देखियो तब रतन बकानो लाखा मेरा मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा रहाओ मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा तिन घर रतन ना लाखा ते उजड़ भरम मोए गावारी माया पुआंग बिख चाखा हर हर साध मेलो जन नीके।

जिहवा क्या गुण आख बखान है, तुम वड अगम वड पुरखा, जन नानक हर कृपा धारी, पाखान दुपत हर राखा, जैत श्री महला चौथा, हम बारिक कछु न जान है गत मेत, तेरे मूर्ख मुग्ध एना हर कृपा।

गुर साधु मिल साधु कपट खला ना रहाउ गुर खिन खिन प्रीत लगावो मेरा ही अरे मेरे प्रीतम नाम पराना बिन नावै मर जाइए मेरे ठाकुर जो अमली अमल लुभाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर भाग पुराना तिन हम चरण सरे वह खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा धारी मेरा ठाकुर जन बिछरिया चिरी मलाना तन तन सतगुर जिन नाम दिरडाया जन नानक तिस कुरबाना जैत श्री महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लागबा माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी गुरबचनी बिसहर काढ़बा मेरा मन राम नाम रस लागबा हर किए पत्र पवित्र मिल साध गुर हर नाम हर रस चाखबा रहाउ तन तन वडभाग मिलियो गुर साधु मिल साधु लिव उन्मन लागबा तृष्णा अगन बुझी शांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा तिनके भाग खीन तुर पाए जिन सतगुर दर्शना पाएबा ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाएबा हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेव है हम हर मीठ लगाएबा जन नानक रेन साध पग मांगे हर हुए दयाल दुआएबा जैत श्री महला चौथा जिन हर हृदय नाम ना बसेऊ तिन मात की जय हर

साकत बंद भय है माया, बिख संचय है लाए ज कीड़ा, हर कह अर्थ खर्च नह साक है, जम काल सह है सिर पीड़ा, जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु, बहु श्रद्धा लाए मुख धूड़ा, हलत पलत हर सोभा पाव है, हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरिओ मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर सिमरोह अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटै हमारा, हर हर सतगुर पुरख।

हर हर हर हर भगत दृढ़ावहु हर हर नाम उमाहाराम हर हर नाम दयाल त्याह हर कह रंग सदा गुण गाह हर हर हर जस घूमर पावहु मिल सत

खिन खिन भगत करह दिन राती, गुरमत भगत अमाहा राम, हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द लैलाहा, गुरमत पंच दूत वस आवह, मन तन हर ओ महाराम, नाम रतन हर नाम।

आपे सतगुर संबंध मथाहा, आपे मत मत तत कढ़ाई, जप नाम रतन ओ महाराम, सखी मिलो मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जपहु हर लाहा, हर हर भगत दृढ़ी मन पहा।

मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा, हर हर कृपा धार मद सूदन, मिल सत

तोल अत पहारी गुरमत जप उमाहा राम सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किल विख मैल पाप तुवाहा दीन दयाल हो जन ऊपर देहो नानक नाम उमाहा राम जय श्री महला पंजवां घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई जाने कवन इहां जग मीत जिस होए कृपाल सोई बिद बूजै तां की निर्मल रीत रहाओ मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर भाई

सब महियो वर्ण ना दिसे चिहन ना लखिए सुहागन सांत बजहियो सर्व निवासी कट कट वासी लेप नहीं अलपहियो नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसहियो जय श्री महला पंजवां तीरों सुन तीरों प्रभ को रहाओ जी प्राण मन तन सब अर्पो नीरो पेख प्रभ को नीरो बेशमार बेअंत बड़ दाता मने गहीरो पेख प्रभ को जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जप प्रभ को गुर प्रसाद नानक मन वसिया दुख ना कबहू चूरों बुझ प्रभ को जय श्री महला पंजवां लड़िंदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके काट

तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत भेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाई मोरो हर चरणी चित लाग जय श्री महला पंजवा मन मह सतगुर ध्यान धरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो माया करा रहाओ काल जाल अर महा जंजाला।

है जिन रस रस हर गुण गाई जय श्री महला पंजवां गोविंद जीवन प्राण धन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे मह दीप रहाउ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमल अनूप अनक बार करो ते बंदन।

या रसम है मगन हूत किरपाती महाविख्याति तूर आयु सरन दीन दुख भंजन चितवं तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को रब नानक बंधन शोर जय श्री महला पंजवा चातरक चितवत बरसत में किरपा सिंध करुणा प्रभ धारु हर प्रेम।

अरदास जन अपने उदरे उदर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जय श्री महला पंजवां आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर दे अंधकूप ते लाभ हो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाभ बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मह तरनी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग आभरनी जैत श्री महला पंजवां हर जन सिमरोह हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिगन बिन सह हर सेवा निश्चल गोविंद धाम भगवंत भगत को पौ किश नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहु नानक सुख समूह विश्राम जैत श्री महला नौवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूलियो मन माया उरझायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जानियो नाहिन बन खोजन को तायो रतन राम घट ही के पीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत भजन।

जम को त्रास भयो उर अंतर शरण गही कृपा निद तेरी रहाओ। महापतत मुग्ध लोभी फुन करत पाप अबहारा

को जोगी खोजत हारे पायो नाहे तेह पारा। सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबहू नाहे संभारा। नानक शरण परयो जग बंदन राखो हो बिरद तुहारा। जैत श्री महला पंजवां संत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया। किस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया। किस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजे। नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे एक तिल भी ना करीजै।

पूरा पाया सगली तिखा बुजंतिया यार वे प्रिय हबे सखियां मुँह कही ना जेहिया यार वे हिक डू हिक चाड़े हों किस चिते हिया हिक डू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हों कद पाई गुण तासा जिन्नी मैंडा लाल रजाया हों तिस आग्या मन देहिया नानक कह सुन बिनो सुहागण मूं दस दिखा पेर के हिया यार वे पेरे आपन पाना किसनीशी छंदा यार वे तैरा व्या लालन मूं दस दसंदा लालन तै पाया आप गवाया जै तन भाग मथाने बाहां पकड़ ठाकुर हों किदी गुण अवगुण ना पछाणे गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किस सुहंदा जन नानक तन सुहागण साई जिस संग पता।

आठ पहर कर जोड़, सो प्रभ त्याई है, त्याए सो प्रभ सदा अपना, मन है चिंदिया पाई है, तज मान मोह विकार दूजा, एक स्यों निवलाई है, अर्प मन तन प्रभु आगे, आप सगल मिटाई है, बिनवंत नानक धार कृपा, साच नाम समाई है, सलोक रे मन ता कौ त्याई है, सब बिद जा कै हाथ, राम नाम तन संची है।

सोए जल थल महियल पूर रहया सर्वदाता प्रभ धनी गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुणता के क्या गनी भज सरन स्वामी सुखागामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नान।

जवान बूढ़े मरण चीत ना आवे, पुत्र मित्र व्यवहार बनता एह करत बिहावे, उज दिवस आए लिखे माए, दुख धर्म दूत है जिथेया, किरत कर्म ना मिटै नानक, हर नाम धन नहीं खटिया, उदम करह अनेक हर नाम ना गावही, भरम है जोन असंख मर जन्म है आवही, पशु पंखी सैल तरवर गणत कशु ना आवे, बीज बोवस भोग भोग है किया अपना पावे, रतन जन्म हरंत जुए,

है निमुख मन मह बूठे आ बिनवंत नानक कोट कागर बिन सबार ना झूठे आ चरण कमल सरण आए नानक आया दुत्तर पै संसार प्रब आप तराया मिल साध संगे भजे श्री तार कर अंग प्रभ जी तारिया हर मान लिए नाम दिए अवर कछ ना बिचारिया गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया।

पूरन अंत पूर्ण परमेश्वर है, सिमरंत संत सर्वत्र रमण, नानक अगनाशन जगदीश्वर है। देखन सुनन सनामनो मन मह दृढ़िय साच, पूर रहे हो सर्वतर मैं।

साध संग हर गुण रमहु बिनसे सब रोग सलोक कुटंब जतन करनं माया अनेक उदम है हर

शांत हुए केत बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दह दिसह त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग मह मन साई मुख उच्चरा वत्ता हबे लो नानक हब अडंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए पौड़ी बस्ता टूटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पात ना आदरु उद्यान पर मिन्ना मित्र ना एठ धन रूपहीन किस साक ना सिन्ना राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना किसकी धूड़ मन उदरे प्रभ होए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राज रस रूपं शतर चमर तख्त आसनं रचंत मूड अज्ञान अंध है नानक सुपन मनोरथ माया।

त्रोह पौड़ी सुपने से ती चेता मूर्ख लाया बिसरे राज रस भोग जागत पखलाया हार जा गई विहाई

का बसंत स्वर्ग लोक कहै, जित ते पृथ्वी नव खंडन है, बिसरंत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है, कौतिक कोड तमाशिया चेतना आवस नाउ, नानक कोड़ी नरक बराबरे, उजड़ सोई थाउ पौड़ी, महाभयान उद्यान नगर कर मानिया, झूठ समगरी पेख सच कर जानिया, काम क्रोध अहंकार फिरह देवानिया, सिर लगा जम डांड ता पछतानिया, बिन पूरे गुरदेव फिरह शैतानिया, सलोक राज कपटंग रूप कपटंग, धन कपटंग कुल गर्भ तह, संचंत बिखिया सलंग छिदनंग, नानक बिन हर संग ना चालते, ते खंदड़ो की भुल तुम्मा दिसम सोहना, अड ना लहंदड़ो मुल, नानक साथ ना जुली माया पौड़ी, जलदिया नाल ना चले सो क्यों संजी है, तिसका कहो क्या जतन जिस ते वंजी है, हर बिसरिया क्यों त्रिपतावे ना मन रंजी है, प्रभु छोड़ अन लागे नरक समंजी है, हो कृपाल दयाल नानक पौ भंजी है, सलोक नाच राज सुख मिष्टं, नाच भोग रस मिष्टं, नाच मिष्टं सुख माया मिष्टं, साध संग हार नानक दास मिष्टं प्रभ दर्शन, लगड़ा सो नेहो मन मजाहु रत्या, विदड़ो सच थोक नानक मिठड़ा सो धनी पौड़ी, हर बिन कछु ना लागई भगतन को मीठा, आन स्वाद सब फीकिया कर निर्णौ दीठा, अज्ञान भरम दुख कटिया गुर भये बसीठा, चरण कमल मन बेदिया ज्यो रंग मजीठा, जियो प्राण तन मन प्रभु बिनसे सब झूठा, सलोक त्यकत जलं नह जीव मीनं, नह त्याग चातरक मेघ मंडल है, बाण बेदंच क्रंक नादं अल बंधन कुसुम बासन है, चरण कमल रचंत संत है, नानक आन ना रुचते मुख दिखाऊ पलक, छड आन ना देऊ चेत जीवन संगम तिस धनी, हर नानक संता मित पौड़ी, ज्यों मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावे, बूंद विहूणा चात्र को क्यों कर कृपतावे, नाद करंक है बेदिया सनमुख उठतावे, पवर लोभी कुसुम बास का मिले आप बंधावे, त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावे, सलोक चितवंत चरण कमलं सास सास आराधन है, नह बिसरंत नाम अच्युत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है, सीतड़ा मन मजाहि पलक ना थीवै बाहरा,

परवान। जित मलंदड़ो महापीरी पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संयोग है जित मिले गुसाई आठ पहर हर त्याई कै मन इच पुजाई बड़े भाग सतसंग होए निव लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतत पनीत गोबिंद है सर्व दुख निवारण है सरन सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हबे आप।

पाईए वड्डै पुन आठ पहर हर त्याई हर जस नित सुन सलोक दया करन दुख हरन उचरन नाम कीर्तन है दयाल पुरख भगवान है नानक लिपत ना माया पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन्यो पाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जहां प्रभ भये दयाल ना व्यापै माया कोट अगा गए नास हर एक त्याया निर्मल भये शरीर जन धूरी नाया मन पन भये संतोख पूर्ण प्रभ पाया तरे कुटंब संग लोग कुल सबाया सलोक गुरु गोबिंद गोपाल गुर गुर पूर्ण नारायण है गुर दयाल समरथ गुर गुरु नानक पतत उदाहरण है भौजल विखम असगाह गुर बोहित है तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणी लगिया पौड़ी धन धन गुरदेव जिस संग हर जपे गुर किरपाल जब भये ता अवगुण सब छपे पार ब्रह्म गुरदेव नीचो उच थपे काट सिलक दुख माया कर लीने अप दसे गुण गाए बेअंत रसना हर जसे सलोक दृष्टंत एको सुनियंत एको वर्तंत एको नरहर है नाम दान जा चंत नानक दयाल पुरख कृपा करह हिक सेवी हिक सम्मला हर इकस पह अरदास नाम वखर धन संचिया।

कई है तिन मस्तक भाग मंदेरा विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा जन नानक नाम गुरु ते पाया।

साध संतन अवर न काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी रहाउ ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी ऐसो अमर मिलियो भगतन को राच रहे रंग ज्ञानी रोग सोग दुख जरा मरा हर जन है नहीं निकटानी निरपो हुए रहे लिव एक नानक हर मन मानी टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी ताको धोखा कहां ब्यापै जाको ओट तुहारी रहाउ बिन सिमरन जो जीवन बलना

तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद तायो रे मन दह दिस तायो माया मगन स्वाद लोभ मोहयो इन प्रभ आप पलायो रहाव हर कथा हर जस साध संगत सियो एक मोहत ना एहो मन लायो बिगसेओ पेख रंग कसुंभ को पर ग्रह जोहन जायो चरण कमल सियो पाओ ना कीनो नह सत पुरख मनायो तावत कहो तावह बहु भांति ज्यो तेली बल्द परमायो नाम दान इशनान ना कियो एक निमख ना कीरत गायो नाना झूठ लाए मन तो खियो नह बूझियो अपनायो पर उपकार न कबहू किए नहीं सतगुर सेवत आयो पंच दूत रच संगत गोष्ट मतवारो मद मायो करो बेनती साध संगत हर भगत वश्चल सुन आयो नानक भाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो टोडी महला पंजवां मनुख बिन बूझे बिरता आया अनक साज शिंगार बहु करता ज्यो मृतक ओढ़ाया रहाओ ताई ताई कृपन सरम कीनो एकत्र करी है माया दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज ना आया कर आभरण सवारी सेजा कामन थाट बनाया संग न पायो अपने परते पेख पेख दुख पाया।

भयो अनुग्रहो जाको प्रभ को किस हृदय नाम वसाया। साध संगत कै पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवां कृपा निद बसो हृदय हर नीत तैसी बुद्ध करहो परगासा। लागे प्रभ संग प्रीत रहाउ दास तुम्हारे की पावो धूरा मस्तक ले ले लावो। महापतत ते होत पनीता हर कीर्तन गुण गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तुहारो पावो।

काल अनेक भोग रस सगल तरवर की श्याम ताए ताए बहु विद कौ तावे सगल निरारत काम बिन गोविंद।

पंजवां सतगुरे आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी रहाओ अवर

नानक सरन परे दुख पंजन जाका बड परताप टोडी महला पंजवा स्वामी सरन परयो दरबारी कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उधारी रहाउ खोजत खोजत बहु परकारे सर्व अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाईए माया रच बंद हारी चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुर जन मिले प्यारे नानक अंध करे हर जप जप सगले रोग निवारी टोडी महला पंजवा घर तीजा चौपदी

या टोडी महला पंजवा हमारे एकै हरी हरी आन अवर सिंहान ना करी रहाऊ बड़े भाग गुरे अपना पायो गुरमुख।

सब किस किसके ग्रह मह आया, टोडी महला पंजवा घर चौथा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रूढ़ो मन हर रंगो लोड़ै, गाली हर नीहू ना होए रहाव, हौं टुनेंदी दर्शन कारण, बीती बीती पेखा गुरमिल भरम गवाया ही, एह बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो, लेख लिखियो तुर माथ है, एह बिद नानक हर नैन अलोई, टोडी महला पंजवा गर्भ गिहिलड़ो मूडड़ो ही ओरे।

आयो रे। महाराज रो गाथ बाहु स्यो लुबड़ियो, निह भागड़ो पाहे संजोयो रे। सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारे सगले परास्त मिट्यो रे। जाको लहणो महाराज री गाठड़ियो, जन नानक गर्भास ना पौड़ियो रे। टोडी महला पंजवा कर पंजवा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दुख अर अंग रोग। एह तन ते सगल दूर कीन रहाओ, बंधन तोर छोर बिखियाते।

गहियो मोहे हर रंग पीन, पेखियो लालन पाठ बीच खोए, अनद चिता हर खे पतीन, तिस ही को ग्रहो सोई प्रभ नानक,

राम नाम निर्मल है रीत रहाउ, प्राण आधार जीवन धन मोरै, देखन को दर्शन प्रभ नीत, बात घाट तोसा संग मोरै, मन अपने को मैं हर सखा कीत, संत प्रसाद भये मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत, सिमर सिमर नानक सुख पाया, आद जुगाद भगतन के मीत, टोडी महला पंजवा, प्रभ जी मिल मेरे प्राण, बिसर नहीं निमख ही रेते, अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ, खोबो परम राख मेरे प्रीतम, अंतर जामी सुगड़ सुजान, कोट राज नाम धन मेरे, अमृत दृष्ट तारु प्रभ मान, आठ पहर रसना गुण गावे, जस पूर अगावे समरथ कान, तेरी शरण जीयन के दाते, सदा सदा

सदा हजूर जो तुमरा जस गावह करते से जन कभो ना मरते चूर धंद बंद बिनसे माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपत भोग इस जी के।

नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुण तास शांत सहज सुख मन उपजेउ कोट सूर नानक प्रगास टोडी महला पंजवां हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म भूम बीजन सो खावन विस्मन विस्म

सुख कोट आनंद राज सुख भुगवे हर सिमरत बिनसै सब दुख रहाउ। कोट जन्म के किल विख नास है सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण भई आसा दर्शन भेटत उतरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उरतारी। सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाओ। पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीरत तत बिचारी। गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारी। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ ना बिचारी। नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारी। टोडी महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदम्भाई।

नहीं कब हूँ, होत जो संग सहाई मगन रहे हो माया मैं निस दिन छुट्टी ना मन की काई। कह नानक अब नाहे अंत गत बिन हर की सरनाई। टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर। काए रे बकवाद लायो जिन हर पायो तिन्ह छपायो रहाओ। पंडित हुए कै बेद बखाने मूर्ख नाम देवरा मह जाने। कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही पतत पवित भये राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई एकादशी बरत रह काहे को तीर्थ जाई। भणत नाम देओ सो कृत समत भये गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए। तीन संदे खेल आछै रहाओ कुंभार के घर हांडी आछै। राजा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी आछै। रांडी सांडी हांडी गो बाणिये के कर हींग आछै। पैसर मातै सींग गो देवल मदे लीग आसै। लीग सीग हीग गो तेली कै कर तेल आछै।

राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दुख दे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद बुद्ध सिद्ध सुख पाव है भज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान प्राण जासे उत्तम खट दर्शन गाव है राम शंकर करोड़ ते तीस त्यायो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नार गण गंधर्व जस गाव है सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिनको ते संत भले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मेल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ इस जन को मन तन सब देव जिन हर हर नाम।

ईश्वर तब हर हर हर जस त्यायो जन नानक को हर पेटे स्वामी दुख हमै रोग गुआयो। बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ जो

सतारा कोटक तंत्र के पाप सब खोवे हर पवजल पार उतारा रहाउ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निर्भव निर्वैर निरंकारा हर निकट बसत कस नगर ना आवे हर लादा गुर विचारा हर आपे साहू सराफ रतन हीरा हर आप की आपा सारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे सो साहू सच्चा बणजारा बैराड़ी महला चौथा जप मान हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर त्याय सुखदाता जाका अंत न पारा वारा रहाउ अगन कुंट मह उर्द लिव लागा हर राख उदर मंजारा सो ऐसा हर सेव हो मेरे मन हर अंत छावन हारा जा कै हृदय बसिया मेरा हर हर तिस जन को करहो नमस्कारा।

सा व्रत पूजा जित हर स्यो प्रीत लगाए, बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी, एक खिन मैं

प्रसाद याक अर्ज गुप्तम पेश तो दरगोस पुन करतार हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल गिरफ तह दिल हेच ना दानी रहाउ जन पिसर पदर बिरादरा कसनेस दस्तंगीर आखर बेअपतम कस ना दारद चू स्वद तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी खयाल गाहे ना नेकी कार करदम मम ईचनी अहवाल बद बखत हम चोब खील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक तलंग महला पहला कर दूजा।

कर कासा दर्शन की भूख मैं दर मांगो नीता नीत तौ दर्शन की करो समाए मैं दर मांगत भीख्या पाए रहाउ केसर कुसुम मिर्ग मैं हरना सर्ब शरीरी चढ़ना चंदन भगता ज्योत अनेही सर्वे परमल करना के पट भांडा कह ना कोई ऐसा भगत वर्ण मह होय तेरे नाम निवे रहे लिव लाए नानक तिन दर भीख्या पाए तलंग महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद एह तन माया पाया प्यारी लीतड़ा लभ रंगाई मेरे कंपना पावे चोलड़ा प्यारी क्यों धन सीजै।

पाप की जंज लह काबल हो ताया, जोरी मंगै दान वे लालो, शर्म धर्म दोए शप खलोए, कूड़ फिरै परदान वे लालो, काजियां बामणा की गल थकी,

तू है तू होनहार, अगम अगाध ऊंच अपार, जो तुद सेव है तिन पहो दुख नाही, गुर प्रसाद नानक गुण गाही, जो दिसै सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप, सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक कर्म प्राप्त होए, जिन जपया तिस कौ बलिहार, तिस कै संग तरै संसार, कहो नानक प्रभ लोचा पूर संत।

कट कट मालिक दिलां का सच्चा परवदगार कुदरत कीम ना जानिए वड्डा वी परवाह कर बंदे तू बंदगी जिचर

करी तिन सद बलिहारी हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा गुर सेवा ते पाई है।

आपे हार एक रंग है, आपे बहु रंगी जो तिस पावे नानका। साई गल चंगी तलंग महला नौ काफी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चेतना है तू चेत लै, निस दिन मैं प्राणी छिन छिन औद बेहात है। फूटे घट ज्यो पानी रहाओ, हर गुण काहे ना गावे। मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लाग कै, नह मरन पछाना अजहू कछ बिगरियो नहीं। जो प्रभ गुण गावे कहो नानक ते भजन ते, निर्भय पद पावे तलंग महला नौ। जाग ले हो रे मना जाग ले, कहां गाफल सोया। जो तन उपजया संग ही, सो पी संग ना होया रहाउ। मात पिता सुत बंद जन, हित जां स्यो कीना। जियो छूट्यो जब देते, डार अगन मैं दीना। जीवत लो व्यवहार है, जग कौ तुम जानो। नानक हर गुण गाए लै, सब सुफन समानो।

संपत रथ धन राज सिउ अतने हो लगायो काल पास जब गल परी सब भयो परायो जान बूझ कै बावरे तैं काज बिगारियो।

नानक नाम संभाल तू बद्दा छुट है जेत सुई महला पहला जप तप का बंद बेड़ला जित लंग है वेहला ना सरवर ना पूछ।

वह भोगी हुए खाए, तपिया हुए तप करी, तीर्थ मल मल नहाई, तेरा सदड़ा सनीजै भाई, जे को बह अलाई रहाउ, जैसा बीजै सो लुणे, जो खट्टे सो खाई, अगे पुछ न हुवई, जे सण निशाने जाई, तैसो जैसा काढ़िऐ, जैसी कार कमाई, जो दम चेतना आवई, सो दम बिरथा जाए, एहो तन वेची बै करी, जे को लए विकाई, नानक कम ना आवई।

जोग ना देश दसंतर भवे जोग ना तीर्थ नाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है सतगुर भेटै ता सहसा टूटै धावत वर्ज रहाई है निचर चरै सहज धुन लागै घर ही परचा पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है नानक जीवत आमर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाज हो सिंगी वाजे तो निर्भउ पद पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत तो पाई है सूही महला पहला कौन तराजी कवन तुला तेरा कवन सराप बुलावा।

हर हर करहे नित कपट कमावहे, हृदा शुद्ध ना हुई, अन दिन कर्म करहे बहुतेरी, सुपने सुख ना हुई, ज्ञानी गुर बिन भगत ना होई, कोरे रंग कदे ना चढ़े, जे लोचे सब कोई रहाव, जप तप संयम वर्त करे पूजा, मनमुख रोग ना जाई, अंतर रोग महा अभमाना, दूजे पाए खुआई, बाहर भेख बहुत चतुराई।

गुण नाम दृढ़ाई हौ हर प्रभ प्यारा ढूंढ टुंडाई सत संगत मिल हर रस पाई तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई गुरु नानक तुठा मेले हर पाई सूही महला चौथा हर कृपा करे मन हर रंग लाई गुरमुख हर हर नाम समाई हर रंग राता मन रंग माणी सदा आनंद रहै दिन राती पूरे गुर कै शब्द समाने रहाउ हर रंग को लोचै सब कोई गुरमुख रंग चलूला होई मन मुख मुग्ध नर कोरा होई जिसो लोचै रंग ना होवै कोई नदर करे तां सतगुर पावै नानक हर रस हर रंग समावै सूही महला चौथा जिहवा हर रस रही अगाई गुरमुख पीवै सहज समाई हर रस जन चाखो जे पाई तौ कत अनत साध लुभाई रहाउ गुरमत रस राखो उरतार हर रस राते रंग मरार मनमुख हर रस चाखिया ना जाई हौ मैं करै बहुती मिलै सजाई नदर करे ता हर रस पावै नानक हर रस

शारा जिस घर विरती सोई जाने जगत गुरु नानक पूछ करो बिचारा चहो पीढ़ी आद जगाद बखीली किने ना पायो हर सेवक पाए निस्तारा सूही महला चौथा जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर कृपा ते हर मन वसै होरत बिद लया न जाई हर तन संचियै पाई जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ सत संगती संग हर तन खटियै होरत है होरत उपाय हर तन कितै ना पाई हर रतन का वापारिया हर रतन तन विहाजे कच्चे के वापारिये वाक हर तन लया ना जाई हर तन रतन जवे।

का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही। हलत पलत हर तन की भगतां को मिली वडियाई। हर धन निरपो सदा सदा अस्थिर है साचा। यो हर धन अग्नि तस्कर है पानी है जमदूत है। किसे का गवाया ना जाई हर धन को उचक्का नेड़ ना आवी। जम जा गाती डंड ना लगाई साख तू पाप करके बिखिया धन संचिया। तिना एक विख नाल ना जाई हलतै विच साकत दहेले पए। हथों छुड़क गया अगे पलत साकत हर दरगाह ढोई ना पाई। इस हर धन का साहु हर आप है संत हो। जिसनों दे सो हर धन लद चलाई। इस

जिसनो हर सो प्रसन्न हुए सो हर गुणा रवे सो भगत सो परवान तिसकी महिमा क्या वर्णी है जिसकै हृदय बसिया हर पुरख भगवान गोविंद गुण गाइए जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ सो सतगुरु सा सेवा सतगुर की सफल है जिसके पाइए परम निदान जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध सरेम दे सो निह

मान जो बिन परती कपटी कूड़ी कूड़ी अखी मीट दे उनका उत्तर जाएगा झूठ गमान। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह

स्वामी मैं तुदे आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पै करूं बेनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास, विचे धरती विचे पानी, विच काष्ट अगन तरीजै, बकरी सिंह इक तै थाए राखे, मन हर जाप।

आइए बुरा भला तुद सब किस सूझे जेहा को करे तेहा को पाइए मेरे साहिब तू अंतर की बिद जाने बुरा भला तुद सब किस सूझे तुद भावे तिवें भला वह रहाउ सब मोह माया शरीर हर किया विच देही मनुख भगत कराई एक ना सतगुर मेल सुख देव है एक मनमुख धंद पिटाई सबको तेरा तू सबना का मेरे करते तुद सबना सिर लिखिया लेख जे ही तू नदर करह तेहा को हुआ बिन नदरी नाही को भेख तेरी वडियाई तू है जान है सब तुदनो नित त्याई

त्रै गुण रूपी विच हों मैं कार कमाई, जिन किए तिसह ना चेतह बपड़े, हर गुरमुख सूझी पाई। हों मैं रोग सब जगत ब्यापिया, तिनको जन्म मरण दुख भारी, गुर प्रसादी को विरला छूटै, तिस जन को हों बलिहारी, जिन शिष्ट साजी।

मैं मालत हुई कहो नानक मेरी परम गत हुई सूही महला पंजवां कीता लोड़ है सो प्रभ होए तुझ बिन दूजा नाही कोई जो जन सेवे तिस पूर्ण काज दास अपने की राखो लाज तेरी सरन पूर्ण दयाला तुझ बिन कवन करे प्रतपाला रहाऊ जल थल महियल रहया परपूर।

लागै, ज्ञान रतन अंतरत सजागै, दुर्मत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम ते आए, दुए कर जोड़ करो अरदास, तुद भावे तायाण है रास, कर कृपा अपनी भगती लाई, जन नानक प्रभु सदा त्याई, सूही महला पंजवां, तन सुहागन जो प्रभु

पावै सा सुहागणी अंक समावै गर्भ गहेली महल ना पावै फिर पछतावै जब रहण बिहावै कर्महीन मनमुख दुख पावै बिनो करी जे जाना दूर प्रभ अविनाशी रहया भरपूर जन नानक गावै देख हदूर सूही महला पंजवा ग्रहवास गुर की ना हो घर की नार दस दासी कर दीनी पतार सगल समगरी मैं घर की जोड़ी आस प्यासी पिर को लोड़ी कवन कहा गुणकंत प्यारी सुगड़ स्वरूप दयाल मरारी रहाउ सत शिंगार पहु अंजन पाया अमृत नाम तंबोल मुख खाया कंगन बस्त्र गहने बने सुहावे तन सब सुख पावे जा फिर घर आवे गुण कामन कर कंतरी जाया वस कर लीना गुर भरम चुकाया।

जन नानक पिर धन मिल सुख पाया, सूही महला पंजवा उमके ओहियो मिलन प्रभ ताई, खोजत चरयो देखो प्रिय जाई, सुनत संदेसरो प्रिय ग्रह सेज बछाई, भ्रम भ्रम आयो तो नदर ना पाई, किन बिद ही अरो धीरै निमानो, मिल साजन हों तुझ कुर्बानो रहाओ, एका सेज विशी धन कंता।

पई नरासी बहुत दिन लागी, देश दसंतर मैं सगली झागी, खिन रहन ना पावूं बिन पग पागी, वे कृपाल प्रभ मिलह सुभागी, पयो कृपाल सतसंग मलाया, बूझी तपत करह फिर पाया, सगल शिंगार हुन मुझ सुहाया, कहो नानक गुर परम चकाया, जह देखा तह पिर है पाई।

माता मन नहीं प्रीत कह मुख राता कहो नानक प्रभ बिनो सुनी जय कुचल कठोर कामी मुक्त की जय दर्शन देखे की वडियाई तुम सुखदाते पुरख सुभाई रहाउ दूजा सूही महला पंजवा बुरे काम को ऊठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया अवसर अपना बूझे ना याना माया मोह रंग लपटाना रहाउ लोभ लहर को बिगस फूल बैठ।

पेखते अंधे छोड़ जाहे झूठे सब तंधे रहाओ। कहो नानक प्रभ बख्श करी जय, कर कृपा मुहे साध संग दी जय। तो किस पाइय जो होइय रेना जिसे।

जानवा। जीवत मरे बुझे प्रभ सोई, तिस जन कर्म प्राप्त होए। सुन साजन यों दुत्तर तरिया, मिल साधु हर नाम उच्चरिया रहाव। एक बिना दूजा नहीं जाने, घट घट अंतर पार ब्रह्म पछाने। जो किस करे सोई पल माने, आद अंत की कीमत जाने। कहो नानक तिस जन बलिहारी, जा कै हिरदय वसह मरारी। सूही महला पंजवा, गुर परमेश्वर करन है हार। सगल सिष्ट को दे आधार, गुर के चरण कमल मन त्याए। दुख दर्द इस तन ते जाए रहाव। पव जल डूबत सतगुर काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गांडै। गुर की सेवा करहो दिन रात, सुख सहज मन आवे शांत। सतगुर की रेन वड भागी पावे, नानक गुर को सद बल जावे। सूही महला पंजवा, गुर अपने ऊपर बल जाइए। आठ पैर हर हर जस गाई।

साजन सुत बंधप भाई, जत कत पीखो हर संग सहाई। जत मेरी पत मेरी धन हर नाम, सूख सहज आनंद विश्राम रहाव। पार ब्रह्म जप पहर सलाह, कोट आवद तिस बेदत नाही। हर चरण सरन गढ़ कोट हमारे, काल कंटक जम तिस ना बदारे। नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मरारी। सूही महला पंजवां, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा। आनंद बनोद मंगल।

राम आहार पूदाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुई महला पंजवा बहती जात कदे दृष्ट ना धारत मिथ्या मोह बंद है नित पारच माधवे भज दिन नित रैनी जन्म पदार्थ जीत हर सरनी रहाओ करत विकार दू कर चारत राम रतन रिद तिल नहीं धारत भरन पोखण संग औध बेहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी सरन समराते अगोचर स्वामी।

हम सिमर रत्नागर सिमर सिमर जीवा नारायण दुख रोग सोग सब बिन से गुरपूरे मिल पाप तजायन रहाउ जीवन पदवी हर का नाउ मन तन निर्मल साच सुआउ आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है पूर्व लिखत होए ता पाई है।

आस हर सेती राती राम रसायणी अन दिन माती बाहा पकर प्रभ आपे काढे जन्म जन्म के टूटे गांडे उधार स्वामी प्रभ कृपा तारी नानक दास हर सरन द्वारी सूही महला पंजवा संत प्रसाद निश्चल घर पाया सर्ब सुख फिर नहीं डोलाया गुरु त्याए हर चरण मन चीने ताते करता असथर कीने रहाउ गुण गावत अचुत अबनासी ताते काटी जम की फासी।

महला पंजवा दर्शन कौ लोचै सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाउ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई प्रेम बशोहा करत कसाई निर्दय जंत तिस दया ना पाई अनक जन्म बीतियन परमाई घर वास ना देवै दुत्तर माई दिन रैन अपना किया पाई किस दोष ना दीजै किरत पवाई सुन साजन संत जा

जित हर बिसराय रहाउ। अनद गरीबी साध संग जित प्रभ चेते आए। जल जाओ एहो बडपना माया लपटाई। पीसन पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोख आए। ऐसो राजना कितै काज जित नह त्रिपताई। नगन फिरत रंग एक कै ओहो शोभा पाई। पाट पटंबर बिरथिया जिहे रच लोभाई। सब किस तुमरै हाथ प्रभ आप करे कराई। सास सास सिमरत रहा नानक दान पाई। सूही महला पंजवा हर का संत प्राण धन तिसका पनिहारा। भाई मीत सुत सगल ते जी हूं ते प्यारा। रहाउ केसा का कर बीजना संत चौर टलावो। शीस निहारो चरण तल तूर मुख लावो। मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्याई। ताज अवमान सरनी परो हर गुण निद पाई।

सुखी ताकै पाछै जाऊं। छोड़ जाहे जो सगल कौ फिर लपटाऊं। करहो कृपा करनापति तेरे हर गुण गाओ। नानक की प्रभ बेनती साध संग समाऊं। राग सूही महला पंजवा घर पंजवा पड़ताल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया

रहाउ। निर्गुण हरिया सरगुण धरिया, अनक कोठरिया भिन भिन भिन भिन करिया, विच मन कोट वरिया निज मंदर प्रिया, तहां आनंद करिया नह मरिया नह जरिया, कीर्तन जुरिया बहु विद फिरिया, पर को हिरिया बिखना किरिया, अब साधु संग परिया, हर द्वारे खरिया दर्शन करिया, नानक गुर मिरिया बहुर ना।

सरनी आया पुरुषे आया कृपा आया ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी मार्ग गुरह पठाया रहाउ महादुत्तर माया जैसे पवन चलाया सुन सुन ही डराया करो धर्म राया गृह अंध कुपाया पावक सगराया गही ओट सधाया नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया राग सूही महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पास।

मिलिया पार ब्रह्म तेरिया चरना कहो बलिहारा राग सूही महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा पाना तू है मनाई।

करते का निमक सिमरत जित छूटै संतो हो सागर पार उतरिय जे को बचन कमावै संतन का सो गुर प्रसादी तरिय रहाओ कोट तीरथ मज्जन इशनाना इस कल मह मैल प्रिय साध संग जो हर गुण गावै सो निर्मल कर लीजै वेद कतेब सिमरत सब सासत इन पढ़िया मुक्त ना होई एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई खत्री ब्राह्मण सूद वैस अपदेश चौह वरना को सांझा गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मह।

जल थल महियल सोई रहाउ। कोट अपराधी संत संग उदर है, जम तां कै नेड़ ना आवे। जन्म जन्म का बिछड़िया हुवे, तिन हर

परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाउ। अंधकूप ते काढ लिए तुम आप भये कृपाला। सार संभाल सर्ब सुख दिए आप करे प्रतपाला। अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छाई। अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए। परम गया पै मोह बनासे मिटिया सगल वसूरा। नानक दया करी सुख दाता केटिया सतगुर पूरा। सूही महला पंजवा जब कसना सीओ तब क्या करता कमन कर्म कर आया।

चरण धूड़ तेरे जन की होवा, तेरे दर्शन कौ बल जाई, अमृत बचन हृदय उर धारी, तौ कृपा ते संग पाई, अंतर की गत तुद पह सारी, तुद जेवड़े अवर ना कोई, जिसनो लाए लह सो लागे, भगत तुहारा सोई।

पौ किस नाही जम नहीं आवे नेरे रहाउ जो तेरा रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्शना मेट कोई सतगुर का दिलासा नाम त्याइन सुख फल पाइन आठ पैर आराध है तेरी शरण तेरे परवास है पांच दुष्ट लै साध है ज्ञान ध्यान किस कर्म

राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना रहाओ सहज शिंगार कामन कर आवे ता सुहागण जा कंत पावे ना किस रूप ना रेखिया काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई।

ये भवै है बिन भागा धन नाही जियो अवगण मुठी जे फिर है बदक थाए ना पाहे जियो गुर राखे से उप

सच्चे की लिव उबरै बक्षे बक्षण हार जियो अनको की जय मित्रा खाक रल मर जाए जियो बहु रंग देख पुलाया

मूर्ख मन समझाए आखों के तड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा, नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना, जे चलह गुण नाल नाही दुख संतापना, मनमुख भरम भुलाना ना तिस रंग है, मरसी होए वडाणा मन तन भंग है, गुर की कार कमाए लाहा घर आणिया, गुरबाणी निर्वाण शब्द पछाणिया, एक नानक की अरदास जे तुद भावसी, मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी, सूही महला पहला ज्यों आरण लोहा पाए भन कढ़ाई है, त्यों साकत जोनी पाए भवै पवाई है, बिन बूझे सब दुख दुख कमावना, हों मैं आवै जाए भरम भुलावना रहाओ, तू गुरमुख रखण हार हर नाम त्याई है, मेलह तुझह रजाए शब्द कमाई है,

देही होवग खाक पमन उड़ाई है। एहो कितै घर औताक महल ना पाई है। देहो दीवी अंध कोर कब महाई है। गर्भ मुसै घर चोर किस रुआई है। गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है। शब्द निवारी आग जोत दी पाई है। लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाई है। सदा रहे निह काम जे गुरमत पाई है। रात देह हर नाम मन वसाई है। नानक मेल मलाए जे तुद पाई है। सूही महला पहला मनो ना नाम वसार अहन सत्याई है। जो राखै कृपा धार तिवै सुख पाई है। मैं अंदले हर नाम लकटी टोहनी रहो साहिब की टेक नामो है मोहनी रहाओ। जह देखो तह नाल गुर दे खालिया अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया। सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना तुद पावै तिवै रजाए परम पौ भंजना। जन्मत ही

निवाजिया, आपे थाप उथाप शब्द निवाजिया, देही पसमर लाए ना जापी कह गया, आपे रहया समाए सो विस्माद भया, तू ना ही प्रभ दूर जान है सब तू है गुरमुख।

तीजा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुरु प्रसाद नामे ही ते सब किश होआ बिन सतगुरु नाम ना जापे गुरु का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साध ना जापे कौडी बदले जन्म गवाया तीन सनाही आपे

साचा साचा शब्द सुनाई, गुरमुख काले गुरमुख खटे, गुरमुख नाम जपाए, सदा अलिपत साचे रंग राता, गुर कै सहज सुपाय, मनमुख सद ही कूड़ो बोले, बिख बीजे बिख खाए, जमकाल बादा तृष्णा दादा, बिन गुर कवन छिडाए, सच्चा तीरथ जित सत सर नावन, गुरमुख आप बुझाए, अठ सठ तीरथ गुर शब्द दिखाए, तित नातै मल जाए, सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मल लगे ना लाए, सच्ची सिफत सच्ची सलाह पूरे गुर ते पाए, तन मन सब किश हर तिस केरा, दुरमत

चाखी तृष्णा अग्न बुझाए। गुर कै शब्द राता सहजे माता सहजे रहे आसमाय। हर का नाम सत कर जाने गुर कै भाई प्यारी। सच्ची वडियाई गुर ते पाई सच्चै नाई प्यारी। एको सच्चा सब मह वरतै विरला को विचारी। आपे मेल लए ता बख्शे सच्ची भगत सवारी। सबो सच सच सच वरतै

ये जो मर खाक थी वाह मेरे साहिबा वाह, गुरमुख सदा सलाही है सच्चा वे परवाह रहाओ। दुनिया केरी दोस्ती मनमुख दज मरन, जमपुर बद्दे मारी है वेला ना लाहन। गुरमुख जन्म सकार था सच्चा शब्द लगन, आत्म राम पर गासिया सहजे सुख रहन। गुर का शब्द वसारिया दूजे पाहिर चन, तिस ना भूख ना उतरै अन दिन जलत फिरन। दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन, आप डुबे कुटंब स्यों सगले कुल डोबन। निंदा भली किसे की नाही मनमुख मुग्द करन, मुह काले तिन निंदका नरके घोर पवन। ए मन जैसा सेवह तैसा होवह, तेहे कर्म कमाए आप बीज आपे ही खावना, कहना किशु ना जाए। महापुरखा का बोलना हुए किते पर थाए, कोई अमृत भरे भरपूर है ओना तिल ना तमाए। गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेसेन, सेवड़ भागी जे ओना मिल रहे अन दिन नाम लेन। देसी रिजक संवाहे जिन उपाई मेदनी, एको है दातार सच्चा आप धनी। सो सच तेरे नाल है गुरमुख नदर निहाल, आपे बख्शे मेल लए सो प्रभ सदा संभाल। मन मैला सच निर्मला क्यों कर मिलया जाए, प्रभ मेले ता मिल रहे हम मैं शब्द जलाए। सो

आगै धरी विचों आप गवाए खिंचो तान विगुची है एक सस्यों लिव लाए हौ मैं मेरा छड तू ता सच रह समाए सतगुर नो मिले से पाहिरा सच्चा शब्द लगन सच मिले से ना बिछड़ है दर सच्चा दिसन से भाई से सजना जो सच्चा सेवन अवगुण वेकण पलरन गुण की सांझ करन गुण की सांझ सुख उपज सच्ची भगत करेन सच वणंज है गुर शब्द स्यों लाहा नाम लेन सोइना रूपा पाप कर कर संची है चलै ना चल दिया नाल मिण नावै नाल ना चल सी

तुझे अराधी दुख पी तुझे त्याई जे भुख दे ता इत ही राजा दुख विच सूख मनाई तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि

गुर सलाहिए उठदिया पी गुर अलाव कोई ऐसा गुरमुख जे मिले हौ तां के धुआ पाव कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो मैं प्रीतम दे मलाए सतगुर मिले हर पाया मिलिया सहज सुपाए सतगुर सागर गुण नाम का मैं तिस देखन का चाऊ हौं तिस बिन घड़ी ना जीवं बिन देखे मर जाऊं ज्यों मछली बिन पानी है रह ना कितै उपाए त्यों हर बिन संत ना जीवई बिन हर ना मैं मर जाए मैं सतगुर सेती पिरहड़ी

गुर तुठा देव माए, मैं धर सच्चे नाम की, हर नाम रहा लिव लाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामो दे दृढ़ाए। जिस प्राप्त सोल है, गुर चरणी लागे आए। अका

सतगुर मीत मलाया, मैं सदा सदा तेरा तान। सतगुर मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए, ओह अविनाशी पुरख है, सब मैं रहया समाए। राम नाम धन संचया, साबत पूंजी रास, नानक दरगाह मन्या, गुरपुरे साबास। राग सूही अष्टपदियां, महला पंजवां कर पहला, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। उर्ज रहयो बिख्या कै संगा, मनह व्यापत अनक तरंगा, मेरे मान अगम अगोचर, कत पाईए पूर्ण परमेश्वर रहाउ। मोह मगन में रहया व्यापे, अत तृष्णा कबहू नहीं त्रापे,

अंत प्रभ सोई, नानक तिस बिन अवर ना कोई। राग सूही महला पंजवा, अष्टपदिया कर नौवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिन डिठिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो। संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ स्यों रंग जियो।

मन बुठा निरंकार जियो तां का अंत न पाईऐ। ऊंचा अगम अपार जियो जिस प्रभ अपना विसरै, सो मर जम्मै लख वार जियो। साच नेहो तिन प्रीतमा जिन मन बुठा आप जियो, गुण सांझी तिन संग बसे आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रते परमेश्वरै बिनसे सगल संताप जियो, तू करता तू करनहार तू है एक अनेक जियो। तू समरथ तू सर्ब मैं तू है बुद्ध विवेक जियो, नानक नाम सदा जपी

दाथड़ी नित हृदय रखा संभाल पाम जलाई पंध तौ नैनी दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानियां जे गुर जीवै कृपाल किती

आस जियो, तुद अंतर हो सुख वसा, तू अंतर सा बास जियो, भाणे तखत वडाइया, भाणे भीख उदास जियो, भाणे थल सिर सर्व है, कमल फुले आकाश जियो, भाणे भवजल लंघी है, भाणे मंज परियास जियो, भाणे सो सहो रंगला, सिफत रत्ता गुणतास जियो, भाणे सहो पिहावला, हौ आवन जान मुई आस जियो, तू सहो अगम अतोलवा, हौ कह कह कह पई आस जियो, क्या मांगो क्या कह सुनी, मैं दर्शन भू

लाए जियो, सोई दस उपदेसड़ा, मेरा मन अनक ना काहू जाए जियो, एहो मन तै कूडे वसा, मैं मार्ग देहो बता।

सी चित मह मेरा सबो दुख गवाई दियो। इत मार्ग चले भाई अड़े गुर कह सो कार कमाई दियो। त्यागे मन की मतड़ी।

मनसा पूर रहे आप पूरे हर की नार सो सर्व सुहागण रांड ना मैल विस्ती नानक मैं वर साचा पावे जुग जुग प्रीतम तैसे बाबा लगन गणाए हम पी वन्या सोहरे बलराम जियो साहा हुक्म रजाए सो ना तले जो प्रभ करे बलराम जियो किरत पया करते कर पाया मेट ना सके कोई जानी नाओ नरह ने केवल रब रहिया तेहो लोई माए नरासी रोए बछुनी बाली बाले हेते नानक साच शब्द सुख महली गुर चरणी प्रभ चेते बाबुल दितड़ी दूर ना आवे कर पेय बलराम जियो रहस्ती वेख हदूर फिर रावी कर सोही है बलराम जियो साचे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मत पूरी प्रधानी।

पाद हम कर साजने आए साचै मेल मलाए सहज मलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिस सेती मन लाया अन दिन मेल भया मन मानिया कर मंदर सोहाई पंच शब्द तुन अनहद वाजी।

मिलिया भाई सुभाई, नानक साजन को बल जाइए, साच मिले घर आई, घर आयड़े साजना ता तन खरी सरसी राम, हर मोह अड़ी साच शब्द ठाकुर देख रहंसी राम, गुण संग रहंसी खरी सरसी जा रावी रंग रात, अवगुण मार गुणी घर छाया, पूरे पुरख बधातै तस्कर मार वसी पंचायन, अदल करे विचारी नानक राम नाम ने सतारा, गुरमत मिलह प्यारे वार पायड़ा बालड़िए, आसा मनसा पूरी राम, फिर रावे अड़ी शब्द रली राव रहया नह दूरी राम, प्रभ दूर ना होई घट घट सोई, तिसकी नार सबाई आपे रसिया आपे रावे, ज्यों तिस दी वडियाई अमर अडोल अमोल अपारा, गुरपूरे सच पाई नानक आपे जोग संजोगी, नदर करे लिवलाई है फिर उचड़ी है माड़ी है, तेहो लोआ सिर ताजा राम, हों विसम पई देख गुणा अनहद शब्द अगाजा राम, शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो, नाम बिना खोटे नहीं ठाहर नाम रतन परवानो, पत मत पूरी पूरा परवाना ना आवे ना जास्ती, नानक गुरमुख आप पछाणे प्रभ जैसे अवनास्ती।

में झूले ना गुर शब्द सुनाया मन परदेसी जेती है सब देश पराया गुर महली घर अपने सो भर पुर लीना सेवक सेवा तां करे सच शब्द पतीना शब्दे पतीजे अंक पीजे सो महल महला अंतरे आप करता करे सोई प्रभ आप अंत निरंतरे गुर शब्द मेला ता सुहेला पा जंत अनहद बीना गुर महली घर अपने सो भर पुर लीना कीता क्या साला ही है कर वेखै सोई तां की कीमत ना पवै जे लोचै कोई कीमत सो पावै आप जनावै आप भुल ना भुले जय जयकार करह तुद भाव है गुर कै शब्द अमुले हीनो नीच करो बेनंती साच ना छोड़ो भाई नानक जिन कर देखिया देवै मत साई राग सूई संत महला तीजा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख सोहिलड़ा हर त्याहु गुरमुख हर फल पावहु गुरमुख फल पावहु हर नाम त्याहु जन्म जन्म के दुख निवारे बलिहारी गुरे अपने विटोह जिन कार्य सब सवारे हर प्रभ कृपा करे हर जापहु सुख फल हर जन पावहु नानक कह सुनो जन भाई सुख सोहिलड़ा हर त्याहु सुन हर गुण पीने सहज सुपाई गुरमत सहजे नाम त्याय जिनको तुर लिखिया तिन गुर मिलिया तिन जन्म मरण पहु भागा अंदरों दुरमत दूजी खोई सो जन हर लिव लागा जिनको कृपा कीनी मेरा स्वामी तिने अन दिन हर गुण गाए सुन मन पीने सहज सुपाई जुग मह राम नाम निस्तारा गुरते उपजै शब्द विचारा गुर शब्द विचारा राम नाम प्यारा जिस कृपा करे सो पाए।

त्रिपट अगाही, हर गुण गाए सदा त्रिपतासी, फिर भूख न लागे आई, दह दिस पूज हो हर जन की, जो हर हर नाम त्याई।

खाणै तै भगत मीठी लागी अन दिन भगत करहै दिन राती घर ही मह बैरागी भगती राते सदा मन निर्मल हर जियो वेखहै सदा नाले नानक से भगत हर कै दर साचे अन दिन नाम संभाले मन मुख भगत करहै बिन सतगुर बिन सतगुर भगत ना होई राम हउमै माया रोग व्यापे मर जन्मै दुख होई राम मर जन्मै दुख होई दूजै पाए परज बिगोई बिन गुर तत ना जानिया भगत विहूणा सब जग भरमिया अंत गया पछतानिया कोट मदे किने पछाणिया हर नामा सच सोई नानक नाम मिलै वडियाई दूजै पाए पत खोई भगतां कै कर कारज साचा हर गुण

गर्भ ना जूनी वासा ज्योति ज्योत मलाई सत समाई सच नाए परगासा जिन्नी सच जाता से सच्चे होए अन दिन सच त्याएन नानक सच नाम जिन हिरदय वसिया ना विछड़ दुख पाएन सच्ची बाणी सच्चे गुण गाव है तित कर सुहला होई राम निर्मल गुण साचे तन मन साचा विच साचा पुरख प्रभ सोई राम सब सच वरतै सचो बोलै जो सच करै सो होई जह देखा तह सच पसरिया अवर ना दूजा कोई सच्चे उपजै सच समावै मर जन्मै दूजा होई नानक सब किछे आपे करता आप करावै सोई सच्चे भगत सो है दरबारी सचो सच वखाणे राम घट अंतरे साची बाणी साचो आप पछाणे राम आप पछाण है तां सच जान है साचे सोजी होई सच्चा शब्द सच्ची है सुबा साचे ही सुख होई साच रते भगत एक रंगी दूजा रंग ना कोई नानक जिस को मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई तू ही महला तीजा जुग चारे तन जे भवै बिन सतगुर सुहाग ना होई राम निश्चल राज सदा हर केरा तिस बिन अवर ना कोई राम तिस बिन अवर ना कोई सदा सच सोई।

करावे, मन माने सुख होई। सतगुर सेव धन बालड़िए, हर वर पाव है सोई राम। सदा होवे है सुहागणी, फिर मैला वेस ना होई राम। फिर मैला वेस ना होई, गुरमुख बूझे कोई। हम मैं मार पछाणिया, करनी कार कमावे, शब्द समावे अंतर एको जानिया। गुरमुख प्रभ रावे दिन राती अपना, साची सुभा हुई। नानक कामन पिर रावे अपना, राव रहे आ प्रभ सोई। गुर की कार करे धन बालड़िए।

सच समाए सच वरत है सब थाई सच्चा श्रृंगार करे दिन राती कामन सच समाई हर सुख दाता।

गुरमति घट चानण होआ। प्रभ रव रहिया सब थाई राम, प्रभ रव रहिया सब थाई मन वसाई। पूर्व लिखिया पाया सेज सुखाली मेरे प्रभ पाणी, सच सिंगार बनाया कामन निर्मल हउमै मल खोई। गुरमत सच समाई नानक आप मलाई, करतै नाम नवै निध पाई।

गुर का शब्द वस्या घट अंतर से जन शब्द सुहाई नानक तिन घर सद ही सोहिला हर कर कृपा घर आई भगता मन आनंद भया हर नाम रहे लिवलाए राम गुरमुखे मन निर्मल हुआ निर्मल हर गुण गाए राम निर्मल गुण गाए नाम मन वसाए हर की अमृत बाणी जिन मन वसया से जन निस्तरे घट घट शब्द सुमाणी तेरे गुण गाव है सहज समाव है शब्दे मेल मलाई नानक सफल जन्म तिन केरा जे सतगुर हर मार्ग पाई संत संगत सिउ मेल भया हर हर नाम समाए राम गुर कै शब्द सद जीवन मुक्त भये हर कै नाम लिव लाए राम हर नाम चित लाए गुर मेल मलाए मनुआ रता हर नाले सुखदाता पाया मोह चकाया अन दिन नाम संभाले गुर शब्दे राता सहजे माता नाम मन वसाए नानक तिन घर सद ही सोहिला जे सतगुर सेव समाए बिन सतगुर जग भरम भुलाया।

दुख गवाया जा हर मन पाया सदा गावह रंग राते हर के भगत सदा जन निर्मल जुग जुग सद ही जाते साची भगत करह दा।

सुख होई सूही महला तीजा। जे लोड़ है वर बालड़िए ता गुर चरणी चित लाए राम। सदा हो वह सुहागणी हर जियो मरे न जाए राम। हर जियो मरे न जाए गुर कै सहज सुपाई। सा धन कंत प्यारी सच संजम सदा है निर्मल। गुर कै शब्द शिंगारी मेरा प्रभ साचा सद ही साचा। जिने आपे आप उपाया नानक सदा पिर।

गुरमति मन आनंद भया, तित तन मैल न राती राम। तित तन मैल न राती हर प्रभ राती, मेरा प्रभ मेल मलाए। अनदिन रावे हर प्रभ अपना, विचो हो आप गुआए। गुरमत पाया सहज मलाया, अपने प्रीतम राती। नानक नाम मिले वडियाई, प्रभ रावे रंग राती।

हर मन तनो गुरमुख भीजै, राम नाम प्यारे राम, राम नाम प्यारे सब कुल उधारे, राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया, कर अनहद सुरत सुमाणी, हर हर एको पाया हर प्रभ।

प्रभ अत ऊचा क्यों कर मिलिया जाए राम। गुर मेली बहु कृपा तारी हर कै शब्द सुपाए राम। मिल शब्द सुपाए आप गवाए रंग स्यों रलिया माणी। सेज सुखाली जा प्रभ पाया हर हर नाम सुमाणी। नानक सुहागन सावड भागी

ताटक ते सबना विच एको एको राम पतारो राम इकना प्रभ दूर वसै इकना मन आधारो राम इकना मन आधारो सिरजन हारो वडभागी गुर पाया घट घट हर प्रभ एको स्वामी गुरमुख अलख लखाया सहजे आनंद हुआ मन मानिया नानक ब्रह्म विचारो घट घटे सब

हर धूड़ देव हो मैं पूरे गुर की, हम पापी मुक्त कराया राम। पापी मुक्त कराए आप गुआए, निज कर पाया वासा, विवेक बुद्धि सुख रहन विहानी, गुरमत नाम परगासा। हर हर आनंद भया दिन राती,

परम गत पाई पंच मेले सुहाया गया क्रोध ममता तन नाथी पाखंड भरम गवाया हौ मैं पीर गई सुख पाया अरोगत भये शरीरा गुर प्रसादी ब्रह्म पछाता नानक गुणी गहीरा मनमुख विछड़ी दूर महल ना पाए बल गई बलराम जियो अंतर ममता कूर कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जियो कूड़ कपट कमावे महा दुख पावे विन सतगुर मग ना पाया उजड़ पंथ भ्रमे गावारी खिन खिन धक्के खाया आपे दया करे प्रभदाता सतगुर पुरख मलाए जन्म जन्म के विछड़े जन मेले नानक सहज सुपाए आया लगन गणाए हिरदय धन ओमाहिया बलराम जियो पंडित पांदे आन पत्ती बह वाचाइया बलराम जियो पत्ती वाचाई मन बजी वधाई जब साजन सुने घर आए गुणी ज्ञानी बह मता पकाया फेरे तत दिवाए वर पाया पुरख अगम अगोचर सद नवतन बाल सिखाई नान

वेद धर्म दृढ़ हो, पाप तजाया बलराम जियो, धर्म दृढ़ हो हर नाम त्याव हो, सिमरत नाम दृढ़ाया, सतगुर गुरु पूरा आराध हो, सब किल विख पाप गुआया, सहज आनंद हुआ बड़ भागी,

स्वामी सर्व रहे आपर पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाम चलाई अनहद शब्द बजाए हर तीजड़ी लाम मन चाओ भया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया बडभागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना बडभागी पाया हर कथिया अकथ कहानी हृदय हर हर हर धुन उपजी हर जपिया मस्तक भाग जियो जन नानक बोले तीजी लावे हर उपजै मन बैराग जियो हर चौथड़ी लाम मन सहज भया हर पाया बल नाम जियो गुरमुख मिलिया सुपाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अन दिन हर लिव लाई मन चिंदिया।

हर पाया प्रभ अविनाशी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग सूई संत महला चौथा कर दूजा गुरमुख हर गुण गाए हृदय रसन रसाए हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए मिलिया सहज सुपाए अन दिन भोग भोगे सुख सोवे शब्द रह लिवलाए वड्डे भाग गुरपूरा पाईए अन दिन नाम त्याए सहजे सहज मिलिया जग जीवन नानक सुन समाए संगत संत मलाए हर सर निर्मल नाए निर्मल जल नाए मैल गवाए भये पवित्र शरीरा दुर्मत मैल गई भ्रम भागा हम मैं बिनठी पीरा नदर प्रभु सत संगत पाई निज कर होआ वासा हर मंगल रस रसन रसाई नानक नाम परगासा अंतर रतन बीचारी गुरमुख नाम प्यारी हर नाम प्यारे शब्द निसतारी अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया घट चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प शिंगार बनाई हर प्रभ साचे पाया जो प्रभ कह सोई पर की जय नानक अंक समाया हर प्रभ काज रचाया गुरमुख व्याहन आया गुरमुख हर पाया।

संत जन हो गुण गाव है गोविंद केरे राम। गुरमुख मिल रही है कर वाज है शब्द कनेरे राम। शब्द कनेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब थाई

पूजा नानक गुरमुख एक पछाण अवर ना जाने दूजा सब मह रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम गुर शब्द रवे रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी कट कट रवया सोई गुरमत सच पाईए सहज समाईए तिस बिन अवर ना कोई सहजे गुण गावा जे प्रभ भावा आपे लए मलाए नानक सो प्रभ शब्दे जापै अहनस नाम त्याए एहो जगो दुत्तर मनमुख पार न पाई राम अंतरे हउमै ममता काम क्रोध चतुराई राम अंतर चतुराई थाए ना पाई बिरथा जन्म गवाया जम मग दुख पावे चोटा खावे अंत गया पछताया बिन नावे को बेली नाही पुत कटंब सुत पाई

राम। सतगुर पाए चलो हो, जीवत्यां इव मरियै राम। जीवत्यां मरियै पौ जल तरियै, गुरमुख नाम समावै। पूरा पुरख पाया बड़ भागी, सच नाम लिव लावै। मत परगास भई मन मानिया, राम नाम वडियाई। नानक प्रभ पाया शब्द मलाया, ज्योति ज्योत मिलाई। सूही महला चौथा कर पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर संत जनो प्यारा मैं मिलिया, मेरी तृष्णा बुझ गई आसे। हो मन तन देवा सतगुरै, मैं मेले प्रभ गुणतासे। तन तन गुरु वड पुरख है, मैं दसे हर साबासे। वड भागी हर पाया, जन नानक नाम वगासे। गुर सज्जन प्यारा मैं मिलिया, हर मार्ग पंथ दसाहा। कर आव हो चिरी विछुनिया, मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा। हौ तुझ बाजो खरी उडीनिया, ज्यों जल बिन मीन मराहा। वड भागी हर त्याया, जन नानक नाम समाहा। मन दह दिस चल चल भरमिया, मन मुख परम भुलाया। नित आसा मन चितवै, मन तृष्णा भूख लगाया। अनता धन धर दबिया, फिर बिख पालन गया। जन नानक नाम सलाहे तू, बिन नावै पच पच मोया। गुर सुंदर मोहन पाए करे, हर प्रेम बाणी मन मारिया। मेरा हिरदय सुध बुध विसर गई, मन आसा चिंत वसारिया। मैं अंतर वेदन प्रेम की, गुर देखत मन साधारिया। वड भागी प्रभ आए मिल, जन नानक खिन खिन वारिया। सूही संत महला चौथा, मारे हिस्वे जन हूं मैं बिखिया। जिन हर प्रभ मिलन ना दितिया, दे कंचन वे वन्निया। इन हूं मैं मार विगुतिया, मोह माया वे सब कालखा। इन मनमुख मूड सजुतिया, जन नानक गुरमुख उबरे। गुर शब्दी हूं मैं छुटिया, बस आने हो वे जन। इस मन को मन बासे ज्यो नित पौंदिया, दुख रहन वे विहानिया। नित आसा आस करेंदिया, गुर पाया वे संत जनो। मन आस पूरी हर चौधिया, जन नानक प्रभ देहु मती। साडे आसा नित सुख सौंदिया, सा तन आसा चित करे राम राजिया। हर प्रभ से जड़ी है आई, मेरा ठाकुर अगम दयाल है।

हत गुलाला शब्द चीन गुर मीठा मिथ्या मोहे मगनसी रहया झूठ संग लपटाना नानक दीन सरन कृपा निद राख लाज भगताना सुन बावरे सेव ठाकुर नाथ पुराणा सुन बावरे जो आया तिस जाना निश्चल हब वैसी सुन परदेसी संत संग मिल रही है हर पाईऐ भागी सुन बैरागी चरण प्रभु गह रही है एहो मन दीजै संक ना कीजै गुरमुख तज बहु माणा नानक दीन।

गर्भ गवानू निश्चल हब जाना मिथ्या मान संत प्रभु हुए दासा जीवत मरिय भौजल करिय जे थीवै कर्म लिखियासा गुर से बीजै अमृत पीजै जिस लाभ है सहज त्यानू नानक शरण पया हर।

रहन आस तुम्हारी सफल दर्श भेटिया गुरपूरा नानक सद बलिहारी संभलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जियो सतगुर मिलिया दयाल गुण अविनाशी गाया बलराम जियो गुण गोविंद गाओ नित नित

मनुख नासे रहस उपजै मन घणा मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुख भणा होए रेण साधु प्रभ आराधु अपने प्रभ पावा बिनवंत नानक दया धार हो सदा हर गुण गावा गुर मिल सागर तरिया हर चरण जपत निस तरिया हर चरण त्याए सब फल पाए मिटे आवन जाना पाए भगत सुपाए हर जप अपने प्रभ पावा जप एक अलख अपार पूर्ण तिस बिना नहीं कोई बिनवंत नानक गुर भरम खोया जत देखा तत सोई पतत पावन हर नामा पूर्ण संत जना के कामा गुर संत पाया प्रभ त्याया सगल इच्छा पुनिया हों ताप बिन से सदा सरसे प्रभ मिले चिरी वछुनिया मन शांत आई वजी वधाई मनहु कदे ना विसरै बिनवंत नानक सतगुर दरड़ाया सदा भज जगदीसरै राग सूई संत महला पंजवां घर तीजा।

तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम पेर हम बहुरिया राम। तुम वड्डे वड्डे वड ऊचे, हौ इतनी कलहरिया राम। हौ किस नाही एको तू है, आपे आप सुजाना। अमृत दृष्ट निमख प्रभ जीवा, सर्ब रंग रसमाना। चरण सरनी दासा दासी, मन मौलै तन हरिया। नानक

जीवन्या, तू पर्वत मेरा ओला राम। हौ बल जाई लख लख लख बरिया, जिन भ्रम परदा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बिकारी, ठाकुर सिउ मन माना। प्रभ जी पाणी पई निकाणी, सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली, मुकत जुगत दर खुला। कहो नानक हौ निरपो होई, सो प्रभ मेरा ओला। सूही महला पंजवां।

सदा सदा प्रभु कहो बलिहारे नानक सद कुर्बाना ऐसा गुर वड भागी पाई है जित मिले प्रभु जापै राम जन्म जन्म के किलविख उतर है हर संत धूड़ी नित नापै राम हर धूड़ी नाई है प्रभु ते आई है बहुड़ जोन ना आई है गुर चरणी लागे ब्रह्म पौ भागे मन चिंदिया फल पाई है हर गुण नित गाए नाम ते आए फिर

हर गुण निधि हर संतन कै वासिया ही राम, संत चरण गुर सेवा लागी तिन्नी परम पद पाई राम। परम पद पाया आप मिटाया हर पूरन कृपा धारी, सफल जन्म हुआ पौ भागा हर भेटिया एक मरारी। जिसका साथ नहीं मेल लिया ज्योति ज्योत समाया, नानक नाम निरंजन जपिए मिल सतगुर सुख पाया। गाओ मंगलो नित हर जनो।

आया सगल मनोरथ पाई शांत सहज आनंद कनेरे गुर चरणी मन लाए पूर रहया घट घट अविनाशी थान थनंतर साई कहो नानक कार्य सगले पूरे

प्यारे मुख हर अरादे मेरा राम हर अरादे जम पंथ साधे दुख ना व्यापै कोई जल थल मही अलपूर।

तेरा कोट करण दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिया है अबलासी राम सुन सुन एहो मन निर्मल हुवै कटियै काल की फासी राम कटियै जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना हर हर जप जपियै दिन राती लागै सहज ध्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा की जय हर गुण सुनिए अवनासी।

सगली तप्त बनासी राम, दुख पाप का डेरा ढाठा, कारज आया रासी राम। हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया, साच धर्म पुन फलिया, सो प्रभ अपना सदा त्याई, सोवत बैसत खलिया। गुण निधान सुख सागर स्वामी, जल थल महियल सोई, जन नानक प्रभ की सरनाई, तिस बिन अवर ना कोई। मेरा घर बनिया बन ताल बनिया, प्रभ परसे हर राया राम। मेरा मन सुहया मीत साजन सरसे, गुण मंगल हर गाया राम। गुण गाए प्रभु त्याए साचा, सगल इच्छा पाइया। गुर चरण लागे सदा जागे, मन वजिया वाधाइया। करी नदर स्वामी सुखागामी, हलत पलत सवारिया। बिनवंत नानक नित नाम जपिया, जियो पिंड जिन तारिया। सूही महला पंजवां, भै सागरो भै सागर तरिया। हर हर नाम त्याए राम, बोहि थड़ा हर चरण अरादे। मिल सतगुर पार लंघाए राम, गुर शब्दी तरिया बहुड़ ना मरिया। चूकै आवन जाना जो किश करै सोई भल मानो, ता मन सहज समाना। दुख ना भूख ना रोग ना व्यापै, सुख सागर सरनी पाए। हर सिमर सिमर नानक रंग राता, मन की चिंत मटाए। संत जना हर मंत्र दृढ़ाया, हर साजन वसगत कीने राम। आपनड़ा मन आगे धरिया, सरबस ठाकुर दीने राम। कर अपनी दासी मिटी उदासी, हर मंदर थित पाई। अणद बनोद सिमरहु प्रभ साचा, विछड़ कबहू ना जाई। सावड़ भागन सदा सुहागन, राम नाम गुण चीने। कहो नानक रवह रंग राते, प्रेम महारस पीने। अनद बनोद भये नित सखिए, मंगल सदा हमारे राम। आपनड़ै प्रभ आप शिंगारी, शोभावंती नारे राम। सहज सुभाए भये कृपाला, गुण अवगुण ना बीचारिया। कंठ लगाए लिए जन अपने, राम नाम उर धारिया। मान मोह मद सगल व्यापी, कर कृपा आप निवारी। कहो नानक पै सागर तरिया, पूरन काज हमारी। गुण गोपाल गाव हो नित सखी हो, सगल मनोरथ पाए राम। सफल जन्म हुआ मिल साधु, एक अंकार त्याए राम। जप एक प्रभु अनेक रविया, सर्व मंडल छाया। ब्रह्मो पसारा ब्रह्म पसरिया, सब ब्रह्म दृष्टि आया। जल थल महियल पूर पूरन, तिस बिना नहीं जाए। पेख दर्शन नानक बिगसे, आप लए मलाए। सूही महला पंजवां, अब चल नगर गोविंद गुरु का। नाम जपत सुख पाया राम, मन इच्छे से ही फल पाए। करते आप बसाया राम, करते आप बसाया सर्व सुख पाया। पुत भाई सिख बिगासे, गुण गावे है पूर्ण परमेश्वर। कारज आया रासे, प्रभ आप स्वामी आपे रखा। आप पिता आप माया, कहो नानक सतगुर बलिहारी। जिन एहो थान सोहाया, कर मंदर हट नाले सोहे। जिस विच नाम निवासी राम, संत भगत हर नाम अरादह। कटिए जम की फासी राम, काटी जम फासी प्रभ अवनासी। हर हर नाम त्याए, सगल समग्री पूरन होई। मन इच्छे फल पाए, संत सज्जन सुख मान है रलिया। दुख दर्द भ्रम नासी, शब्द सवारे सतगुर पूरे। नानक सद बल जासी,
दात खसम की पूरी होई, नित नित चढ़े सवाई राम। पार ब्रह्म खसमाना किया, जिस दी वड्डी वड्याई राम। आद जगाद भगतन का राखा, सो प्रभ भया दयाला। जी जंत सब सुखी वसाए, प्रभ आपे कर प्रतपाला। दह दिस पूर रहया जस स्वामी, कीमत कहन ना जाई। कहो नानक सतगुर बलिहारी, जिन अब चल नीम रखाई। ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर, हर हर कथा नित सुनिए राम। अनहद चोज भगत पाव पंजन, अनहद वाजे तुनिए राम। अनहद चुनकारे तत बीचारे, संत गोष्ठ नित होवे। हर नाम अराध है, मैल सब काट है। किलविक सगले खोवे, तह जन्म ना मरना आमन जाना। बहुड़ ना पाईऐ जुनी है, नानक गुर परमेश्वर पाया। जिस प्रसाद

गोविंद आनंद उपजे साध संगत संग बनी जिन उद्यम किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी हथ सत तीरथ पुन किरिया महा निर्मल चारा पतत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द अधारा।

ज्ञान की जय विसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाय अनदिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पीजै दिनवंत नानक इच्छ पुन्नी देख दर्शन जीजै राग सूही महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिठ

अवगण को नाच तारी, पतत पावन हर बिरद सदाई, एक तिल नहीं पन्ने काली, कट कट वासी सर्ब नवासी, नेरा ही ते नेरा, नानक दास सदा सरनागत, हर अमृत सज्जन मेरा, हौ बिस्म भई जी, हर दर्शन देख अपारा, मेरा सुंदर स्वामी जी, हौ चरण कमल पग शारा, प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा, तिस जेवड़े अवर ना कोई, आदि अंत मद प्रभ रविया, जल तल मही अल सोई, चरण कमल जप सागर तरिया, पवजल

प्राण आधार, गुर सतगुर कहे आजी साचा अगम बीचारु, मिल साधु दीना ता नाम लीना, जन्म मरण दुख नाथे, सहज सुख आनंद कनेरे, हौ मैं बिनठी गाठे, सब कै मद सब हूं ते बाहर, राग दुख ते न्यारू, नानक दास गोविंद सरनाई, हर प्रीतम मने सधारू, मैं खोजत खोजत जी, हर निश्चल सो कर पाया, सब आत्रो डिथे जीओ, तां चरण कमल चित लाया, प्रभ अवनासी हौं तिसकी दासी, मरै न आवै जाए, धर्म अर्थ काम सब पूरन, मन चिंदी इच्छ पुजाए, श्रुत सिमरत गुण गावह करते, सिद्ध साधक मुन जन त्याया, नानक सरन कृपा निज स्वामी, वडभागी हर हर गाया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, वार सूही की सलोका नाल महला तीजा, सलोक महला तीजा, सूहै वेश दुहागणी, पर पिर रावण जाए, पिर छोड़िया घर अपने, मोही दूजे पाए, मिठा करके खाया, बहु साधु वध्या रोग, शुद्ध पतार हर छोड़िया, फिर लगा जाए विजोग, गुरमुख होवै सो पलटिया, हर राती साज शिंगार, सहज सच पिर रावया, हर नामा उर धार, आज्ञाकारी सदा सुहागण, आप मेली करतार, नानक पिर पाया हर साचा, सदा सुहागण नार, महला तीजा, सूहविये निमाणिये, सो सहो सदा समाल, नानक जन्म सवार है अपना, कुल पी छुट्टी नाल पौड़ी, आपे तख्त रचायुन, आकाश पताला, हुक्मे धरती साजियन, सच्ची धर्मशाला, आप उपाय खपाए दा, सच्चे दीन दयाला, सबना रिजक संवाहे दा, तेरा हुक्म नराला, आपे आप वर्तदा, आपे प्रतपाला, सलोक महला तीजा, सूहब तां सुहागणी, जा मन लै है सच नाऊ,

मुंद सहावी सोहनी जिस कर सहज पतार नानक सा धन रावी है रावे रावण हार पौड़ी मोह कूड़ कटंब है मनमुख मुग्ध रत्ता हऊ मैं मेरा कर मोए किस साथ ना लिता सिर उपर जमकाल ना सुजई दूजे परमिता फिर वेला हाथ ना आवई जमकाल वस किता जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता सलोक महला तीजा सतियां एह ना आखियन जो मढ़िया लग जलन नानक सतियां जानियन जे बिरहे चोट मरन महला तीजा पीसो सतियां जानियन सील संतोख रहन सेवन साई अपना नित उठ संभालन महला तीजा कंता नाल मेहदियां सेती अग जलाहे जे जान है तेरे अपना ता तन दुख सहाहे नानक कंत ना जाननी से क्यों अग जलाहे भावै जीवो कै मरो दूर हो ही भज जाहे पौड़ी तुद दुख सुख नाल उपाया लेख करतै लिखिया नावै जेवड़ होर दात नाही तिस रूप ना रिखिया नाम अखुट निदान है गुरमुख मन वसिया कर कृपा नाम देव सी फिर लेख ना लिखिया सेवक भाए से जन मिले जिन हर जप जपिया।

0: नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी सच ध्यान से सच्चे
1: गुर शब्द विचारी
0: हम मैं बाहर मन निर्मला हर नाम पुरतारी कोठे मंडप माड़िया लग पए गावारी जिन की ये तिसह ना जाननी मन मुख गोबारी जिस बजाए सो बुझ सी सच्चिया
1: क्या जंत विचारी।
0: श्लोक महला तीजा कामन तो शिंगार कर जा पहला कंत मनाए मत से जय कंत ना आवई इवें बिरथा जाए कामन पिर मन मानिया तो बनिया शिंगार किया तो प्रवान है जा सहो धरे प्यार पाओ शिंगार तंबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौंपे कंत को तो नानक भोग करे। महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया शिंगार सेजै कंत ना आयो इवें भया विकार। महला तीजा तन फिर एह ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति तन फिर कहिए सोए पौड़ी पै बिन भगत ना होवी नाम ना लगे प्यार सतगुर मिले पौ उपजे पै पाए रंग सवार तन मन रत्ता रंग स्यों हो मैं तृष्णा मार मन तन निर्मल अत सोहना भेटिया कृष्ण मरार पौ पाओ सब तिसदा सो सच वरतै संसार। श्लोक महला पहला वाह कसम तू वाह जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुंद सर

सो पुरख सजान गुरप्रसादी सेवी सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान।

निशान नानक नाम लाहा परवान घर आए बजी वधाई सच नाम की मिली वडियाई महला पहला राती होवन कालिया सोपे दा सेवन देहु बग्गा तपै घणा कालिया काले वन अंधे अकली बाहरी

हर सच्चै आपी एक दूजे भाई खुआयन होमै विच व्यापे यो मानस जन्म दलंब सा मनमुख संतापे जिस आप बुझाए सो बुझसी जिस सतगुर थापे सब जग खेल।

मैं तन अवगण एतड़े खसम ना फेरे चित महला पहला हौ बलिहारी तिनको सिफत जिना दैवात सब राती सुहागनी एक मैं दुहागण रात पौड़ी धर्मंगत जाचै दान हर दीजै कृपा कर गुरमुख लेहो मलाए जन पावै नाम हर अनहद शब्द बजाए ज्योति ज्योत धर हृदय हर गुण गाए जय जय शब्द हर जग मह वरतै आप हर सेती प्रीत कर श्लोक महला पहला जिनी न पायो प्रेम रस कंत न पायो साव सुनिए घर का पौना।

आस अज्ञान मटंत वेद पाठ संसार की कार पढ़ पढ़ पंडित करह विचार बिन बूझे सब होए खुआर नानक गुरमुख उतर

कुवार कन्या जैसे करत शिंगारा, क्यों रलिया मान बाज पतारा। काग उडावत पुजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी। सूही कबीर जियो हमल सरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना। क्या तै खटिया कहां गवाया, चलो सताप दीवान बुलाया। चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फरमान दरगाह का आया। रहाओ करो अरदास गाम किश बाकी, लेओ नबेर आज की राती। किस पी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराई गजारो। साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सो जन पुरख सुभागा। ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले। जागत सोया जन्म गवाया, माल धन जोरिया भया पराया। कहो कबीर तेई नर भूले, खसम बसार माटी संग रूले। सूही कबीर जियो ललित, थाके नैन श्रवण सुन थाके। थाकी सुंदर काया जरा हाक दी, सब मत थाकी। एक ना थाकस माया।

करे वो जब लग घट मह सासा जे घट जाए ता भाव ना जासी हर के चरण निवासा जिस को शब्द बसावे अंतर चूकै तिसह प्यासा हुक्मै बूझै चौपड़ खेलै मन जिन ताले पासा जो जन जान भजह अवगत कहो तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कबहु ना हारह ताल जो जानह पासा सूही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदार।

सह की सार सुहागण जाने, तज अभमान सुख रलिया मान, तन मन दे ना अंतर राख, अवरा देख ना सुने अपाख, सो कत जाने पीर पराई, जा कै अंतर दर्द ना पाई, रहाव दुखी दुहागण दोए पाख हीनी, जिन नाहा निरंतर भगत ना।

आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया। कह रविदास सरन प्रभ तेरी, ज्यों जान हो त्यों कर गत मेरी। सूही जो दिन आवह सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना। रहाओ जिन जियो दिया, सो रिजक अंबरावे। सब घट भीतर हाट चलावे।

ललत बेड़ा बंध ना सक्यो बंधन की वेला पर सरवर जब उछले तब तरन दुहेला हाथ ना लाए कुसुम्बड़े जल जासी ढोला।

जहाँ अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करहु हमारी जल थल मही अल भरपुर लीना घट घट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदर छावा तेरे तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे जी जंत सब सरन तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासी

हे जंत विचारी मुक्त बंद सब तुझ ते होए ऐसा आख बखाणी गुरमुख हो ऐ सो मुक्त कही है मनमुख बंद विचारी सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रह हर नाले तिनकी गहन गत कही ना जाई सच्चे आप सुवारी परम पलाने से मनमुख कही है ना उरवार ना पारी जिसनो नदर करे सोई जन पाई गुर का शब्द संभाली हर जन माया माहे निस्तारी नानक भाग हुए जिस मस्तक काल है मार बदारी बलावल महला तीजा अतुल क्यों तोलिया जाए दूजा हुए ता सोजी पाए तिस ते दूजा नाही कोए तिस दी कीमत किको होए गुर प्रसाद वस्से मन आए ताको जाने दुबदा जाए रहाओ आप सराप कसवट्टी लाए आपे परखे आप चलाए आपे तोले पूरा होए आपे जाने एको सोए माया का रूप सब तिसते होए जिसनो मेले सो निर्मल होए जिसनो लाए लगे तिसे आए सब सच दिखाले ता सच समाए आपे लिव धात है आपे आप बुझाए आपे जापे आपे सतगुर शब्द है आपे नानक आख सुनाए आपे बलावल महला तीजा साहिब ते सेवक सेव साहिब ते क्या को कह बहाना ऐसा एक तेरा खेल बनिया है सब मह एक समाना सतगुर परचै हर नाम समाना जिस कर्म हो ऐसो सतगुर पाई अन दिन लागे सहज ध्याना रहाओ क्या कोई तेरी सेवा करे क्या को करे अवमाना जब अपनी जोत खिंच

आई चूकै मन अभमाना कहत सुनत सबे सुख पाव है मानत पाहे निदाना बलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित घर बलावल गुर शब्द सुहाई मंगल नारी गावह आए मिल प्रीतम सदा सुख पाई हौ तिन बलिहारै जिन हर मन वसाई हर जन को मिलिया सुख पाई हर गुण गावे सहज सुपाई रहाऊ सदा रंग राते तेरे क्याई हर जीव आप वसै मन आए आपे सोभा सद ही पाई गुरमुख मेले मेल मलाई गुरमुख राते शब्द रंगाई निज कर वासा हर गुण गाई रंग चलूलै हर रस पाई एहो रंग कदे ना उतरै साच समाई अंतर शब्द मिटिया अज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा जो सच राते तिन बहुड़ ना फेरा नानक नाम दृढ़ाई पूरा गुर मेरा बलावल महला तीजा पूरे गुर ते वडियाई पाई।

अनक उपाव चित भी यह बहु तेरे साहु है जे बात हुएनी अपना भला सब कोई बंश है सो करे जे मेरे चेतना चेतैनी मन की मत त्याग हो हर जन एहा बात कठैनी अन दिन हर हर नाम त्याग हो गुर सतगुर की मत लैनी मत समत तेरे वस स्वामी हम जंत तू पुरख जंतैनी जन नानक के प्रभ करते स्वामी।

कर कृपा मोहि मार्ग पावहु, साध संगत कै अंचल लावहु। क्यों तरिये बिख्या संसार, सतगुरु बोहित पावे पार। रहाउ पवन किलारी माया दे, हर के भगत सदा थिर से। हरख सोग ते रह निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा, हम मैं पचे दीपक देख पतंगा। सगल सिंगार करे नहीं पावे, जहाँ हुए कृपाल ता गुरु मलावे। हों फिरो उदासी मैं एक रतन दसाया, निर्मूलक हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिस महलाल, गुर खोलिया पड़ता देख भई निहाल। जिन चाख्या तिस आया साध, ज्यों गूंगा मन मह बिस्माद। आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आख समाया। बिलावल महला पंजवा, सर्ब कल्याण किए गुरुदेव। सेवक अपनी लायो सेव, बिघन ना लागे जप अलख अपेव। तरत पनीत भई गुण गाय, दुर्त गया हर नाम त्याय। रहाव सबनी थाई रव्या आप, आद जगाद जाका वड प्रताप। गुर प्रसाद ना हुए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघन हुए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सतगुर तूठे। पार ब्रह्म प्रभ भय रखवाली, जितै कितै दिसह नाली। नानक दास खसम प्रतपाली, बिलावल महला पंजवा। सुख नदान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणत गुण